चित मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो राव। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे, सहजे बिखिया पई खियो। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा, एहो अविनाशी मंत्र लियो, कर कृपा मुए सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। तन सो मानस देही पाई, जित प्रभु अपने मेल लियो, तन सो कल युग साध संकीर्तन गाये।

बाँ कोरते बाँ पकड़ गुड़ काट लिए, निरपो पे सगल पौ मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रव मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला

बहुत पिहाला सगल चरण की इहु मन राला नानक जन गुरु पूरा पाया अंतर बार एक दिखाया आशा मेला पंजवा पावत रलिया जो बन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया सेज सुख लिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक्षतरिया हर पगत बिना ले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया चलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम कहा मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाये पद निर्वाणी आस पास बिखुआ के कुंता बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक कै माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवपार।

साध संग हर कीर्तन गाये यो स्थान गुरु ते पाये राव दूजा आसा मेला पंजवा कर में सुख बार फुल सूखा हर सिमरत सगल बिना से दुखा सगल सुख जा तू चित आवे।

हर हर जपत तह दुख डेरा, हुक्म गूंजे सोई परवान, साथ सब ज्ञाता निशान, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आशा मैला कन्या, जहाँ पठावो तह तह जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गोसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त अगा

कहो नानक नित इवै त्याई गत होवै संतै लग पाई। आसा मैला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याई मार्ग चलत हरे हर गाये। श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव। कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय। दिन सरैन हर कीर्तन गाये सो जन जन की वाट न पाये। आठ पैर जिस विसरै नाही गत होवे नानक तिस लग पाए। आसा मैला पंजवा जा कै सिमरन सुख निवास पई कल्याण दुख होवत नास। अनद करो प्रभ के गुण गावो सतगुर अपना सब सदा मनावो रहाओ। सतगुर का सत शब्द कमावो फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो। पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत। हर हर तंत मंत गुर दीना इन सुख नानक अनदिन चीना। आसा मेला पंजवा जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत उह चौकुन तुमाने। दर्शन मांगो दे प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे राव। जाके निकट मोह आवे कोई सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई। जो प्राणी काहु ना आवत काम संत प्रसाद ताको जपिए नाम। साध संग मन सोवत जागे अब प्रभु नानक नीचे लागे। आसा मेला पंजवा एको एकी नैन निहारो सदा सदा हर नाम समारो।

सगल समग्री जा के सूत पर होई कट कट अंतर रया सोई ओ पट पर लो खिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता करन करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा मेला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे जुलब देह जीती नहीं हारे किलबिक बिना से दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ प्रभु के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुर दिया कृष्ण बुझी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाए।

आते पय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभ का पावना लागा मीठा। गुर पूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म इव सफल भया। कहु नानक प्रभ करी मया।

सत्संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुकामा झूठा मो मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी स्यों रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मैला संजमा आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे खोए कै ओही कट कट अंतर आपे सोई राव आपे सूर किरण विस्थार सोई गुप्त सोई आकार सर गुण निर्गुण था पैनाओ दो मिल एक तीनो ठाओ कहो नानक गुरु परम को खोया अनुज रूप सब नैन अलोया आसा महला पंजवा उकत स्यान किछु न जाना।

रहा हो। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संजम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा मेला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन।

सोजन इत उत कते न डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ता कह संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेत न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन के अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहा व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुपने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुरु मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहो नानक।

जागत भगत सिमरत हर राते राव मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण ते आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभ शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आसा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

जग तक तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अनदिन जपो नाम गुण तास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म।

निसारे हो, खिसर गयो पूम पर डारे हो, साध मोहिला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आसा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, तू चित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दी जय, आसा मेला पंजवा।

मन तृप्तानो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद कली बनी, जा के गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपैतनी राव, नाम दृढ़ाया साध कृपाल।

तो जन पूरन रहे अधाई, कछु न थोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाता तनी अगम गुसा।

जा को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा मैला पंजवा, जो मैं अपना सतगुर त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणित बिना।

मेरी देख चलत मन पै दिलासा नानक दास तेरा परवासा आसा महला पंजवा अन दिन मूसा लाज टुकाई गिरत कूप में खाए मिठाई सोचत साचत रहन बिहानी अनक रंग माया के चितवत कबू न सिमरे सारंग पानी रहाओ द्रुम की छाया नहीं चल गृह बांधिया काल के फांस सकत सर सांधिया बालू किनारा तरंग मुख आया सोथान मूड नहीं चल कर पाया साध संग जप्यो हर राए नानक जीवे हर गुण गाए आसा मेला पंजवा दो तुके नावा उनके संग तू करती केल उनके संग हम तुम संग मेल उनके संग तुम सब को लोरे।

जहर उनके संग तू रखी पलोल ओस बिना तू छुटकी रोल उनके संग तेरा मान महत उनके संग तुम साख जगत उनके संग तेरी सब बिथाटी ओस बिना तू हुई है माटी ओ बैरागी मरे न जाए हुक्मे बादाकार कमाए जोड़ बिछोड़े नानक थाप अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा ना ओ मरता।

को कृष्णा जाओ निर्मल का हम जतना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे करिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सरई सुहागण जो प्रभु पाई।

पाग ता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो वो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आरा दो दिन सरेन ए

चले संवारे, आपको कोई मिले न फूले, जिस कृपाल तिस साध संकूल है, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट कब तेरा तान, आसा महला पंजवा, उपत होए कह राज समाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया।

सदा कीरत कर नानक हर की उबरे सतगुरु चरण ओटाहा आसा मैला पंजवा अपुष्ट बात ते पई सीदरी।

पुरख बिराते बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख ला दे कहो नानक।

जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे कई मोत रंग माने फिर बहुर बहुर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया तेरा सोदन नेड़े आया रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मोकुटंब बिखे रसमासे मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उल्लास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन सरहन संतन बंदन सुखो सुख पाहे। नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहना। कारण करना कारण करना एक है सोहना। संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोएना। आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ। संग सहाई छोड़ न जाए ओह अगे अतोला। प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला। आशा मैला पंजवा। अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ। नाम पदार्थ हुए सका।

दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा। एक सिमर मन मानी रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आये, सर्व फल पाये सगले दुख जाही, जीवन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही आसा महला पंजवा। हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ राज कहावे, हो कर्म कमावे बांध्यो नलनी परम सुआ, कहो नानक जिस सतगुरु पेटिया, सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवा। कर चौथा

जाए, प्रभु तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संयम कर थाके, नानक साध शरण प्रभु संग वसै। आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे, पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे, लोभ बिखिया बिखे लागे, हिरवित चित दुखाही, खिन पंगुना कै

हार मुका पछतायो मन पोरा, दान सगल गैर वजह परया, दीवान लेखे ना परया, जे कारज रहे ओला सोए कामना करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो, तो एक कीरत गाया, मान तान तज से।

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आसा मैला पंजवा हर शोक बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहु पै निरपै खिनहु।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सो चित धर हां, अनस्यो कोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

मना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला तन्यवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताँ को सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बढ़ पा गया मैं।

उत्तर अवघट सर्वरनावे बके न बोले हर गुण गावे जल आकाशी सुन समावे रस सत चोल महारस पावे ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे परपुर तार रहा सब थौरे रहाओ सच व्रत नेम न काल संतावे सतगुरु शब्द क्रोध जलावे गगन निवास समाध लगावे पारस परस परम पद पावे सच मन का

सिरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमा

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साठ तनी जग आए बिना सहा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुरु सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए, माया मोह गुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला,

जमण मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हलत पलत निभी तुद नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मान कहीर तू

जग पंडित बिरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी पोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। मह गो मोल पार अपार अटल।

वह जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै सरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म तर्म बहु संख असंख बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाए थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पथे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक जग

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

सात अकूट पंच तीन नव चार समावे, तरण जगन कल तार रहावे, बाहर जातो उल्ट करावे, मूर्ख होए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कहया बूजे, बिक्का माता जग स्यो लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को पावे अवगण को वे।

न पावे बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज न जाना परम फुलाना फिर पछताना गल पाही बोरा बोराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे से बढ़ पागे।

मैं मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरुमुख राम नाम कृपा से खोजत पावो सहज हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लग लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम दिन क्यों मन तीरा अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरुमुख जाने साच शब्द बिन

कह जाऊं। गुर प्रसादी कर्म कमाओ, ना मेरा ताहर गुण गाओ, गुर सेवा से आप पछाता, अमृत नाम से।

सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मनमुख मैला शब्द ना पछाने, गुरमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन

देवाना बन खंड माया मोह हैराना। इत उपजाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह कर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा रहाओ। यो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुरु मेले काल कंटक मारे सच पेले। यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तत ते जन्मा साकत लोभी यो मन मूरा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई। यो मन जोगी पोगी तप कापे गुरमुख चीने हर प्रभ आपे मन बैरागी हो मैं त्यागी कट कट मन सा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दर कर मैली हर पत राखे। यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास इकत छाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी। यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ।

नानक हर जन के दासन दासा। आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है, बिन गुरु राम नाम कत नहीं है, राम नाम तन संग सिखाई, एनस निर्मल हर लिवलाई, राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख सम कर नाम।

विम गुर शब्द जन्म के लेख है, देख अचरज रहे बिस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरुमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आसा महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच सबद पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत कलक

बंधन सा संचय तन जाए, बिन हर भगत न कभी थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

तिन गल सिलका पाया टुटन मोतसरिया तन जोबन दोय वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पट गवाए जे तिस पावे दे।

कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे जिसे नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाक उठापे, जरवंड देवे पाई, राव, कहां सो करदर मंडक महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान संगोली हर

होई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे उसनो तुमको कौन रोई।

जे चलदा ले चलिया किछ संपै नाले, तां तां संचो देख के बूझो बिचारे, वणज करो मकसूद ले हो मत पछो तावो, अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत परावो, धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो।

पर पंडित पौंदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करें नित तीर्थवासा आप न चीने।

कूड़ न पाये, सच्चे सो चित लाए बौड़ न आये। मोया कौ क्या रोवो रोए न जानहू, रोवो सच सराए।

हुक्मी पैदा जाए दरगे पानी है, हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है। लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है। मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है। साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही। नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानी है। गुर की कार कमाए महल पछाणी है। रहाओ आप मिलावे सच तामन पावे।

पाले, गुरुमुख वस्त पछाणिए अपना कर पाले, जम्मन मरना आखी है तिन करते किया, आप गवाया मर रहे फिर मरना किया, साई कार कमावनी तुर्की फुरमाई, जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई, रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई, नानक साहिब मन वसै।

अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साचे पर थाई, गुरबिन किने न पायो केती कह कहाए, अलप दिखावे वाटड़ी, सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाइए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए, जन्म मरे परमाइए हर नाम न लेवे, ताकि कीमत ना पवे बिन गुरु की सेवे।

मेरे छा तुर हाथ वड्याईया पाने पथ पाईए साचो दूर न जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपके हरे वेखे वड्याई गुरमुख हुए निहार।

साहिब सो मन मानिया दे साच आधार एन इस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघन न ला गई चाले हुक्म रजाए।

ले अगन जलाई है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदार जाई, औगुण आरे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मैला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जां कुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई है, लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पछाण सी, सत संतोख।

सारी ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे।

गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

सोई। सतगुर नाम बुझाया बिन नामे भुख न जाई। नामे तृष्णा अग्न बुझे है।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा। गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख परत सलाह है अंतर शब्द अपारा। गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई। सत गुर मिले आप गया त्रिभुवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई। पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई। पूरा सतगुरु ता मिले जानदर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होए। अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम विधान मन वसिया वडियाई पाए। आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई। अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई। हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, बिन सतगुर पाई न जाए। पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाई। आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई। मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा। आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा। भगत भी ओना नो बख्शियन अंतर पंड।

सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा मेला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर।

पंडारा। अंदर महल अनेक हैं, जियो करे वसेरा। मन चिंदिया फल पाए सी, फिर होए न फेरा। पार किया वक्त समाल लई, गुरसो जी होई। नाम पदार्थ अमूल सा, गुरमुख पावे कोई। बाहर पाले तो क्या लहे, वक्त करे अंदर भाई। पर में पूला सब जग फिरे, मनमुख पत जो आई। कारदार छोड़े अपना।

पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किस आखी है आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता मेला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई। हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ही है बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जा पई सब अंधी भाई। गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई। नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई। नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई। जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई। नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई। नानक सब किछ नाम।

का बोले ना निवे दूजा पाव सुहाओ त्यों मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागणी आप सवारियों ने लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर कह प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागणी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंतर रतन विचार।

नानक नाम रते तिन हों मैं गई सच्चे रहे समाए हासा मैला तीजा। सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए ऐथे कर कर जाप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू

अपार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर के पै पाए जो रते सिफ्ति सत समाओ पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे हैं जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से ना जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

सच रतिया सुहागणी जिना गुर कै शब्द सिंगार। कर ही सो फिर पाया सच्चै शब्द विचार, अवगण गुणी बखसाया हर स्यो लिव लाई, हर वर पाया कामणी गुर मेल मिलाई। रहाओ इक फिर हदूर ना जानवी दूजे परम पुलाए, क्यों पायन दोहागणी दुखी रहन विहाए। जिनके मन सच वसिया सच्ची कार कमाए, अंदिन सेवै सहज स्यो सच्चे माही समाए। दोहागणी परम पुलाया कूड़ बोल बिखाए, फिर ना जानन अपना सुन।

हैं, सच निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए, फिर सेती अंग दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक सत्यों लिव लाए, नानक जे सुख लो।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए रहाओ। मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे। जिना पिर का स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे। गुरुमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन पगती।

भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरो आखो आयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत ना हो वही, ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अन रस में पोलाया बिन ना में दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अन दिन सदा जल्दी।

तस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई एना अखरा में जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख न होई उड़े उपमाता की जय जाका अंत न

पंडित आप सिया छछ छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम होआ परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म होआ तिन गुरु मिलिया जज जान मंगत जन जाचे।

हारो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना, ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी, जिनका चित लागा सही जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ होआ सो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा।

गुरुमुख आखे गुरुमुख बूझे गुरुमुख एको जाने रारे रव रहा सब अंतर जेते किए जनता जंत उपाय।

स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसे तो गुण पछाणे ता प्रभ जाने गुणे वस अवगण नसे तुद बाज एक

सच साहिबो आद पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरुमुख शब्द पछा।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत् विचारो। साजन मीत सो जान सखा तू, सच मिले वड्याई, नानक नाम रतन प्रगासिया, ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग

हर जियो ते कब हो ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेर ना आवे जमन मरण तिना काचू का जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो।

हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे एनस नाम तिसे काली जय हर उत्तम पुरुष प्रदान जियो।

काचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विचुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्धिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफल्यो जन्म सवाया। दूजड़े कामण परम पुली हर वर न पाए राम, कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई, सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै रस रसी गुर कै शब्द अपारे राम, शब्द अपारे मिले।

ना आवे। भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला तिन सद सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पखंड सो सो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुकम पछाने। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी हम दिन हर लिवलावे। जय जय मन तू तावदा तह तह हर तेरे नाले। मन से आनक छोड़िए।

सतगुरु मिलिए दसवां द्वार पाया, तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे, जित शब्द जगत थम रहाया। तह अनेक वाजे सदा आनंद है, सच्चे रहा समाए, त्यों कहे नानक सतगुरु मिलिए, तावत थमिया निज कर वसिया आए। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान, मूल पछाणे ता सो जाने, मरण जीवन की सो

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गारब लागा जाए मुगद मन।

नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा।

जगत निस्तारा राम नाम वडियाई, कलयुग राम नाम बोहिसा गुरमुख पार लंघाई, हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नानक दास दया कर देवे राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया दुख के लिए नाश गवाया राम, गुर पर चै

मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए, आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर, सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सी।

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद्ध गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासे।

दुख बिनाशन पतित पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जपिए, अस्थिर होवे जन्म मरण दोवे दुख मेटे, सहजे ही सुख सोवे, हर हर कृपा तारो ठाकुर, हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो, हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो, गुरुमुख हर पढ़िए, गुरुमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत।

तुर लिख पाए जियो, हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, प्रम चूका आमन जान जियो।

पदार्थ हर हर कृतार्थ शोभा गुरुमुख होई अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई हर हर लिव लाई हर नाम।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

यो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया निक आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको इहो जियड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय जिसकी वस्त सो ले जाए जियो मन मुख करना।

जग मरण न पाया नित आप लुकाया, मत जम पकड़े ले जाए जियो। तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो। हर शोभा पाई हर नाम वड्याई, हर दरगे पे दे जान जियो। हर दरगे पे दे हर नामे सीधे, हर नामे ते सुख पाया। जन्म मरण दोवे दुख में ते, हर रामे नाम समाया।

सारे नमस्कार कर लगे सेवा आते जा जी आपे मां जी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आते तारन तारे कहो नानक सो कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौन दे मेरे कर में आई राम सब किछ मैं सब किछ पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गणत मिटाई चूकी ताई कदे न व्यापे मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अतरज शोभ बनाई कहो नानक तिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सामर्थ मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जां वल स्वामी ता सर से पाई मीता आता महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड़ पागी सत्संगत पाई राम वड़ पागी पाए नाम ते आए लाथे दुख संतापे गुर चरणी लागे प्रम पौ पागे आप मिटाया पै कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड़ पागी पावा राम हर तूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुर जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभ भावा आसा संत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आमना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे जीठा राम राजे हर कट कटे जीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते

आप लिए लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधार आराम राजे माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास न बिसरे कबू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रव सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर छेवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पै कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दुध न्याई रीत अब दुध आत नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरह खिन नाहे तरिय प्रीत हरिय सिगार हगरस अर्पिय जह दुख सुनिय जम पंथ पणिय तह साध संग ना डरपिय। कर कीरत गोविंद गुणिय सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दीजे अकलाय चित मुरारी मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी। गुरसो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ स्नेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कल दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुणिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़ी है चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरण पतार उर्जी तिह सिवे यो मन लाल दी जय मन लाल दी जय पोक करी जय हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा आवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विष्ण अवतार शंकर जटातार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व से आवे जप किन्नर गुणपनी कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी
जाको सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिए संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी आसा महला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राए नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाई है पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी साथ साथ आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाइए नानक पयम पै चरण जम पै नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम

है सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरण हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत अराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक स्वयं पै चरण जम पै भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया आसा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सत सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरबचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतार का कैन घना सुखवंती सानार सोबा पूर बना।

मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन ला गया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाणे गुरु वचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर

छेंते। मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो, बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो। हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया। कतहु न पावो शरण पावो, करुणा में प्रभ करमया। समरथ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो। कर जोड़ नानक दान मांगे, जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच, सठ कठोर कुलहीन व्यापक मोह कीच। मल परम कर्म अहं ममता, मरण चीत न आवे। बनता विनोद आनंद माया, अज्ञान तालप सावे। खिसै जोबन बलै जरुआ, दिन निहारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी, शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन। प्रमत पार अगमत आयो, बहु परदेश पायो। अब ओट तारी प्रम मुरारी, सर्व सुख हर नायो। राखन हारे प्रभ प्यारे, मुझते कछु न हुआ होन। सुख सहज आनंद नानक, कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी उधारे पगते संसा कौन। जेन केन प्रकारे हर हर, जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी, मन निधाना पावे। हर रंग राते प्रभ विधाते, राम के गुण गावे। बसुद कागद बन राज कलमा, लिखन को जे होए पवन। बेअंत अंत न जाए पाया, गई नानक चरण शरण। आशा महला पंजवा, पुरख पते भगवान ताकी शरण गही। निपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुख मीत सुरजन, इष्ट बंधक जानिया। गय कंठ लाया गुर मिलाया, जस विमल संत वखाणिया। बेअंत गुण अनेक महिमा, कीमत कछु न जाए कही। प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर, ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय आप भये, राम नाम उरहार बिक के दिवस गए। गत परम मोह विकार बिन से, जोन आमन सब रहे। अगन सागर पै शीतल, साध अंचल गह रहे। गोविंद गोपाल दयाल समरथ, बोल साधु हर जय जय। नानक नाम त्याय पूरन, साध संग पाई परम गते। जय देखो तय संग एको रव रहा, कट कट वासी आप विरले किने लया। जल कल मैयल पूर पूरन कीट हस्त समान्या। आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला, गोविंद गुण निर्जन कहा। सिमर स्वामी अंतर जामी, हर एक नानक राव रया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे। चरण कमल संग प्रीत कलमल पातरे। दुख पूख दरिद्र नाथे, प्रगट मग दिखाया। मिल साध संगे नाम रंगे, मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन चुपुन्नी, कुल संभुआ सब तरे। दिन श्रेण आनंद अंदिन, सिमरंत नानक हर हरे। आशा मैला पंजवा, चंत कर सतवा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद श्लोक। शुभ चिंतन गोविंद रमन, निर्मल साधु संग। नानक नाम न विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत चंत। पिन्नी रैनड़िये चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरे अंजनो। चरण कमल ध्यान हृदय, प्रभ विसरना ही इक्खिनो। तब मान मोह विकार मन का, कलमला दुख जारे। बिनवंत नानक सदा जागे, हर दास संत प्यारे। मेरी सेजड़िये अदंबर बनिया, मन अनद भया प्रभ।

सुख पागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया बिन हंत नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया मिल सकिया पुछे कहो कंस निशानी रस प्रेम परी कछ बोल न जाने गुण गुण गुप्त अपार करते निगम अंत न पावे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पाने बिन हंस नानक रंग।

सहचर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा सहारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तैं क्या चिर लाया मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करे पाप अमित्या तन पसम तेरी जमे हेरी काल बपड़े जितया

मैं अंत जाई पाया, बिन अंत नाम सुख सहज मेला, प्रभु आप बनाया नरक ना दिखड़िया। सिमरत नारायण जय जय धर्म करे दूत तय पलायन, परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे, पर अनुग्रह राख लीने मोह ममता सब सजे, गय पंथ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिन अंत नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण। निज सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा, सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा, जय पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या, साध सुंगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखारा, बिन वंश नाम सर्व स्वामी।

सी साथ है। संग देखे करणहारा काए पाप कमाई है, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते। वल वंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है, मिल साध संगे पदन संगे कुल समूह तारी है। शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा। खोट न की चई प्रभ परखन हारा, पूर कपट कमाऊंगे।

जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा बिन वंश नानक टेक जन की चरण कमल आधारा पेट हर कुंदौरड़ी अब फिर किछ नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिय हर एक बिन कछ अवर नाही पाओ दुतिया जालिय मीत जोबन माल सर्वस प्रभ एक कर मन माही बिन वंश नानक वद पाग पाई सूख सहज समाही आशा मेला पंजवा चंक पर अठवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीक्षण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास दिन खास जात बिहात सब बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रे संग बिन कछ न गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी तुझ बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रे नाथ नर हर करो गात मीना जलहीन हे ओह बिचरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रे बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रे प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तंग तिस बिना पलका ना लागे प्रे प्रेम पागे चितवंत अंगन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल्पीवत बिन सतताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अपतना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श पे सुख में संता

सुंदरतम ज्ञान सुंदरतम ज्ञान हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा शेष सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यशराज की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यों सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझ आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सत्यायन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतन्याओ वड्डी वड्याई जाने चलसाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लए इकना हुक्म करे विनाश इकना पाने कड लए इकना माया विच निवास ए पे आख न जाते जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आख करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड्डे जिजमा लिया थाव ना पाएं कूड़िया मौका ले दो जुक चा लिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में करम बहालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद सुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला

जहां सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कै समाले सबना जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या पग महला पहला लख ने किया चंगिया लख पुन्ना प्रवान लख तप प्रतिष्ठा सहज योग बेबान लख सूरतन संग्राम रन में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाप पुराण जिन करते करना किया लिखिया मन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया।

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परिये साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डिया खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला। लिख लिख पढ़े आते ता पढ़िया, बहु तीर्थ पवे आते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साथ गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बकर न पहरे एन स्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, गिन नावे किछ खाई न पाई, रह बिमानी मरी मसानी, अंग न जाने फिर पछतानी, सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उंदे सेते ने केवल, हों मैं सब जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन पाव दे, दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी ताव दे, एक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हों ताड़ी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जित जैत आए दे। श्लोक महला पहला। कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार, कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसन हार, कूड सोयना कूड रूपा कूड पहनन हार, कूड काया कूड कपड़ कूड रूप।

नानक वखाने बेनती तुद बाद कूड़ो कूड़ महला पहला। सत्ता पर जानिए जार दैसा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सत्ता पर जानिए जा फल करे प्यार, नाव सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार। सत्ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, फर्क पाया साध के विच दे करता बियो। सत्ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किछ पुण दान करे। सच ता पर

मूर्त होए नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए पैर खुम चढ़ाई है शर्म पावता होए नानक पगती जेर पै कूड़े सोए न कोई मेला पहला लब पाप दे राजा मेहता कूर हो आशिकदार काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नच्चे बाजे वावे रूप करे सिगार उच्चे कूके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार कर्मी कर्म करे गावावे मंगे मोख द्वार जटी सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाये ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवज्जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी चाला मारिया करता करे सोए अग्गे जाप मजोर है अग्गे जियो नवे जिनकी लेखे पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता के वश किच नाही तुद वेकी जगत उपाया इकना नो तू मेल लें इकापो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।

कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर नया तू सच्चा साहिब सवालियो जिन की तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जो शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भेयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा वासुदेव जे को जाने भेयो नानकता का दास।

गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताओ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कारणा तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गए आहारी है, पढ़िया अत मिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सत जुग रथ संतोख का कर्म अग्गे रथवाहो, त्रेत रथ जत का जोर अग्गे रथवाओ, द्वापर रथ कपे का सत अग्गे रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गे रथवाओ। महला पहला। शाम कह सितंबर स्वामी सच में आठ साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा मैं सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

कर कृपा पार उतारया। श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत धीरज अत मुच ओज आवे आस कर जाहि निराशे कित फल फिक्के फुल बक बके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगियाईया तक सब को निवे आप को पर कौ निवे न कोए ताका राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गाहे शीश निवाए क्या थी है जा हृदय कुसुदे जाए। महला पहला। पर पुस्तक संध्या बादं सिल पूज बगल समादं मुक्त ऊठ बेपूखन सारं त्रैपाल से हाल विचारं गल माला तिलक लीलाटं दो तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब को कठिनश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे वे सतगुरु वाट न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे राह पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया तां दिसे खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना। श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना हो तुटे ना मल लगे ना हो जले न जाए तन सो मानस नान का जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया। महला पहला। लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन जी नाल तक कपाहो कती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुती है पीछर पाई है होर नानक तग न तुटे जे तग होवे जोर। महला पहला। नाई मने है पथ उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग न टूट सपूत। महला पहला। तग न इंद्री तग न नारी पलके थुप होवे निदारी तग न तैरी तग न अखी तग न जेवा तग न अखी वे तगा आपे वतै वरतागे अवरागतै ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा ना सुजान। पौड़ी। साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे प्रवान ता खसने का महल पाए सी।

तो कर लावो गोबर कर न जाई, तोती टिक्का तय जप माली तान मले छा खाई, अंकर पूजा अपने कतेबा संजम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जहे तरंगा महला।

तार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत बिटे वे मत बिटे यो अन असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन झूठे चुली भरेन कहो नानक सत्य आई है सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंगा आपे देव दे आईया आपे ही कर्म कराएंगा वडो वडा वड मेदनी सिरे सुल्तंगे लाएंगा नदर पट्ठी जे करे सुल्ताना का उतर आएंगा दर मंगन पिख ना पाएंगा। श्लोक महला पहला। जे मुहा का घर मुहे कर मुहे पितरी दे अग्गे वस्यानी।

पहला मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना परक्रिया परतन रूप कन्नी सूतक कन पै लाल तवारी खाए नानक सा आदमी बदे जम पुर जाए मैला पहला सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म।

किरत ता हुआ पाप पवित्र पापी सो संग दया तुका पिया चित जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाए नानक ए वह जानिए तित मुख तुका पाए। महला पहला पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन भी आहो पंडो हो वह दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड हो वह बंगान सो क्यों मंदा आखिए जित जम है राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही।

पौड़ी जिथे वे सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मूल न की चई दे लम्मी नदर निहाली है जो साहिब नाल न हारी है।

परमात साहिब तुठे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित पौ खसम न जाए, नानक सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाय पौड़ी, नानक अंत न जापनी हर ताके पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरियां इक तुरी चले बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार ना।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद रागा सा बाणी भगतां की कबीर जियो नाम देओ जियो रविदास जियो आसा श्री कबीर जियो। गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कवन काज जग उपजय बिन सह कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लावो।

अरे अर मन सुन ना लूके, आता पद निर्माण ना चीनिया, इन विद अभियो न चूके, कहीं ना उपजे उपजी जाने, पाव अपाव विहुना, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तो सदा सहज लिवलीना, ज्यो प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण परम पादा, तो मन सुन समाना। आसा गज साडे तै तै तोतिया, तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया, लोटे हाथ निबग ओए हर के संत न आखिए, बनारस के ठग ऐसे संत न मौके पावे, डाला सो के दागट कावे, रहाओ बासन मांझ चरावे।

बूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिन्हें बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम,

आए, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाए, काजी तें कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाए, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी।

रे बौरे तुम करी न रखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहो, काकी मात पिता थो काको, कवन पुरुष की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई। ब्योहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लप छुटकाए त्रिया रोवे, हंस के ला जाए। कह कबीर सुनो रे संतो, कैसा गर कह पाई, इस बंदे से जुल्म होता।

कूटा, मंदल ना बाजे नट पे सूता, बुझ गई अगर ना निकसो तुआ, रव रहा एक अगर नहीं दुआ रहाओ। टूटी तंत न बजे रबाब, फूल बिगारे हो।

कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष तक तप ना कियो, 30 वर्ष तक देव ना पूजा, फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूखे सर्वर।

खान करारा तहर ख्वाद न की जय रे मन सुकृत कर कर ली जय रे मन रहाओ कुम्हार एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई काहू में मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई सू में तन राशन को दिया मुग्ध कहे तन मेरा जम कर दंड मूंड में लागे खिन में करे निवेरा हर जन उत्तम पग सदावे आज्ञा मन सुख पाई ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे, रहाओ रोजा तरह निवाज गुजारे।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पे संग तेरे, इंद्री का बल खाका। चरण रहे कर तर्क परे है, मुखो न निक्षय बाता। थाके पंच दूत सब तस्तर, आप अपने प्रमते। थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत तर रमते। मृतक पे दशह बंद छूटे, मित्र पाई सब छोरे। कहत कबीरा जो हर त्याव, जीवत बंधन तोरे। आसा इक तुके चौथा, सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया। जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया, मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी। जिन त्रिभवन दशियले गुर प्रसाद जीठी रहाओ। सर्पनी सर्पनी क्या करो भाई, जिन साज पछान्या तिन सर्पनी खाई। सर्पनी ते आन छूछ नहीं अबरा।

बल अबल क्या इसते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कहे हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ, कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट

कोई आशा जो मैं रूप किए बहुत तेरे अब फुन रूप न होई ताजा तन साज सब पाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ काम क्रोध माया ले जारी कृष्णा गागर फूटी

काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वपूत ए तय कर जानिया, चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पहे राम प्रसादा। आशा रोजा तरह मनावे अल्हो, स्वागत जी सिंहारे, आपा देख अवर नहीं देखे, काहे को चख मारे। काजी साहिब एक तो ही में, तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेख है। रहाओ साच कतेब बखाने अल्हो, नार पुरख नहीं कोई, पदे गुने ना ही कछ गौरे, जो दिल में खबर न होई।

सतगुरु बचनी में पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। तै कबीर ही रास देखियो, जग में रहा समाए। गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब, गुरगम दिया दिखाई। ऐसा पहली करूप कुछ आप कुलखनी, सहरह पे ही है बुरी, अब की स्वरूप।

रहा कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग तरयो लोहरी संग पई अब मेरा जेठी और तरयो आशा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा कर कुंडरा।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगत जिन काडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत कादे की एह बड़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगत पेरो तो पर साचे हर गुण गाए कूद है अर नाचे।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक में बांचिया जाई। हर का संत मरे हारंबे, ता सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक से त्यावो, बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कहत कबीर नरक।

ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोईने की सुई रुपे का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आशा साप कुंच के दे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग त्यान माडे। काहे को की जय त्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना। रहाओ सिंगच पोजने जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने। नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीन सी, आसा ते ना भाव सी। रामा भगतें

पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है ताकी के तक आस। मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ

काल सास अडग लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुरु ज्ञान भगत जन।

रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही आशा। तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत सन तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेत सपैयल,

चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन हो

जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है राव। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहु जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसुरे प्रभ हीरे रहाओ। दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते प्रीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक मय, प्रेम तगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुकुट भय। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत।

त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुत कारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वस्या पार ब्रह्म भगता में गनिया।

चौक दे कर पहला तेरा नाम करी चरनाथिया जे मन उरसा होए करने कुंगू जेर ले कट अंतर पूजा होए पूजा की चे नाम त्याय बिन नावे पूज न होए रहाओ बाहर देव पखालिये जे मन तोवे कोए झूठ लह जियो मांझिए मोख पयाना होए पशु मिले संग आई।

रहाओ। रब सस दीपक जा के त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरमुख होए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करें नित चगरा दोह लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुर चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज में

ताए, जित कम हर विसरे दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेविए, गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहर है, जरा का पौ न हो वही जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया। तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समयी, दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई है। जे लोचे सब कोय पूरे की पाल विच्चों निकले, कहां सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुरु का पाना चित करे, सतगुरु आपे कृपा करे। गुजरी महला कीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई। हर मेरा

सतगुरु मिले हर मन वसै सहजी रहे समाए रहाओ। जहाँ पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए बैराग ते हर पाए हर सू रहे समाए। शिव मुक्ते जे मन जिन्हे फिर तात न लागे आए दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिसकी रजाए।

यही अंत गया पछताए। शिव मन काशी सब तीरथ सिमरत सतगुर दिया बुझाए। अक्सर तीरथ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजनी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन शिक्षा से। दूजे पाए जेता पढ़े परत गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुर मिले मन संतोषी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय ना कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए।

संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पादहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए तिग जीवे तिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सतसंगत शब्द मन मोह, जप गोविंद गोविंद त्याय सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है गुरमुख कौला रिद सिद लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है। गुरमत पागहीन मत ही के नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी मुख बोले पर उपकारे, जो जन सुने सरदार।

प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरुष नाम

नानक जन हर की शरण आई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी मैला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, है अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई राव। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव डे आई, तन तन सबा

जंतु पाए ता कारज आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे पास सहरिया रहाओ जनन पिता लोक सुख मनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया।

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहा। शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। असच मज्जन कर स्नाना, भ्रम आए थर सारी। अनक सोच करे दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेष बुद्ध परदासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमक न बिसरो मन।

नवनिध पाई आश्चर्यो हर सोका आवो खर्चो कोट न आवे हलत पलत कह संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे।

प्रीत कापड़ पथ परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो हर चरणा हो कौला नानक दास उन

कहा हो। देश कमावन तन जोरन की मनसा भी चैनिक से सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे, जमपुर ऊठ सिदास। होए

नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया, दिलस ना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, अरे कृपाल दयाल प्रभु मेरे, साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ

सारो वर्ण जात को पूछे नाही बासे चरण रवारो ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल सृष्ट को तनी कही जय जन को अंग निरारो रहाओ साध संग नानक बुध पाई हर कीर्तन आधारो नाम देव त्रिलोचन।

श्री ब्रंच अर सगल मोन जन जह न सकाए गता। प्राप्ति अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहो है एचो जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयो जह जह अवसर आए बनयो है तहां तहां हर के आयो। प्रभ को भगत वचल बिरदायो करे प्रतपाल बारक की न्याय जन को लाड लडायो रहाओ। जब तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो शरण परयो नानक ठाकुर की अभय दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन राती आराधो प्यारो निमख ना की जय टीला संत सेवा कर पावनी लाये त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान दंगीला

कहो नानक तिस गुर बलिहार, जिन सबका किया उधार, गुजरी मैला पंजवा। मात पिता पाई सुत बंदत, तिन का बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा। ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहा उहा तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श पायो, बिनस्यो सगल ने होरा। गुजरी मैला पंजवा। आल जाल प्रम मोहत जावे, प्रभ से की रंग लाए, मन को इह उपदेश।

पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जी आ सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक।

तेरे चित चित वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ दयाल पुरख सर्व के ठाकुर दिनों करो कर जोर नाम जपे नानक दास।

चरण कमल संगराज सगल जीव जाको आराध है ताहू को तू चाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखे तिस कहा करे संसार। गुजरी महला पन्नवा जल की तेज सवारी आप हर हर नाम दियो गुर अवखदे उतर गयो सब।

गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरण आयो गुजरी मैला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आगे तेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समरथ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवा।

मैं मिटे सगल उपाद रहाओ। मात पिता सुत वीत पाई तिस बिना नहीं कोए। ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए। कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम। शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ के नाम। अगम

आज संग उधार एहु मन आज पहर आराद काम क्रोध अंकार बिन सह मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी शरणता की आओ चरण कमल आराद हृदय एक सों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रभ दयाकारी बक्सली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी मैला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बिना से पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत राव जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनग्रहो आप राखे पै पूरन काम साफ सास ना

अटल पदवी नाम सिमरन, दृढ़ नानक हर हर शरण, गुजरी मैला पंजवा। अहं बुद्ध बहु सजन माया, महा दीर्घ रोग, हर नाम औखद गुरु नाम दीनो, करण कारण जोग। मन तन बांसी है जन तूर, कोट जन्म के लह पातक, गोविंद लोचा पूर रहाओ। आद अंते मद आशा कुकरी विकराल, गुर ज्ञान कीर्तन।

बिन अवर ना ठाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लिवलागी, कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी।

जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविजत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रवदाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवनहार ऐ जी जब तक संयम सच आधार हर हर नाम दिन सुख पाई है तेरी भगत परे पंडार रहाओ सुन समाज रहे लिव लागे एका एक ही शब्द विचार जल थल तरण जगन तह नाही आपे आप किया करतार ना पद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्ण महेश आकार सर्वे जाचक तू प्रभ दाता दात करे अपने विचार कोट के तिस जाचे प्रभ नायक दें दे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंत

ताको काल नाही जम जो है बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पे नाम निरंजन दीजे प्यार नानक चात्रिक अमर।

पिलाई गुर प्रसादी हर प्रभु जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेश करें पिछिया को केते उधर परन कहताए बिन हर

कर कृपा गुर दर्श दिखाओ, हौ मैं शब्द जलाई। ओ जी क्या मांगो किस रहना दिसे, इस जग में आया जाई, नानक नाम।

सोग बिजोग विसर्जत रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की, सतगुर वाक हृदय हर निर्मले, ना जम कान ना जम की बाकी रहा, हर गुण रसन रवे प्रभ संगे, ज्योतिष पावे।

भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल बिनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरणी।

गुर शब्द हर रमणं मत तत् ज्ञानं कल्याण निधानं हर नाम मन रमणं चल चित्त वित्त ब्रह्मा प्रमं जग मोह मगन हितं फिर नाम भगत दिलं मति गुरवाक शब्द रतं परमात परम न चूकई जग जन्म ब्याद।

पज शरण सतगुरु उबरे हर नाम रिद रमणं गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं तै पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ सरणी लब लोभ।

उस मन अंधे को मार्ग पाए। अर्जुन नाचे सकत निवारे, शिव कर नींद न हुई, शक्ति कर जगत सूता नाचे तापे, अवरो गावे मनमुख भगत न होई।

हर दिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप तरे कुलतारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन

जात। एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कब है न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रैलोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन अवर

पै ना जाए, सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए, नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना, अवरी को चितलाए, नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा, सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच, कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी, संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया, ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सबत सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया, माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा, सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर के पाण

आप वड्याई देवे पौड़ी, माया मोह अज्ञान है भिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी, अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय है।

होए सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुरु मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाई है दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हो मैं खोई है हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुरु स्यो चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे आ जीविया क्या जुग में पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुरु स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुरु सो तन सौंपिया।

आई जल मोई कंत न लायो पाओ नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता उपाय किते न पाई है हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सरना।

केसनो कूड़ बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जी ऐसे

जिना नाम तन खटिया ए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गैर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसै पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत कोई सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ, शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए ना रलन ओना अंदर कूड़ सुहाओ। नानक करते बनत बनाई, मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे। गुरमुख तरे जप हर।

हर सुख दाता मन वसै। हों मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जे अंदिन हर लिवलाए।

पे रस होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी, हर गुरुमुख नाम ते आये लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आप अखाए दा।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिल्याई वड़ पागिया वाहो वाहो मोह कढाई। वाहो वाहो करें सही जन सोने तिनको प्रजा पूजने आई। वाहो वाहो करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम फूले नदर नामनी मन मुख अंध अज्ञानी उपाय कितै न लबनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रहन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह करमी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

नाउ जात ना जायसी मनमुख दुख खाता रसना हर रस ना चखियो फीका बोलाता जिना गुरमुख अमृत चाखिया से जन तृप्ताता। श्लोक महला तीजा। वाह वाह तिसनो आखिए जे सच्चा गहर गंभीर वाह वाह तिसनो आखिए जे गुणदाता मत तीर

जे सतगुर दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिव लाए, नानक वाह वाह करें से जन निर्मले, त्रिभवन सोजी पाए पौड़ी, हर के पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जय, हर के पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जय, हर के पाणे सुख पाये हर लाहा नित ली जय, हर के तख्त बहालिये निज कर सदा वसी जय।

वाहु वाहु करत्या मन निर्मल होवे हौ मैं विच्चों जाए। वाहु वाहु गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए। वाहु वाहु करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुर सिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है इसवाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमत्ती हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो पच मोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न को।

पाए खुआए, जम्मण मरण न चुकई होमे विच दुख पाए। जिना सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो वही, ना ओए दुख सहाए, नानक गुरमुख उबरे।

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहना है प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुरु मिले तिस पौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा कीती करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल होवे शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम होवे हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वडियाईयां दरगे मोख द्वार, पैते निरपो पाये मिल ज्योति ज्योत अपार, नानक खसमे पावे सा पली जिसनो आपे बख्शे करतार। महला तीजा, सदा सदा साला ही है सच्चे को बल जाओ, नानक एक छोर दूजे लगे साजेवा जल जाओ, पौड़ी अंसा

गुरमुख प्रगटैया तिथे शोक विजोग ना व्यापै अस्थिर जग थिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सोहो आपरवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बहरा फिर उजड़ पाए पौ।

सब फल पाया, अमृत हर का नाम सदा ते आया, संत जना के संग दुख मिटाया, नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा, खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय, महल भगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो, बरसना ता बरस

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुर नाओ। सतगुर से तीरतया दरगे पाये थाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे, जग में उत्तम कादिये विरले के ही के महला पंजवा। रखे रखन हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन, हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन, साप जना कै संग पव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी। अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है, सच्चो सच्चा सच सच निहारी है, कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है, सबसे दे दातार जेत उपारी है, इक्कत सूत परोए जोत संजारी है, हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है, प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है, तेरी गत मित लकी ना जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा। जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे, जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे, जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए, जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा। किती बहन बहने मुच बजाएन वज, नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी। तुद त्याएन बेद कते बां सन खड़े, गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े, ब्रह्मे तुद त्याएन इंद्र इंद्रासना, शंकर विष्ण अवतार हर जस मुखपणा, पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए, ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए, कूड़ो करे विनाश तरमे तगी है, जित जित लाए आप तित तित लगी है। श्लोक महला पंजवा। चंग्याई आलक करे बुरियाई होए शेर, नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर। महला पंजवा। कितिया कुटंग गुज्जा थी है नाहित, नानक तैसे टकिया मन में सच्चा मित पौड़ी। हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया, नवनिद पाई राज जीवा बोलिया, अमृत नाम निधान दासा कर कणा, तिन कै संग निहाल श्रवणी जस सुना, कमावा तिन की कार शरीर पवित होए, पखा पानी पीस भिक्षा पैर तोए, आपको कछु न होए प्रभ नदर निहालिए, मोहि निर्गुण दिचे थाओ संत तरमसालिए। श्लोक महला पंजवा। साजन तेरे

लापन्यवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याय सदा हर सो लगा सत गुर सेव जा को करम तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछो ताओ तुदनो जपत्या पहुंच न सके कोए तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत पंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किछ लद्दम बिखम ना डिठम कोई। जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट ना सके कोई पौड़ी। होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए। अंदर वरते ठांड प्रभचित आए पूरन होवे आस नाए मन वसाए। कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए। तिन पाए सभी थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौ सह चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी। आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिया मैल सात संग उठिया। जन्म मरण पौ कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप। तिस्यों लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया। रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी। सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया। पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया। तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया। हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछो है जम्बूर खवे ना मंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी। तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे। बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया सरन परे तेरी दास करगत होए मेरिया। तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले। अगम अगोचर बेअंत अंत न पाये जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। करछिया फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत ना छिजई। पौड़ी। आराध्यो सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास। त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ सरनाई पज सुखी हो सुख लहो। कर्म कर्म तत ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए। जिसनु आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख न थी वही। पौड़ी। वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप। दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप। कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप।
आपे लयन छाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप वड्डी हूँ वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै कृपाल प्रभु हर हर से जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों तेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागी हो जल थल मही अल सोए नानक नाम अराध्य है बिघन न लागे कोई पौड़ी। पगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए पगता तेरी टेक रते सच नाए जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए। पगत तेरे दयाल ऊ ना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। पगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते

कर जोड़ी है। श्लोक महला पंजवा, किल विकसबे उतरन नीत नीत गुण गाओ, कोट कलेसा उपजे नानक बिसरे नाओ। महला पंजवा, नानक सतगुर पेटे पूरी हो वै जुगत, हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे हो वै मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ, महारोग विकराल तिने बिदारुओ, पाया नाम निधान बहुत खजानिया, जिता जन्म अपार आप पछानिया, महिमा कही न जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा, उद्दम करेंदिया जियो तू, कमाउंदिया सुख पुंच, त्याइंदिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। महला पंजवा, शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए, आया चित निहाल साहिब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार, सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा, सो भगता मन उठा सच समारा, तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा, काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार, राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा, खांदिया खांदिया मोह कटा, पैनंदिया सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना, जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना, नाम तेरे के रंग दुर्मत तोवना, जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना, जो तेरे रंग रते से जोन न जोवना, अंतर बाहर इक नैन अलोवना, जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना, नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा, जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक, नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड नपाक। महला पंजवा, जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग, जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आद जुगादि आप रखन वालिया, सच नाम करतार सच पसारिया, ऊना कही न होए कटे कट सारिया, मेहरवान समरथ आपे ही कालिया, जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया, आपे रचन रचाए आपे ही पालिया, सब किछ आपे आप बेअंत अपारिया, गुर पूरे की टेक नानक समालिया। श्लोक महला पंजवा, आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया, सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया, सादा संग अपार अंदिन हर गुण रवे, पाए मनोरथ सब जोनी नह पवे, सब किछ करते हथ कारण जो करे, नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा, तिसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जंत आया कसम तिन सुख पाया, सफल जन्म परवान गुरमुख आया, हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया, जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया, जो जो दिता खसम सोई सुख पाया, नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित, जिसे पुलाए आप मर मर जम्मे नित पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते, प्रभ दास का दुख ना खब सके, हर जोनी जुते मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा, राम

त्रिदातार मनोरथ पूर्या, इच पुन्नी मन आस गए विसूर्या, पाया नाम निधान जिसनो पालदा, जोत मिली संग जोत रहया कालदा, सुख सहज आनंद उठे तित कर, आवन जान रहे जन्म ना तहां मर, साहेब सेवक इक इक दृष्टाया, गुर प्रसाद नानक सच समाया।

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुस्थई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बेही है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे कबीर की माई। ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर हर का नाम लिख लियो शरीर। रहाओ जब लग तागा बाहो बेई तब लग बिसरे राम स्नेही। ओछी मत मेरी जात जुलाहा हर का नाम लेओ मैं लाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माई हमरा इनका दाता एक रघुराई।

मले ना लाछे पार मलो पर मलियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कमने जाने री बाई कौन कहे किन बूझिए रमैया आकुल री बाई रहाओ जो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई जो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई जो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परे।

त्रिलोचन जियो के पदे कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। अंतर मल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी, हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। कर कर खाया पिंड बंडाया, चिंता मुंडा माया। ओम मसान की पसम लगाई, गुर बिन तप न पाया। काय जपोरे काय तपोरे, काय बिलो वो पानी। लख चौरासी जिन उपाय, सो सिमरो निर्वाणी। काय कमंडल कापड़िया रे, अड़सठ काय फिराही। बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी, कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। सर्प जोन वल वल अवतरे, अरि बाई गोविंद नाम मत बिसरे रहाओ। अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। बेसवा जोन वल वल अवतरे, अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। सूकर जोन वल वल अवतरे, अंत काल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। प्रेत जोन वल वल

परमाद पुरुष मनोपिमं सत आद पावरतं परमद्भुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जस स्मरणेन जन्म जराद मरण पयं प्रहाव इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं अवपूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्मिदं लोभाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

लटरी मदरी ठाकुर पाई ओ सुंदर हर कुल मिली। एको प्रियो सखिया सब तरह की जो पावे पुरसा बली। नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे कितरा है चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है। गुरमुख रंग चलू ले राती हर प्रेम पीनी चोली है। रहाओ हो फिरो दीवानी आवल बावल किस कारण हर टोली है। कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम किसकी गुलगोली है। सतगुरु पुरख मनावो अपना हर अमृत पी चोली है। गुरु प्रसाद

अंधेरा संती काटिया जीव दान गुरदैनी कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी तरम तरम किस उपज ना आयो नह उपजी निर्मल करनी छाड़ स्यान तो संजम नानक लागो गुर की चरणी देव गंदारी महला पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के पाहा रहो खोजत खोजत खोज विचारो हर संत जना पह आहा तिना प्राप्त एवं निधाना जिनके कर्म लिखा से बड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम निसाहा देव नारी महला पंजवा मन कह अहंकार अफारा दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिशा सोचारा रहा।

अंध गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा करण कराम हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाए गुण गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपेरे करी न मोहत न चसा विलंब हो काल नित हेरे अंध बिला

लातनिया। प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा, सुंदर त्यान तार दिल रहनी, जी प्राण से प्यारा रहाओ, शास्त्र वेद पुराण अवलोके, सिमरत तत विचारा, दीना नाश प्राण पत पूरन, पवजल उदरन हारा, आजवाद

हरी महला पंजवा तेरा जन राम रसायण माता प्रेम रसा निज जाको उपजी छोड़ न कतहु जाता रहो बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिन कीनो सौत विदाता सगल समूह ले उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देव गनारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाये अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहा मोह रोग सोग तन बांधे बहु जोनी परमाये टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआये करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाये संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाये देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दो कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया परोपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर्धरया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंतिवारे जब चितवो तब

तारी महला पंजवा दर्शन नाम को मन आछे प्रम आयो है सगल खान रे आहे परयो संत पाछे रहाओ किस हो सेवी किस आराजी जो दिसते सो गाछे साध संगत की सरनी परिय चरण रेन मन बाछे जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्तर माया आए पयो नानक गुरचरनी

तुहारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिसारे। देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारे हो प्रभ गुण गाए बिखे बन करया

बहु व्यंत अत बड़ो बहारो हाहा नहीं अगहू चा तोल न तुलिये मोल न मुलिये कत पाइये मन रूचा खोज असंखा अनेक पंखा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करे ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव।

अगम अगम्मा कवन महमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ काहे परमत हौ तुम प्रमो ना पाई रविया रे रविया सर्व थान ज्यो बैसंतर काश मझार बिन संजम नहीं कारज सार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत काज अभिमान कहो नानक पाए हैं परम निधान। देव गंधारी महला पंजवा जानी ना जाई ताकी गात रहाओ कह पिथारो हों कर चतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा। देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अन कोही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथ है जब पत देखो तब तत साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा काट काट अंत

मात पिता पाई सुत बंदत अर सुन गृह की नार रहो तन से प्राण होत जब न्यारे तेरत प्रेत पुकार आज घरी को नहरा करते देश निकार निज कृष्णा जो जग

क्या दारा क्या मीत रहाओ मेरो मेरो समय कैक है हिस्सो बांधो चीत अंतकाल संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहूने संगत सिख दे हारो नीत नानक पौजल पार पर जो गावे प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद राग विहागरा चौक दे महला पन्या।

मन सिंधियाला फल पाया हर प्रभ गुरु नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठदा मेरी जिंदड़ी मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी मन सुनिए हर लिव लाए राम चिरी विछुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज।

कोई हर सब आन मिलावे राम। हो मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी, मन चिंदेरा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रगासे राम। हो हर बाज उडीनिया मेरी जिंदगी, जो जल बिन कम

राज विहागड़ा महला चौथा। अमृत हर नाम है मेरी जिंदगी, अमृत गुरमत पाए राम। हो में माया दिखे मेरी जिंदगी, हर अमृत दिख ले जाए राम। मन सुखा हया होया मेरी जिंदगी, हर हर नाम से आए राम। हर काज बड़े लिख पाया मेरी जिंदगी, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन भेदिया मेरी जिंदगी, जो बालक लग दुध खीरे राम। हर दिन सांस ना पाई है मेरी जिंदगी, जो चात्रिक जल बिन तेरे राम। सतगुर सह नहीं जाए पाओ मेरी जिंदगी, गुण दसे हर प्रभ तेरे राम। जन नाम घर में लाया मेरी जिंदगी, कर वाजे शब्द कनेरे राम। मन हो मैं विछड़े मेरी जिंदगी, बिख बांधे हो मैं जाले राम। जो पंखी कप

ये गुर सतगुरु वीर लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तार।

सारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूर्ख मुगत निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी गुरु सतगुरु।

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़ी ए, बिख औजल तारन हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़ी ए, तिन संत जना जयकारो राम। नाम तुहार

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदगी ये सब हर हर नाम से आवे राम पौन पानी दे संतरो मेरी जिंदगी ये नित हर हर हर जस गावे राम वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी ये मुख हर हर नाम से

जो मनुख पाप लुभाने राम जन नानक गुरु मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

कर से वो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो, जन का मार्ग सा दे राम, मार्ग बिखरा साज गुरमुख, हर दरगे सो।

ए मन तन सब अर्पे हा राम, मन तन तन सब प्रभु केरा, क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके, तिस गुर नाल सुनेहा जन कहे नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजे हा। देह दिस खोजत हम फिरे वे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साध।

जन कहे नानक सतगुर मिलाया हर पाए अड़ा कर आए। राज बिहागरा महला पंजवां अत प्रीतम मन मोहना कंठ सोहना प्राण अधारा राम सुंदर शोभा लाल गोपाल।

खान पान सिगार बिरते हर कंत बिन क्यों जी जिए। आसा प्यासी रैन दुनियर रह न सकिए इक तिले, नानक पयम कै संत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिले। सेज एक प्रयो संग दर्श न पाये राम, आवदन मोहे अनेक कत महल बुलाये राम। निर्गुण निमानी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निदे, तम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेशक नव निदे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाये, नाम पयम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाये। संतन के प्रसाद हर हर पाया।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरत मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना।

बहु खजाना तिन पे हर जियो हर कीर्तन लाहा राम। काम क्रोध ना लोभ ब्यापे जो जन प्रभ सिउ राखिया।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु ते आए, जाए मिलिए हर जाना, मान मोह विकार तजिए, अरत तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रम तीत

नानक सब किछ आप है अवर न दूज जाए पौड़ी। तेरी वड्याई तू है जानदा, तुझ जेवड़ अवर न कोई, तुझ जेवड़ होर सरी।

आए पिसावे आप पकावे आप पांडे दे परोसे आपे ही बैठावे आपे जल आपे देसिंगा आपे चुली परावे आपे संगत

बंधन तोड़े सचवस है, अज्ञान अंधेरा जाए, सब किस देखे तिसे का, जिनकी आतन साज, नानक शरण करतार की, करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे खात किया, जदों आपे खात किया बह करते, तदों कुछ ना सेवक दिया, तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया, फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख, आपे

कथिय ना पाइए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर में किन ना पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कथिय आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख देने करता आपे बख्श करी जय आपे सुख दुख देने करता आपे बख्श करी जय श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह पैके ते निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी।

मनुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार, कूर कमावे कूर संग रहे कूर करे आहार, दिख माया।

पार पवे जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग है स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारज तुझ करके तू हर सुख दाता वडन श्लोक महला चौथा।

आप मद अमृत किसकी तार, सत संगतियों में लाप हुए, लिव कटोरी अमृत परी, पीती कथे विकार पौड़ी। आपके सुर नर गण गंधर्वा, आपके

नानक सतगुरु मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे संत परम संत सब आपे, आपे ठाकुर दास पाया, आपे दस अठ वर्तु पायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अपुल न पुले कभी, सब सच कपाव से सच किया, आपे जिना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा, हर नाम न सुमरे।

आए हो, सतगुरु का पाना चित रखो, संजम सच्चा नेहो, नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी, अग्गे हर्षो केल करे हो पौड़ी। आपे पार अठारे बनस्पत, आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सिंचे, आपे ही मोह पाए, आपे करता आपे पुगता, आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा, आपे रहा समाए, जन नानक वजे आई आखे।

मानस परया आया, मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए, अपना पराया

सो सब किस पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी, सोई साओ सच्चा बनजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी। सब किसे नो सालायो संतो जिन दूजे पा

पौड़ी जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाम हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप।

बस सब कुछ तेरे बस है, तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर रज रज जन साहो, सब पदार्थ पालन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो। श्लोक महला तीजा सब कुछ हुक्मे।

गुरुमुख जाप पत सच सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वदाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करने

के मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लै रजाए, रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए, कर में पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर, नानक सेवड पागी जिन हर नाम से आया, गुर पर सादी मन वसाया, वडहंस महला तीजा, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठाए, हौ में विच सेवा ना हो वई, ता मन बिरखा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले, ता विच्चों हौ में जाए रहाओ, हौ में सब शरीर है, हौ में ओपत होए, हौ में वड्डा गुबार है, हौ में विच बुझ ना सके कोए, हौ में विच पगत ना हो वई, हुक्म ना बुझिया जाए, हौ में विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हौ में गई, ता सच वसिया मन आए, सच कमावे सच

अपने गुरु को जाता रहाओ। मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया। हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे। वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी। हूँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाने हों क्यों कर फिर को मिलो ए आनी जो फिर पावे।

ए मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा तिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण बस

क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए कुछ अपने सतगुरे गुर कुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा से आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी सितलाए हो सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हो क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हो सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे रा सच सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं

जो हर हर कथा सुनाए, तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम ते आवा। गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी, तित वेले मर जाए जियो मेरा। हर वेखन को सब कोई लोचे, सो वेखे जित आप विखाले। जिसनो नजर करे मेरा प्यारा, सो हर हर सदा समाले। सो हर हर नाम सदा सदा समाले, जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया। नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर तेती रलिया। वडहंस महला पंजवा कर पहला, इक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अस ऊंचा ताका दरबारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। कोट कोट कोट लख तावे।

रहाओ। लाख भगत जाको आराधे, लाख पति सर तप ही साधे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्त जाने तोरा, है कोई साजन पर्दा तोरा, करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको दे जियो कुर्बाना, फिरत फिरत संतन पे आया, दुख परम

जिन्हें तू जाते सदा सदा जाई बलिहारी। इत उत देखो ओट तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता। नानक साधु देख मन राता। वडहंस महला पंजवां।

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सर्व पर्यो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा उवड़ दाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कै निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंजा।

मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे ये तो खेल खिलाए बालक रह ना सके बिन खीरे मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे तो भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हौ एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिन लाता हौ क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई कर ना सको हूं वेता जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेशा मैं सब सिगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जहां सह बात ना पूछिया।

सब जाए तन तन ते सुहागणी अमाली जिन सो रहा समाए हों वारिया तिन सुहागणी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया प्रभु।

सच तुन सच शब्द विचारा, अंदिन सच सलाना, तन तन वड भाग हमारा। मन मेरे साचे नाम विचो बल जाओ, दासन दासा हुए रहे ता पावे सच्चा नाओ रहाओ। जेवा सच्ची सच रती, तन मन सच्चा होए, बिन साचे होर सलाहना, जासे जन्म सब खोए। सच खेती सच बीजना, साचा वा पारा, अंदिन लाहा सच नाम तन, भगत परे पंडारा। सच खाना सच पहनना, सच टेक हर नाओ, जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ। आवे सच्चे जावे सच्चे, फिर जूनी मूल न पाहे, गुरमुख दर साचे सच्यार है, साचे माहि समाए। अंतर सच्चा मन सच्चा, सच्ची सिफत सुनाए, सच्चे थान सच सलाना, सतगुर बलिहार है जाओ। सच वेला मूरत सच जित, सच्चे नाल प्यार, सच वेखना सच बोलना, सच्चा सब आकार। नानक सच्चे मेले ता मिले, आपे ले मिलाए, ज्यों पावे।

अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काढ लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंब है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिन

नाता सो प्रमाण सच कमाई है। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बई है भला कही है सुरत शब्द लिखाई है। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरीकी जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे। किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे। नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुर कदे। सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय है आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया। एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया। लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम फुलाना। सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना। नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना। दुख गया सुख आए समाना। गावन सुरनर सुगड़ सुजाना। सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे। माया मोहे चेते नाही एला जन्म गवावे। एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना। नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना। तेरा वक्त सोहा।

चढ़े सवाया, एक करम करम ना होए संजम, जाम ना एक पछाणी, वक्त सुहावा सदा तेरा, अमृत तेरी बाणी। हौ बलिहारी साचे नावे, राज तेरा कब हो ना जावे, राजो ता तेरा सदा नहीं चले, एहो कब हो ना जावे, चाकरता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हौ बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे, जब

जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हूं आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

तेरे बंके लोएन दंत रिसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

तरला जुआनी आप भाणी इच मन की पूरी सारंग ज्यों पग तरै ठिम ठिम आप आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती उदक गंदा वाणी बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपने पिर के रंग रती मोइये सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रही मोइये पिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर सो निहुर चाया आप गवाया ता पिर पाया गुर के शब्द समाया सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे साहे सवारी। निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे जुग जुग एको जाता कन बाली कोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावे शब्दे रह हदूरे। सोहागनी जाए पूछो मुइये जिनी विच्चों आप गवाया फिर का हुक्म ना पायो मुइये जिनी विच्चों आप ना गवाया जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया रंग स्यों रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती अंदिन नाम वखाने कामन वड़ पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिन सच सिगार बनाया। हों मैं मार मुये तू चल गुर के पाए हर वर रावे सदा मुये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला अंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जा चले सतगुरु पाए। वडहंस महला तीजा गुरुमुख सब

हर राजी जय अन दिन नाम वखाणे गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस तीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले की जय। गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंज तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए। हर व्यापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई स्वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसे कोहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए।

मन मेरिया अंतर तेरे निदान है, बाहर वक्त ना पाल, जो पावे सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सखाई, मन मुख अंधले ज्ञान में हुने दूजे पाए खुआई। बिन नावे को छूटे नाही सब बाजी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त न पाल। मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वा पारा, सतगुर सेवन अपना अंतर शब्द अपारा, अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा। नामे नौ निद पाई मन मुख माया मोह व्यापे, दुख संतापे दूजे पत गवाई। हौ मैं मार सच शब्द समाणे सच रते अधिकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन वडपागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया, मत निचल अत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया। एक कामन हितकारी माया मोह प्यारी, मन मुख सोए रहे अपागे, नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडबागे। वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ बन जिए, सतगुर दिया बुझाई राम। लाहा लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिस आप बुझाए। लाहा भगत है सारे बिन पग

पत कोई पढ़ पढ़ पंडित वाद बखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वपारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कह दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुक्त गवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया मन मुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप तरे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यो तिस दी वडे आई राम ज्यो तिस दी वडे आई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बक्से सोई गुरु प्रसाद जी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछू न जाई वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमति हर नाम वणजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है के वापारा हौ मैं माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय सात शब्द विचारी अंतर खूटा अमृत परया शब्दे कार्ड पिए पनिहारी जिस नदर करे।

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पे करें पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया के वा पारा राम माया के वा पारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाए बिख का कीड़ा बिख्यो लागा बिष्टा माए समाए जो तुर लिखिया सोए कमावे कोई न मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया होर मूरख कूक मुए गावारा माया मोह मन रंगिया मोहे सुध ना काई राम गुरमुख ए मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच परे पंडारा गुरमुख होवे सोई बूझे सच सवारण हारा आपे मेले सो हर मिले होर

माया मोह सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे, तिस जेवड़ अवर न कोई। मन मुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई। नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मोहे खुआई। ए जगत जलता देख के, पज पे हर शरणाई राम। अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देहो वडाई राम। रख ले वो शरणाई हर नाम वडाई, तुद जेवड़ अवर ना दाता। सेवा लागे सेवड़ पागे, जुग जुग एको जाता। जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर शरणाई। जो हर मत दे सा उपजे, होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम। आपे दे बुझाई अवर न पाई, गुरमुख हर रस चाखिया। दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया। कर मैं निज कर पाया, सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पाइन, मत परवान।

दृढ़ाए। जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निद पाई, हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट शरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

गुरजेवर गुरजेवर दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हाँ गुरबिन खरी निवाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदाला।

हर आपे मिले करे सो होई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे अवर न करना जाए, बहुत स्याणप लया न जाए, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई, हर आपे पुरख निरंजन सोए। वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम, सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर

नेफल जन्म किन बिछा गवाया, ते साकत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ सूखे, पागहीन हर दूरे। हर हर तिन सा दर्श न करियो, जिनी हर हर नाम न प्याया, जिनी दर्शन सतगुरु पुरख न पाया, हम चात्रिक दीन।

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुखदा।

मार बिदारे। हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते, दुख लाके पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सब दिन से हों मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरोग तय शरीरा। अनदिन सहज समाध हर लागी, हर जपिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

विकंपयंगा अनतरंगा गुरुमुख पार लंघाए हर गोहित चढ़बड़ पागी लंगे गुरु सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुण गा।

महामार्ग पंख बिखड़ा जन नानक पार लंघाया। कोड़ी तेजन दे राम पाया राम, जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम। जित हर प्रभ जापै।

हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जंग आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वधाई। वडहंस महला चौथा दे तेज नड़ी।

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक हर

आज सबत आया मंगल गाया, चूके मनो आदेशा, सो प्रभ पाया कत है न जाया, सदा सदा संग बैसा। प्रभ जी पाना सच्चा माना, प्रभ हर तन सहजे जीता।

ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सत कुरबान श्लोक।

जन साख अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अमयोग उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन कनिये वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बौर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम। मन इच्छ पाये प्रभ त्याये मिटे जम के त्रासा। गोविंद गाया साथ संगाया कई पूर्ण आशा। तज मान मोह

पट पट हर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा विराजे अगम अगोचर ऊंचा, गुण के अंत किस कह न जाई कोई न सके पहुंचा, आप उपाय आप

आप निरालम संदै बांधी कर हुकम छडावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पै दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप तुलाइया ना भोजन परकारो वा भोजन पाओ ना।

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाए गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए बिन गुरु।

हर नाम हम श्रेवे हैं, हर नाम हम पूजे हैं, हर नाम में ही मन राता, हर नाम में जेवड कोई अवर न सूजे, हर नामो अंत सदाता, हर नाम दिया गुरु।

सतगुरु सेवै तां सुख पावै, नाहै तां जाहेगा जन्म गवाए। रहाओ त्रै गुण ताप बहु कर्म कमावै, हर रस साधना आया। संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुरु सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मिलाए। हर रस पी जन सदा कृपा से, विचों आप गवाए। यह जग अंधा सब अंग कमावे, बिन गुर मग न पाए। नानक सतगुर मिले ता

तुम उपजे दतमत तब ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुरु सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुलाना रहा त्रैगुण माया परम पुलाया होमे बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उबो गर्भ जोन दुख पाए त्रैगुण वर्ते सगल संसारा होमे विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

नाम निधान है प्यारा, कर दया अमृत मुख चोए रहाओ, आपे जल फल सबत है प्यारा, प्रब आपे करे सो होए, सबना रिज्क समादा प्यारा, दूजा अवर न कोए, आपे खेल खिलाएंदा प्यारा, आपे करे सो होए, आपे ही आप निर्मला प्यारा।

कर बालक रूप उपायदा प्यारा चंदूर कंस के सुमारा आपे ही बल आप है प्यारा बल पन्ने मूरख मुगदा सब आपे जगत उपायदा।

सौंप आई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सब संगत पुरुष तुम्हारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अंदिन जागत रहे बनवारी सोरठ महला चौथा हर सो प्रीत अंतर मन भेदया हर दिन रह न जाई।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए है, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां सीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहूं शरणा।

कोई। सोरठ महला पंजवा कर पहला सिख के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। किस हो जाची किस आरादी जा सबको कीता होसी जो जो दी सै वडा वडेरा सो सो फाकूरा।

रहाओ जिन हर त्याया सब किस तिसका तिसकी पूत गवाई ऐसा तन दिया सुख दाते निफुट न कभी जाई आनंद भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराध अंदिन नाम वखाणी उपदेश सुन।

पूत के पाला सूरत महला पंजवा कर पहला चौथ के गुरु गोविंद सलाई है पाई मन तन हृदय पार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए छार साध संगत को वारिया भाई जिन एक ओंकार आधार सोई सत आराधना पाई जिससे सब किछ होए गुर पूरे जानाया पाई तिस बिन अवर न कोए रहाओ नाम विहुने पच मोए भाई गणत न जाए गणी विन सच सोच न पाये भाई साचा अगम धनी आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी सिमरत शास्त सो दिया भाई विन सतगुर परम न जाए अमित कर्म कर था क्या भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया भाई।

सच सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, तिस प्राप्त होए। ओट मदे जन पाये भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके

हो बुझाई सेवों साध गहो ओट चरना नै बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्ध अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आन तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न खापे साध संगत बुद्ध पाए साखत का बकना यूं जानो जैसे पान चुलाई कोट पराध अछाद्यो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया सन बंदेही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही। रे नर काहे पपोरो देही फूट जाएगो तुम।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुर ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुर पूरा पेट्यो वड़ पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार, आगे सुख पाछे सुख सह।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है बिहोन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया राखे, नानक तो गुरु पूरा पेटे हो, सगले दुख विनाशे, सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण करावन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी।

करते हैं जन सेवा हर कीर्तन रस गाये इहा सुख आगे मुख उजल जन का संग वड पागी पाये रचना एक अनेक गुण पूरन जन की केतक उपमा कही है अगम अगोचर सब अविनाशी शरण संतन की लही है निर्गुण नीच अनाथ अपराधी ओट संतन की आही बूढ़क मोगृह अंधकूप में नानक लेहो निवाही सोरठ महला पंजवा हर पहला जाके हृदय वस्या तू करते ताकि तै आस पुजाई दास अपने को तू विसरै नाही चरण सूर मन पाई तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निदान सुखदाते स्वामी सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई सेवक को तुम सेवा दीनी दर्शन देख अघाई सर्व निरंतर तुम्हें समाने जाको तुद आप बुझाई गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना प्रगट पाए सब ठाई सोई ज्ञानी सोई प्यानी सोई पुरख सुभाई कहो नानक जित करे दयाला ताको मन ते बिसर न जाए सोरठ महला पंजवा सगल सामग्री मोहे व्यापी कब ऊंचे कब नीचे शुद्ध न होई है काहू जतना ओरक को ना पहुँचे मेरे मन साधु शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो कर्म पुलावा कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा पूरन भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जासो कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाओ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना कर तू धारा कहो नानक गुर बिन नहीं करिये एह पूरन तत बिचारा सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारियो राम नाम सत सारा किलबिक काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बानी रहाओ मुक्त फुगत जुगत सच पाये सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूरन पुरख विधाता श्रवणी सुनिए रसना गाये हृदय त्याय सोई करण कारण

साध संग नानक गुण गावे सिमरै सदा गोपाला सोरट महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाते प्रभ सरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई तगत वचल दयाला संता की पैज रखबा आया आग बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा पाप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बने आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे।

तेरे देखत चुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जान्या दूरी रे हर बेअंत हूँ मित्र वर्णो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुर अपने।

ते भयानक भया करें बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया। जह पंडार गोविंद का खुलिया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत पंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जा का मम लीना सेजन कृपित अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिखाई। हर आराधे अरोग अनुदाई जिसनो विसरे मेरा राम स्नेही किस लाख बेदन जन आई रहाओ। जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया। जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन।

मानन में अभिमानी लोभन में लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावे देख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप पावे रहाओ अमलम स्यो अमली लग पायो तुमन पूम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साग लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

तिन जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब खाने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे खाद संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सताणी संत हमारा

संतन सो हम लाहा खाटिया हर भगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का सोखा कर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी

तेरा अंग मंगल विश्रामा, मन बाछत फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। इहा सुख आगे मुख उजल, मिट गए आवन जाने, निरपो पे हृदय नाम वस्या, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम पागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सदा त्याय है। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग तृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकी कछ न वढाई।

साथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नान प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंगरा।

नासी पाँव को विघ्न ना को उलावे जो सतगुरु अपने राखे चरण कमल बसेरिद अंतर अमृत हर रस्ता के कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की छिप जाई नानक दास पाके बलिहार जिन पूरन पैज रखाई सोरठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है देवन हार न जाने जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी जो किच करे सोई सोई जाने रहे न कछु छानी रहाओ जेवा स्वाद लोभ मद मातो उपजे अनक बिकारा बहुत जोन परमत दुख पाया हूँ मैं बंधन के पारा देखिवाड़ अनक पर्दे में परदारा संग थाके चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ठाके दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न पाए।

आई कथा कीर्तन सुखदाई गुर पूरे की बाणी जप अंग करो नित पाणी हर आचा सिमरो भाई साध संग सदा सुख पाये हर विसर न कभू जाय रहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीवे जिसनो कर्म परापत होवे सो जन निर्मल थीवे विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुरचरणी मन लाग

गुण गावत अचुत अविनाशी अम दिन हर रंग जादा मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली आद अंत मद नानक को सो प्रभु हुआ बेली सोरठ महला पंजवा पंच पदा बिन से मोह मेरा और तेरा बिन से अपनी सारी संतो यहाँ बताओ कारी जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ सर्व पूत पार ब्रह्म कर्मान्या होवा सगल रे नारी।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुरु गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी साथ संग प्राप्त तिन पेटत दुर्मत खोई।

फेरो बख्श लेहो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो हर चरण सरण।

सांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ। मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई, हर नाम निधान नानक जन पाया सगली इच्छ पुजाई। सोरठ महला पंजवां गुर के चरण बसे रिद पीतर,

दून चौनी दे वड्याई सोबा नीता नीत रहाओ। जी जंत प्रभ सगल उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे। सोरठ महला पंजवां संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलिश बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार। हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पय अविनाशी, अपना प्रभ पया सहाय। सोरठ महला पंजवा। गए कलेश रोग सब नासे,

सिमर सिमर गुर सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक।

ਨਾਨਕ ਸਦਗੁਰਬਾਣ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆ।

हर के चरण हृदय उर्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिख काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई।

संतो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ। सतगुर पूरे ताप गवाया, अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभ पय दयाला, दुख मिटिया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर, उदरिया सब संसारो। सोरठ महला पंजवा, मेरा सतगुर रखवाला होआ, पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ। साप दया प्रभ आप मिटाया, जन की इलाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाए। हलत पलत प्रभ दोवें सवारे, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन पई बढ़ाई। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहाओ। अंदिन नानक नाम ध्याए, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ

कृपा तारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर त्याय। हम दिन सुकृत करिय रहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। कोट जन्म के किल विखनासे, हर चरणी चित लाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

बिघन विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनग रहो गुर चरणा पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप तराया कर कृपा नाम रस।

सास सास प्रभ त्याये, हर मंगल नानक दाइये। सोरठ महला पंजवा। सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा। पूरे गुर कृपा तारी, तागत पई हमारी। हर की प्रेम

तिन सगली बात सवारी। प्रभ अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण ना विचारिया, गुर का शब्द

संवारे अपने दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वड पागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वड पागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम

लाया हर संग सहाई पाया जह जाये तां सुहेले कर कृपा प्रभु मेले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी कै संग सहाई रहाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतित पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रहन

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हों हों पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपाल।

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ मैला पंजवा

उपाय सुवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांती बहुड़ पिता दल लावे पिछले अवगण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आख सुनाये कहने कतन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती होरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पए आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा

आपे दाता आपे भुगता, क्या इह जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संतां धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात न काई, रहाओ करते पुरख काल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट न कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु भावे, सिमर सिमर दयाला।

दोपदे इस ओंकार सद्गुरु प्रसाद रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुरपूरै कीने दाना सब कुशल के

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो इस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम।

प्रभ अपने संता देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साच सुवाखिया सोरठ महला पंजवा सोई कराए जो तुद भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे हम बारिक तौ शरणाई प्रभ आपे तेज रखाई मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रकट।

काज हमारा होया, प्रभ चरणी मन लागा, पूरन जाके भागा। मिल साध संग हर ध्याया, आठ पहर आराध्यो हर हर, मन चिंधिया।

सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाप रहाई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला हर दास सुनी।

हर आराध सबो किछ पाये, कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी।

दुख रोग का डेरा बनना परमेश्वर दिता बनना दुख रोग का डेरा बनना आनंद करे नर नारी हर हर प्रभु।

हर नानक साच वखाना सोरठ महला पंजवा ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सुरैन साथ साथ संभाली पूरन सबनी थाई रहाओ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम रमा।

हर काज श्रवणा बिछे खगौरी लाती संग मिलाए लिया मेरे करते संत साध पे साथी कर जहली ने सर्व तुदी ने आपे आप मिलाया कहो नानक।

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई।

संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया। रहाओ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी। सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जा

हर गुण गावे, भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे, अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दर गए मुख उजल, सदा सदा सुख पाइए रहाओ। ज्यो कामी काम लुभावे, त्यों हर दास हर जस भावे, ज्यो माता बाल लपतावे, त्यों ज्ञानी नाम कमावे, गुरपूरे ते पावे, जन नानक नाम ध्यावे, सोरट मैला पंजवा, सुख सांद कर आया, निंदक के मुख छाया, पूरे गुर पहराया, दिन से दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सोभ बनाई रहाओ। बोले साहिब कै भाणे, बोले साहिब कै भाणे, दास बाणी ब्रह्म वखाणे, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बनत बनाई सोरठ महला पंजवा। प्रभ अपना हृदय ध्याए, कर सही सलामत आए, संतोख पया संसारे, गुरपूरे ले तारे, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणी, राखे बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक सवारे, गुरपूरे तुस दिया, फिर नानक दुख न सिया। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक।

तिसें प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखें जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखें। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा।

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारे। पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा। जी जंत सब वस्त्र दीने, सेवक सब दरबारे। अंगीकार कियो प्रभ अपने, पावनिद पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिद। पूरन खसम हमारे रहाओ, आओ बैठ आदर सब थाई। ऊन न कत हूँ बाता, भगत सिर पाओ दियो जने अपने। प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नामा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो। अर गाओ रसना गीत रहाओ, कर साध संगत सिमर मादो। होहे पतत पुनीत, काल ब्याल ज्यो परयो डोले। मुख पसारे मीत, आज काल पुन तोहे ग्रस है। समझ राखो चीत, कह नानक राम भजले। जात अवसर गीत। सोरठ महला नाम। मन की मन ही माहे रही, ना हर पजे ना तीर्थ सेवे। चोटी काल गही राव, दारा मीत पूत रख संपत। तन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो। भजन राम को सही, फिरत फिरत बहुते जुग हारे। मानस दे लही, नानक कह।

अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन तैं भी उतरह पारा। सोरठ महला नामा प्राणी कौन उपाव करे, जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करी, कौन नाम गुरु जा कै सिमरे, पाव सागर को तरी। कल मैं एक नाम कृपा निध, जाहि जपै गत पावे, और धर्म ताके सम नाहिन, एह विद वेद बतावे। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जा को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नामा माई मैं के विद लखो गुसाई, महा मोह अज्ञान तिमर मोह, मन रहो उरझाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो, नह अस्थिर मत पाई, बिख्या सकत रहो निस्बासर, नह छूटी अदमाई। साध संग कब हो नहीं कीना, नह कीरत प्रभ गाई, जन नानक मैं नाहे को गुन, राख ले हो सरनाई। सोरठ महला नामा माई मन मेरो बस नाहे, निस्बासर बिखियन को तावत, के बिदरो को ताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन।

मरम न जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन, काटी जम की फांसी, सोरठ मेला नावा। रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार।

नाम रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरध पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर सोग ते रह न्यारो, नाहे मान अप

लागी। शब्द मन वेदिया मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग, सो बैरागी जे खसमें पावे, हृदय शब्द सदा पैर रचिया, गुर की कार कमावे। एको चेत मनुआ ना डोले, तावत वर्ज रहावे, सहजे माता सदा रंग राता, साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी, नाम वसे सुख पाई, जेबा नेत्र सोत्र सचराते, जल बूझी तुझे बुझाई। आस निराश रह बैरागी, निज कर तारी लाई।

जग जोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सो कर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से ही साध जान जो गूंगे मिठियाई अकथे का क्या कथिय पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाले पाई होर क्या को करे चितराई एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यान नाम मन पावे कह कहावे तत्तो तत्व खान शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरान पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मान सोरठ महला पहला तितुकी आसा मनसा बंदनी पाई कर्म तरम बंदकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसे नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई कर्म सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित कर्म सुख उपजे पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ शास्त्र वेद बके खड़ो पाई

कह पारी। दुर्मत कणे विगूति पाई, दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम ना पाए पाई, बिन नाम में परम न जाई। सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजे पाई, मन निर्मल साज समाई। गुर सेवे सो बूजे पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड़ बोल बिख खाई। पंडित दही विलोइए पाई, विच्चों निकले तथ। जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हावत। गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देओ अलख। एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए। बिन गुर गांठ न छूटे पाई, थाके कर्म कमाए। एह जग परम फुलाया पाई, कहना किछू न जाए। गुर मिले पौ मन।

गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ मेला पहला जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे तिनके साथ तरे तिना ठाक न पाई है प्यारे।

समाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत कम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दरसा चै सचियारा ओना दी शोभा जुग जुग होई कोई न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहो कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चाड़ मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस नेल मिलाए आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हौवारी हौवारणे पाई सतगुर को सद बलिहार है जाओ नाम निधान जिन रिता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमति पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाईए पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागे कोए सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे पाग मिलाए सदा सुख सुहागणी पाई अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावणी पाई आप छोड़ चित लाए।

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

यह पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिगारी नाव मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लब्बई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल बोले पौड़ी तू आपे सृष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप ओगन हारिया सब तेरा शब्द वरते उपावन हारिया हौं गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया। श्लोक महला तीजा हौं मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजै भाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एह जग जलता नदरी आया गुर के शब्द सुभाए शब्द रते से शीतल भये नानक सच कमाए मह।

तीजा सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवे प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सत संगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूरख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिन्नी गुरमुख नाम न चेत्यो से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहुत कणा पुत कलत ना सास कोई जास लोका विच मुह काला होआ अंदर उबे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सतगुर का पाना अन दिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करें वे

आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया, माया मोह वधाया, विच हो मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया, जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया, बलिहार।

सच नाम चित लाया। बिन नावे जग कमला फिरे, गुरुमुख नदरी आया। तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मिर्ग न जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर कंधे लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खुआएगा एक ना मार्ग पाए एक उजड़ पाएगा जन नानक नाम से आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हों मैं विच्चों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मनमुख मन अजित

दुखे दुख विहाए, कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए, एह मन वस न आवई, थके कर्म कमाए, पेख तारी पेख कर थके, हर हर तीरथ नाए। मन की सार न जाननी, हों मैं परम तुलाए, गुर प्रसादी पौ पया, बड भाग वस्या मन आए, पै पै मन वस होआ, होमै शब्द जलाए, सच रते से निर्मले ज्योति जोत मिलाए, सतगुर मिले नाउ पाया, नानक सुख समाए, पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना, एहो माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना, चलदिया नाल ना चले सिर पाप लै जावना, जां पकड़ चलाया।

फिर मिलन ना पाए नहीं जमे ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श ले सबदे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ, ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो सेवै सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छट गया, से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवै से ही पुरख जिना हर।

नानक नाम रत्या बल जाऊं पौड़ी। से हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपे।

सच्चा सौदा लाभ सदा खटिया नाम अपार जिख विच अमृत प्रगटिया करम पियावन हार नानक सच सलाही है।

जा। हर गुण तोट न आवई कीमत कहन न जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पांत कर। कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर, सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर। जन नानक कह विचारा गुरमुख हर।

गुरुमुख चित न लायो अंत दुख पहुताए अंदरों बारों अंधिया सुध ना काई पाए पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए जो रते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत ना हो वही ना कन पल्ले पाए पर थके संतोख ना आयो अम दिन जलत विहाए कूक पुकार ना चुकई ना संसार विचों जाए नानक नाम विहुणिया मोह काले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाए गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुगचार त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार।

पौड़ी। जो हर नाम ते आए दे से हर हर नाम रते मन माही, जिना मन चित इक आराध्या तिना इक सुबिन दूजा को नाही। से पुरख हर सेम दे जिन तुर

तन तन भाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहतिया। तन तन भाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनतिया। तन तन भाग तिना साज जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया। तन तन

बिन सतगुरु नाव ना पाये बुझो कर विचार नानक पूरे पाग सतगुरु मिले सुख पाए जुगचार। महला तीजा क्या गबरू क्या बिरद है मन मुख तृष्णा पुख ना जा।

एक पल का हर हर दयाल होवे जिस ऊपर सो गुरुमुख हर जप जन का। श्लोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी।

गुरमुख हर कीरत फल पाए जिनको हर लिख पाए। नानक गुर प्रसादी अंदिन भगत हर उचरे हर भक्ति माए समाए पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान। हर जप जप औखद खा दिया सब रोग गवाते दुखा कान। जिना सास गिरास ना विसरे से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा रे जन उठारे।

पाए नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पीके पाने।

सतगुरु मिले ता पूरा पाई है, हर रस रसन रसाई पौड़ी। रैन दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाव तेरा त्यावना। तू दाता दातार तेरा दिखा खावना, भगत जना के संग पाप गवावना। जन नानक सद बलिहार है बल बल जावना। श्लोक महला चौथा। अंतर अज्ञान पही मत मद्दम, सतगुर की प्रतीत नाही। अंदर कपट सब कपटो कर जाने, कपटे खपे कपाही। सतगुर का पाना चित ना आवे, अपने स्वाय फिराही। कृपा करे जे अपनी ता नानक सबद।

हौ मैं खपे खपाए अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाए नानक बख्श ले प्रभु साचा जे गुर चरणी चितलाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभु पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पय पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाए नामो चितवे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम उपजे तिसना पुख सब जाए नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए।

आई। दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी, वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम नाम

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया आप।

आई बाजीगर स्वांश कहला अपने रंग रवे अकेला कथनी कह परम न जाई सब कट कच रही लुकाई जा को

सिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज अंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया। अनिक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट को

पानी, आपन बापे ना किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्यापियो, भगत नहीं संतापा, कह रविदास भगत।

ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

साहिब अपना अवर न जाचो कोए, नानक ता का दास है बिंद बिंद चुक चुक होए, साहिब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हाँ इक दमी, मोलत मोत न जाना, नानक बिनवे तिस सरे वो, जाके जी पराना, अंधे जीवना विचार देख के ते के दिना रहाओ। सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा। जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड्डे गहना, नानक बिन वह सो किस पाई है पूर्व लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया, कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे ही आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वक्र नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पति ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे कीते क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोहत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विन नजरी नानक नहीं कोए, श्री महला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिए होवे प्रगास, ताते बिखिया मह रहे उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यों तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तप्त है बारो बार,

जो ब्रह्म विचार है आपतर है सगले कुलकार है। दानस बंग सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मलकोवे। पढ़या बूझे सो प्रवान जिस सिर दरगे का निशान। तनाश्री मेला पहला करती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद। काल नाही जोग नाही नाही सत का टब खानष्ट जग पृष्ट होए डूबता इव जग। कल में राम नाम सार अच्छी तमी ते नाक पकड़े ठगन को संसार रहाओ। आंट से ती नाक पकड़े सूझते तिन लो मगर पाछे कछ न सूझे ते पद्म अलो। खत्रिया ता कर्म छोड़िया मलेच पाखिया गही सृष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गप रही। अष्ट फाग

पहला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। तूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति।

सहज मूरत न एक तो ही सहज पद विमल नन एक पद गंद बिन सहज पद गंद इव चलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिसके चानन सब में चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो किस पावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो हम जिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारन को होए जाते तेरे नाम वासा त्रासरी मैला तीजा कर दूजा चौपदे इको अंकार।

वडियाई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साथ रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा, जग मैला मैलो हो जाए, आवे जाए दूजे लो भाए, दूजे पाए सब परज विगोई, मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पत उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उगरे हर शरणाई।

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभु साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी शब्द सुनाए। प्रभु साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर से मैं तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच संभालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूण कुसत तृष्णा अगन बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाणे चले ता आप जाए। साथ महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनो कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा।

जन सोए जितनो बख्शे हर देव डियाई गुर प्रसाद वसै मन आई रहा गुरमुख करनी कार कमावे पास मन की सो जी पावे मन में मत मैगल मितदारा गुर अंकत मार जीवा लनहारा मन असाध सा दे जन कोई अचर करे तो निर्मल होई गुरमुख ए मन लया सवार हो मैं विचो तजै विकार जो तुर रखियन मेल मिलाए कदे ना विछड़े शब्द समाए अपनी कला आपे प्रभ जाने नानक गुरमुख नाम पछाने त्रासी मैला तीजा काचा तन संचय मूर्ख गवार मनमुख पूले अंध गवार विख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमती पाए काचा तन सुन आवे जाए रहाओ मनमुख पूले सब मरें गवार पर जल डूबे ना

कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे, हौं मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हौं मैं जाए, आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान, अहंकार डूबे ना पावे मान। आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत काला ही सच होई। आपे साजे करता सोए, तिस बिन दूजा अवर न कोए। जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राजना श्री महला तीजा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हों बलिहार है जाओ साचे तेरे नाम विटो। करण कारण सबना का एको।

नानक परम पट फूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर से मन मानिया तनासरी मैला चौथा कर पहला चौक दे इको अंकार सतगुर प्रसाद जो हर से मैं संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह ना सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा लग संगत साध सवारी जो कंचन बै संतर पायो मल काटी कटक उतारी हर हर जपन जतो दिन राती जप हर हर हर उधारी हर हर हर औषध जग पूरा जप हर हर हो मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरुष अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी तनासरी मैला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ पागी अपनी सेवा आज कर

आई गुरमत अंतर जागी, हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर लिग लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी, क्या हम किरम नान निक कीरे, तुम वड पुरख वड

नानक दासन दास करो सब हम हर कथा कथा की। श्री मेरा चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम किसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो एक निमक पल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभु स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफल्यो बिरख प्रभु स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाती पूख पुकानी। जिनके बड़े पाग वड ऊंचे तिन हर जपियो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभु स्वामी जन नानक दास दसानी। तना श्री मैला चौथा।

पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली राव। हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेवियो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधो, मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी, हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली। तनासी मैला चौथा, हर हर बूंद पे हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिल लाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सकूं एक राती, ज्यो बिन अमले अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सर्वर अप आगा, हम ले न सके अंत माती। तू करे परे अपरंपर स्वामी, मित जानो आपन गाती। हर के संत जना हर जपियो, गुर रंग चलू ले राती। हर हर

नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनाश्री मेला चौथा कल युग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साथ जना की। दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चना की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी। जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनाश्री मेला चौथा कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग बाए हर कंचन चंदन कीने। रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव ना पति ने। जन नानक हर हृदय सद प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनाश्री मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई। हर दरगे पावे फिर जन्म न आवे हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरि हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई। रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पय है सखाई। तनाश्री मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर कौजल पार उतारी। मन बचन हृदय त्याय हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर

तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनासी मैला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ जब मन राम में नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हूँ तिनके सब बलिहार जाऊ रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देओ सोई हो पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ। सांसरी मेला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी।

रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी। जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से, और सब त्याग को है हर पानी। तनासी मैला चौथा।

ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सत नानक के पातशाह। तना श्री मैला पंजवा कर पहला चौपदे इको अंकार सतगुर प्रसाद। पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे कोट पराध मिटे खिन पीतर जा गुरमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे रहाओ। तेरा खान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। तना श्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल च्यों हेत बढ़ायो।

उसी हेत बिदारा। देख पुटंग लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपटाना, अतरचियो कर लीनो अपना, उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, ओ जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बुझायो, प्रीत प्रभु सदकेला। सनासरी मैला पंजवा, कर कृपा दियो मोह नामा, बंधन से छुटकाए, मन से बिसरियो सगलो तंबा, गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बिरानी।

किसके बहराई, ब्रह्म पसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर करायो मन का बिरहा, मेल कियो मेरा राजन। बिन सियो तीठा अमृत बूठा, सबद लगो गुर मीठा, जल फल मई।

होते, तिनकी बात बिलानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांते कनक वखानी प्रगट्यो ज्योत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनाश्री मैला पंजवा वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं तापे बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा उद्दम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा काम वंत कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके दिन प्रत करे करे पछतापे, सोग लोभ मह सूके हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तनाश्री मैला पंजवा लवे ना लागन कौ है कछुए, जा को फिर ए तावे, जा को गुर दीनो ए अमृत किसी को बने आवे, जा को आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदिया, ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई बर्ण न साको उस्तत, ताकी कीमत कहन न जाई, काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो ममता, दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला। तनाश्री मैला पंजवा बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार।

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पतपूरी, नाम लैत कोट अगनासे, भगत बांसे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे सेव एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी, सिमरत पार कराना। शीतल शांत मनो सुख पाया, संत संग रहो ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, ए नानक कीनो चोला।

जन्म पदार्थ काच बाद जीत जन्म जन्म के किल बिख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस गाई साफ साफ मन नाम समारे ए विश्राम निध पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रव्यो सब मध्ये जब कत पे सो जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाए जात पात पगत खा पूरी जो प्रभ कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अभाई तनासी मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओडी थी ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब के लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पे सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुर आपने जिन ए चलत दिखाया गुजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे तनासी मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम्ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके बोले तनात्री मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक स्नाना पुन दान बहु देन कहूँ न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जगत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिखन न जाई लैन राव जात ताप प्रमन गसबा कर उर्द ताप ले गैन ए विद नै पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन।

संते संग संत संदाकन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल।

नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावे सदा आकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार। त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन हाथ तारिया, पतित पुनीत किए खिल पीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, फुंगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांचे नित नानक, पुनः पुनः बलिहारिया। त्रासरी मैला पंजवा, मेरा लागो राम स्यो हेत, सतगुर मेरा सदा सहाई, जिन दुख का काटिया केत रहाओ, हाथ दे राख्यो।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारन तरन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारब्रह्म सेवा, के उपदेश मोको गुरु दीना जियो। किस त्यों ना लाई ही ते जा को किस ना ही बीत, संत की बार ओ संग न चाले। मन पर तू आराध हर के प्रीतम साथ, जा के संग तेरे बंधन छूटे। गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण, अवर आस कट पटल न की जय। सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई, नानक जाको कृपा की जय। थना श्री मेला पंजवा, मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना। देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पक चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिखिया विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जाको रे कर्म पला तिन ओट गही संत पला, तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना। पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान, एक है निरंकार नानक मन लगना। तनाश्री मैला पंजवा कर सतवा इको ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह मां पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक दिन सुरैन चितारे, साध संग जप निसंग मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद बिचारे, साध जना की रेन नानक मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा कर अठवा दो पदे इको ओंकार, सतगुरु प्रसाद। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले। ए लोक परलोक संग सहाई, जत सत मोहि रखवाले। गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे। पाए न सा कह जा ले रहाओ, निरसन को तन अंधले कौटिक। मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक। करी कृपा कृपाले, सनाश्री मैला पंजवा। पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई। नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनज सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का। रब रहा सर्व ठाई राव, पाको कोए न पहुंचन हारा। जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत, नानक नाम से आई। सनाश्री मैला पंजवा, दर्भवंत दर्ब देख गर्भे, पोमवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवार, जैसा बित तैसा हुए वर्त है। अपना बल नहीं हारे रहाओ, आन त्याग पे इक आसर। शरण शरण करे आए, संत अनग्रह पे मन निर्मल। नानक हर गुण गाए, सनाश्री मैला पंजवा। जांको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वस्ता कै, जांका सतगुरु पूरा। ठाकुर गाये आत्म रंग, शरणी पावन नाम से आवन। सहज समावन संग रहाओ, जन के चरण वसे मेरे ही रे। संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा निद। नानक कै सुखे ही, सनाश्री मैला पंजवा।
जतन करे मानुख डकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर्म कर पावे पेख करे निर्वाने जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उठ ताके उठते उठते है आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनासरी मेला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जाके मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तनाश्री मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही प्रपाल रहाओ नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा तनाश्री मेला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहित पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी मेला पंजवा छड़ाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मनता बिरस न कतहू जात सतगुरु पूरे की नीदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मेला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ये बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी त्रासरी मेला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज थाती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदात नानक हर राखी पाती तनासरी मेला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप तनासरी मेला पंजवा
चतुर्दिशा तीनों बले अपना श्री ऊपर कर तारे हो, कृपा कटाक्ष सब लोकन कीनो, दास का दुख बिदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद, कंस लाए अवगुण सब मेते, दयाल पुरख बख्शन।

सोखे मुन जन सिमरत पुराना, वेद पुकारे कोखे कृपा चंद सेव सच पाई है, दोवे सुहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पै काटे, मिल साधु बिन से सोक। सनातरी मैला पंजवा, कृष्णा बुझे हर कै नाम, मां संतोष होवे गुरबचनी, प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान रहाओ। महाकलोल बुझे माया के, कर कृपा मेरे दीन दयाल, अपना नाम दे जप जीवा, पूरन होए दास की काल। सर्व मनोरथ राज सुख रस, सब खुशियां कीर्तन जप नाम, जिसके कर्म लिखिया तुर करता है, नानक जन के पूरन काम। सनातरी मैला पंजवा, जन की कीनी पार ब्रह्म सार, निंदक टिकन न पावन मूले, उड़ गए बेकार रहाओ, जह जह देखो तह तह स्वामी, कोई न पहुंचन हार, जो जो करे अवज्ञा जन की, होए गया तत्चार, करन हार रखवाला होआ, जाका अंत न पारा वार, नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर कारो पूजा कह फूफ से काढ़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राख न हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सुरा लीजय। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ दीजय। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत रहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नाम।

वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वडे भाग पेटे गुरुदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोष किस पाप न फेरे जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया। मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग्रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन छिन में तारा रहाओ। कोई हो आ कर्म रत कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया। बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरया।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा ओही संग समाई रहाओ। कोप मद ज्यो बास बसत है मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर सट ही खोजो पाई। बाहर पीतर को जानो के गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न परम की काई। तनासरी मेला नामा साधो ए जग परम तुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता पाई सुख बनता ताके रस लपटाना, जोबन तन प्रभ ताके मद में एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन तास्यो मन न लगाना, जन नानक को तन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। तनासरी मेला नावा तिन जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता फुन जे कट माए पछानो रहाओ। पर निंदा उस तक नह जाके कंचन लो समानो, हर शोक ते रहे अतीता जोगी ताए बखानो। चंचल मन दह दिसको तावत अचल जाए ठहरानो, कहो नानक ए बिद को जो नर मुक्त ताए तुम मानो। तनासरी मेला नावा अब मैं कौन उपाय करो, जे बिद मन को संसा चूके पौनिद पार करो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो पत्यो उदर परो, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हो पत करो।

प्राण मन संते प्यारा हो मैं बंद हर देवन हारा चरण कमल सो लागो ने हो नानक की बेनती है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तनाश्री में।

पर पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पे निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, हावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैठे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल तै काटन हारे, हों मैं मार मिले भगतारे, अनेक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, धीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सुना श्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, नाथ स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जै देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुतेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पड़ पर फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पे उदासा, मन मैले सूचा क्यों हुए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सालाही, तुद बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुद पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज

जायो मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत फाद राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमसित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसो रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद न चूके मन तेज एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल अश्रम कीने मनवा ने पति ने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विदाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुरु प्रसाद को नेत्रों के खै मन हट जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुख दाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जात।

तीरथ नाम जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सत बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना, सात ना लागे मैल क्या मल धोये, गुणे हार परोए किसको रोये, विचार मारे तरे तारे उलट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी सात साचे भावे, आनंद अनदिन हर्ष साचा दुख किल विख पर हरे, सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नामनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते, तिर संग पावे सहज नावे बेड़ी तसंगम सत्सते, आराध एकंकार साचा नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया, कहन कह सब को एके वड आखी है, हाँ मूरख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा, पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा, आखन कोट न पगत पंडारी पर पुर रहे सोई, नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई, सनासरी मेला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ

आपे कर वेखै सिर सिर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहेब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई कुमसर अवर न कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकत सहाए सच में साच समाना आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदे आजियो एक साहिब दे रहा वाद वदंदे आजियो दे रहा चलाए हुक्म सवाए जन्म हुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा नानक साहिब सबक सिंजापे साचा सिरजनहारा भगत सोहै दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तिसाए गुर कै शब्द विकाने पारस परसै पारस होए जा तेरे मन पाने अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहंदर साचे साचे के वापारी भूख प्यासो आस क्यों दर जाए साजियो सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए साजियो सच नाम ते आए साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन अंदन नाम वखाणा करणी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी तनासी संत मैला पहला तिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो लेख ना मिटई पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राती हम गुण बै बैरोसी तन जोबन आख की छाया बिर्द पए दिन पुन्या नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुनिया बूढ़ी कर का लियो गुर कै पाए चलो साचा नाम ते आए पावे सुख मैलो हर नाम ते आए ता सुख पाए पेयड़े दिन चारे निज कर जाए बह सत पाए अन दिन नाल प्यारे बिन पगती कर वास न होवी सुनियो लोक सभाए नानक सरसी ता फिर पाए राती साचे नाए फिर तन पावे ता फिर पावे नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो गुर शब्द विचारी ना प्यारी निज निज भगत करे माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण फिर स्यो प्रीत प्यारी फिर कर सो है नार जे फिर पावे जियो झूठे वैन चवे काम ना आवे जियो झूठ अलावे काम ना आवे ना फिर देखे नैनी अवगुण यारी कंत विसारी छूटी विदन रैनी गुर शब्द ना माने फाई फाथी सा तन मैल न पाए नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समाए तन सुहागण नार जिन फिर जानिया जियो नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो हर भगत सुहावी साचे भावी पाए भगत प्रभ राती तिर रलियाला जो बन बाला तिसरावे रंग राती गुर शब्द विगासी सोरा वासी फल पाया गुणकारी नानक साच मिले वडियाई तिर कर सो है नारी।

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाई है जियो, गुण गाए विकसे सदा अंदिन जा आप साचे भावे, अंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे, आप करता करे सोई आप देता पाई है, हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो, हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो, कदे ना विसारी हम दिन समारी, जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है, गुरमुख अमृत पीवा नगर करे ता सतगुर मेले, अन दिन विवेक बुद्ध बिकरे, अंदर साचा निहो पूरे सतगुर, सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो, हम दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो, सहज समावे ता हर मन भावे, सदा अतीत बैरागी हलत पलत शोभा जग अंतर, राम नाम लिव लागी, हरख सो दोहा ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे, सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो, दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो, हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो, माया दुख मोया हों मैं रोया, मेरी मेरी करत जिहावे, जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे, बिन नामे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया तोया, दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो, कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो, सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो, प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे, हुक्म मन सुख पाया, अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम से आया, नामो नाम मिली वडिया।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना। सुरपत नरपत नहीं गुन जाना, चार वेद अर सिमरत पुराना। कमला पत कबला नहीं जाना, कह कबीर सो पर मैं नाही। पगलग राम रह।

काल अहेरी फिरे बदक ज्यों, कहो कवन बिद की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैसना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन का सी तजे कबीरा, रमैये कहा निहोरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई।

हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ। बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधि आई। अजामल गज गन का

ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाए जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ कर।

आई। बारह जो जन छत्र चले था देही गिरज न खाई। सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधिकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुन गाए। दस बैरागन मोह बत्कीनी पंचों का मिट नावो। सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो। पाछे बौर नावन पावो अमृत बाणी कटते उचरो। आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो। संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो। ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लिपटावो। माया नाम गर्भ जोन का ते सज दर्शन पावो। इत कर भगत करें जो जन तिन पौ सगल चुकाई है। कहत नाम दियो बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला। जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला। जो कोकिल को अंब बालहा क्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला। जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा। मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला। सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना। कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा। असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंडी मह सागरा रहाओ। नाचंती गोपी जना नैया ते बैरे कना।

यम कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तनाश्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे मादो ए जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बा

मनी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव दिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पस

नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तनासरी बाणी भगतां की त्रिलोचन इको ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ संतरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित पातक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लह न पारी कर्म कर कपाल मफी तसरी अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं कर्म कर खार मफी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिसल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछौटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो धूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती काया बहुखंड खोजते नव निध पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे तन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधननी का अनाज मंगो सबसी का गौ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी जैसरी महला चौथा कर पहला चौप दे ओंकार सतगुरु प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया गुरहास तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड़ पए है मनमुख ते मोह माया नित फाखा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाता मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी
क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलन था। जैसरी मैला चौथा, हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका खाका, रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु, गुर मिले हीर पराखा रहाओ, मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा, तिन कर रतन न लाखा, ते उजड़ परम मोए गावारी, माया पुअंग बिख चाखा। हर हर साध मेलो जननी के, हर साधु शरण हम राखा, हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी, हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाने, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा तारी, पाखान डुबत हर राखा। जैसरी महला चौथा, हम बारक कछु न जाने, गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना, हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु, मिल साधु कपट खुलाना रहाओ। गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे, मेरे प्रीतम नाम पराना, दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर, ज्यो अमली अमल लुवाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी, तिन तुर पाग पुराना, तिन हम चरण सरे वे खिन खिन, जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर, जन बिछरिया चिरी मिलाना, तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया, जन नानक तिस कुर्बाना। जय श्री मैला चौथा, सत गुरु साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा, माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध, गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड पाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागबा, तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाग खीर तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाएबा, ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाएबा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाएबा। जैत करी महला चौथा, जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन माफ की जय हर बांजा, तिन सुन्नी दे फिरें बिन नावे, होए खप खप होए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ। हर कीरत कल युग पद उत्तम, हर पाई है सतगुर माजा, हौ बलिहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिलियो वडपागी, सब किलविख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वडदाना, हर किए बहुगुण साजा। जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उतारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जैत श्री महला चौथा, सत संगत साध पाई वडपागी, मन चल तो पयो अरूड़ा, अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा।
मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुरु हर मिलियो लाए चपीड़ा। रहाओ साकत बंध पए है माया, बिख संचय लाए जकीड़ा। हर के अर्थ खर्च नह साके, जम काल सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरयो मन मूड़ा। जय श्री मैला चौथा कर दूजा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिले सुख रोई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिले प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर के रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जय श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जय श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करें दिन राती, गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम उमाहा राम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत उमाहा राम। जय श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम उमाहा राम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुरु समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कढ़ाए, जप नाम रतन उमाहा राम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम उमाहा राम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम उमाहा राम। जय श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा,
ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਸਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਮਧਸੂਦਨ, ਮਿਲ ਸਤਸੰਗ ਉਮਾ ਰਾਮ, ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣਾਹਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਹਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਜਪ ਉਮਾ ਰਾਮ, ਸਭ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਜਗ ਪੁਨ ਤੋਲਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪੁਜੈ ਪੁਜਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਅਤੁਲ ਤੋਲ ਅਤ ਪਾਰੀ, ਗੁਰਮਤ ਜਪ ਉਮਾ ਰਾਮ, ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ, ਕਿਲਵਿਕ ਮੈਲ ਪਾਪ ਸੋਵਾਹਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਨ ਉਪਰ, ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ

सतगुरु प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदह, तामे संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊंट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाये।

देहो संदेश रो कहियो प्रय कहियो। विषम पई मैं बहु विध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो। वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए सुहागन शांत बुझियो। सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पयो। नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बचहियो। जैसरी मैला पंजवा तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ। जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेश प्रभ को नीरो। बेकुमार बे अंत बढ़ दाता मन है गहीरो पेख प्रभ को। जो चाहो सोई सोई पावो आशा मनसा पूरो जप प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन वस्या दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को। जैसरी महला पंजवा लोड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तिसें बसेरा रहाओ। सुख आराधन दुख आराधन।

तेरा नाम जपत कोट सूर उजारा बिन सह परम अंधेरा थान सनंतर सब नी जाई जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा जैसरी महला पंजवा काल चौथा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहंग छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तौ सगल मोए मोहियो तौ शरण पर्यो गुर पाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग पर्यो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग जैत सरी मैला पंजवा मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहा ताल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जा को पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको ब्याज न काई रहाओ दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुध पाई दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपाते महा बिख्याते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन

नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी। सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी। जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ। कोट बिघन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम पगवंत पगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम। ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो।

फूलियो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौता।

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नावा हरजू

महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा तै मरबे को बिसरत नाहिन ते चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मरम न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप।

तो स्वामी तुम निकट पहचानो रूप रेख ते न्यारा, पावन नाम जगत में हर को कभू नहीं संभारा, नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरज तुहारा। जैसरी मैला पंजवा संत कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। दर्शन प्यासी दिन सुरा

सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया तिस दस प्यारे

जय प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जिवै तिसंतिया जन नानक गुरु पूरा।

चाले हौ किस चिते या हिक दू हिक चाले अनक प्यारे नित कर दे भोग विलासा।

गवाया आप गवाया जय तन पाग मथाने बहा पकड़ ठाकुर हौ खिद्दी गुण अवगुण ना पछाने गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया।

आई। माँ मंगल रह सिया फिर दयाल सद नवरंगिया, वड पाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया। आशा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूली है मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूली है लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया सलोक निरत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाई है आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाई है तज मान मोह विकार दूजा एक स्यों लिवलाई है अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाई है बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाई है श्लोक रे मन पासो त्याई है सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मही अल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुख गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति जोत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैतरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गर्व अटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे कुछ दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु

अपना पावे। रतन जन्म हारंत जुए प्रभु आप न पावही। बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही। जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया। नै नैन दीसे बिन भजन ईसे छोड़ माया चालिया। कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया। श्री राम रंग अपार पूरन नै निमख मन में वूठिया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया। चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारे।

अखंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास स्मरण।

छोड़ी जिस बिसरत तन भस्म होए कहते सब प्रेम खिन ग्रह में बस न देवई जिन सोई है कर अनर्थ गर्भ।

حبیں دکھڑے اولائے پوڑی کوٹ اگا سب ناس ہوئے سمرت ہر نام من چندے

कदाचन सिमरंत नानक तेजंत विस्तार में मुझे अडंबर हब क्यों मंज मोहब्बत ने।

नीला राज रस रूपं छतर चमर तक आसनं रतंत मूण अज्ञान अंधे नामिक सुपन मनोरथ माया सुपने हब

पौड़ी सपने से पीछे तेरी मूरख लाया बिसरे राज रस भोगे जागत बस

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रसमिष्टं नचमिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानके दात मिष्टं प्रभु दर्शनं लगना सोने मन मजाहू रतिया विधड़े सच थोक नानक मिठड़ा सोधनी पौड़ी।

जपंत नानक हर हर हरे। छड़ियो हब आपे लगनो चरणा पास नठड़ो

करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तने। दयाल

गुरु नानक पतत उधारणे भोजन भिखम असगाम गुरु बोते तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी।

सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, हर पादर हर प्रभ केरा, हर रंगी हर नाम प्रभ पाया, हर गोविंद हर प्रभ केरा, हर हृदय मन तन मीठा लागा, मुख मस्तक भाग चंगेरा। लोग विकार जिना मन लागा, हर विसरिया पुरख चंगेरा, ओए मनमुख मूड अज्ञानी कहिए, तिन मस्तक भाग मंदेरा। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुर मस्तक भाग लिख।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग्यानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह दिस्तायो, माया मगन स्वाद लोभ मोयो, तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो, इक मोहत ना ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को, पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती, ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो, इक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो, न बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं संत गुर सेवते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट, मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर, भगत वचन सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे, राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहु करता। जो मृतक ओढाया रहाओ, ताए ताए किरपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा, कित ही काज न आया। कर अपरण सवारी सेजा, कामन थाट बनाया। संग न पायो।

अयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभु संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापतिते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गाओ आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे सही ए तृप्त है आन न कथमूतावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है काम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभु जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

योग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। तोड़ी महला पंजवा, सतगुर आयो शरण तुहारी। मिले सुख नाम हर सोबा, चिंता लाए हमारी। रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार, हार पर्यो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण लेहो बारी। सद बख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी। नानक दास संत पाछे पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा, रसना गुण गोपाल निध गायन। सांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायन। रहाओ जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दोहुते छूटे, कवजल जगत तरायन। खोजत खोजत तत विचार्यो, दास गोविंद परायण। अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा, निंदक गुर कृपा ते हाट्यो। पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला, शिव के बाण सिर काट्यो। रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके, सच का पंखा थाट्यो। खात खर्चत किच निखुटत नाही, राम रतन तन खाट्यो। पसमा पूत हुआ खिन पीतर, अपना किया पाया। आगम निगम कह जन नानक, सब देखे लोग सबाया। टोडी महला पंजवा, किरपन तन मन किलविख भरे। साध संग भजन कर स्वामी, तातन को इक हरे। रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत, थाम न जाही करे। जिसका बोहित तिस आरादे, खोटे संग खरे। गली सैल उठावत चाहे, ओए उहां ही है तरे। जोर सकत नानक किछ नाही, प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा, हर के चरण कमल मन त्याओ। काड कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाओ। रहाओ तीने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास। ताको बिगड़ न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक। बाल बुद्ध पूरन सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा, हर हर नाम सदा सद जाप। पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी, वसदी की नी आप। रहाओ जिसके से फिर तिन्ही

कछु ना थोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो, सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। टोडी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी, आन अवर सिंजान न करी। रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो, गुरमो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके ग्रह।

देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई मोहे।

अगड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्राचित मिट्यो रे। जाको लैणो महराज री गाठड़ियो, जन नानक गरबा।

ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग ए तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुर को शब्द मेरा ही रह दीन, रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन, तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म धर्म जप एही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पे मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते, अपने भगत को पूरन दान रहाओ। खोवो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान, तेरी

दीन दयाल प्रीतम मनमोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ दह जिस रव रया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते से जन कभो न मरते चूर कंद बंद दिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ, सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास, पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संग प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास, सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

सब देता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पै बिस्मादा आन न बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहा छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुरु मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरु डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पै सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुरपूरा पेट्यो बड़ पागी जाको अंत न पारा वारा कर गए काढ लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सर

चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधारे सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने तिनका बौर कछ न विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा

पासों रुच उपजाई, दीन बंद सुमरियो नहीं कभू, होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन, छुटी न मन की काई, कह नानक अब नाहीं अनत गत, बिन हर की शरणाई। तोड़ी बाणी भगता की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर, काई रे बकबाद लायो,

सुन मन अकत कथा हर नाम। रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे, पज गुरमत हर राम राम। रहाओ नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम, खट दर्शन गावे राम। शंकर करोड़ 33 त्यायो, नहीं जान्यो हर मरमाम। सुर नारे गण गंधर्व जस गावे, सब गावत जेत उपाम। नानक कृपा करी हर जिन को, ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा, मन मिल संत जना जस गायो। हर हर रतन रतन हर नीको, गुर सतगुरु दान दिवायो। रहाओ किस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिलायो। किन किंचक कृपा करी जगदीशर, तब हर हर हर जस प्यायो। जन नानक को हर पेते स्वामी, दुख है मैं रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो कुछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत

तारा कोट कुटुंब करके पाप सब खो गए हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकारा हर मुक्त बस्त कछ नगर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर प्याय सुखदाता, जहाँ का अंश न पारा वारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा, हर रात में उधर मंजारा, सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जहाँ के हृदय बसिया मेरा हर हर, इस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैरारी महला चौथा, जप मन हर हर नाम हित त्याए, जो इच्छे सोई फल पावे, फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर्षो प्रीत लगाए, दिन हर प्रीत होर प्रीत सब चूठी, एक दिन में बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा, किसकी

सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज कुलंग महला पहला, कर पहला

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंते भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला, त्यागड़िए मानरा काय।

करम करम दो छपल होए कूड़ सिरे प्रधान वे लालो काजिया बामना की गल थकी अगर पड़े शैतान वे लालो मुसलमानिया पढ़े कतेबा कष्ट में करे खुदाए वे लालो जात सनाती होर हिंदवानिया एदी लेखे लाए वे लालो खून के सोई ने गावे नानक रत का कुंगू पाए वे लालो साहिब के गुरु नानक गावे माखपुरी विच आत्म सोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वक्त अकेला सच्चा सो साहिब सच तपास सचवा न्याओ करे गुम सोला काया तपल टुक टुक होसी हिंदुस्तान समाल सी बोला आन अड़त्रे जान सतानवे होर भी उसकी मर्द।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहेब साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन त्याए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए चंतक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ है तू, है तू होनहार, अगम आगाद ऊंच अपार। जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिन सहसो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपया किसको बलिहार, किसके संग तरे संसार। कहो नानक प्रभ लोचा पूर, संत जना की बाँचो दूर। तिलंग मह

प्राणिया कुदराते दा सृजनहार जिन पैदा स्तूपिया सोई दे आधार जिन उपाय मेदनी सोई करदा सार कट कट

अचरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे में दीप। खुद कसम खलक जहान अल्लाह मेहरबान खुदाए दिन सुरैन जे खुद अरादे सो क्यों दोजक जाए। अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार

वारी कंत लिया सुहागनी मैं ते वदवी एहे से गुण मुझे न आवनी कै जी दोष करे हे जिनी सखी सौरावया तिन पूछोगी जाए

गुण कामन तामन करे तो प्यारे को पावे, जो दिल मिलिया सो मिल रहा, मिलिया कही है रे सोई, जे बो तेरा लोची है बाकी मेल न होई। ताप मिले कुन ताप को लिव लिवे को तावे, गुर पर सादी जानिए तो अन को पावे। पानावारी हुए कर खर सार न जाने, रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाने। अप्यो पीवे जो

हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया आए मिले गुर सुख आए मिले तू मेरे गुरु के प्यारे रहा हर ते गुण हर पाऊं दे से गुरु ते पाए जिन गुर का

सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा, गुर सेवा के पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम से आएंगे ते जन परवाना, तिन वित्तो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे, जो गुरमुख प्यारा सेम दे तिन हर फल पावे। जिना हर से की तिरहड़ी सुना जीव प्रभु नाले, कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया, कोई आप छुटे परवार सो सब जगत छाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो।

किया से आप हर पाया हर गर्जे पहनाया हर आप गलनाया जो गुरुमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दीजे हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल की जय पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर केतिया रंग रलिया माने सतगुर दाता आखिए उस परे पसाओ हों गुरु वित्तों सदवारिया जिन बितड़ा नाओ सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा हों वेख वेख गुरु विजसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुरु मन्या तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आसी है कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वदाने हो सतगुरु को सगवारिया गुर बचन समाने तू ठाकर तू साहब हो तू है मेरा मीरा तुझ पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर इक रंग है आपे बहुरंग।

सात दिन में प्राणी छिन छिन औद देहात है फूटे कट ज्यों पानी रहाओ। हर गुण काहे न गावे मूरख अज्ञाना टूटे लालच लाग के न मरन पछाना अजहू कछ बिगड़ो नहीं।

जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफिल सोया जो तने उपजिया संग ही सो भी संग न होया रहा माप पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लोग जो हार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय लै सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाय लै जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

तेज कतेज इस तरह पाई दिल का फिक्र न जाए, सुख दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान म्याने लहंग दरिया गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

तार क्या करी नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हो बल बल जाओ नीची तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ कुदा आमद।

चंगी हजार आलम एकल खाना, हम सुनी पाक्षा सामले बरना, अस्पत गजपत नर नरिंद, नाम के स्वामी मीर मुकंद।

दूध करम पुन सुरत समायण होए निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशल कामा रहाओ। ए मन इसी हाथ करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिय इन दिग अमृत पावो। मन संपटे जित अक्षर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहें कहे कह जावे तुम सर अवर न कोई।

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए।

जोग ना सुनसा, जोग ना दंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना सुनी वाये, अंजन मन निरंजन रही है, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिले सोई, रहाओ, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश दिशंकर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाये, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, नानक जीव किया मर रही है, ऐसा जोग कमाये, वाजे बाजो सुजी वाजे तो निरप पद पाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाये, सुई महला पहला कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैया।

आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तिल जा।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाठी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, कौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब दी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर बेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राज रंग रसमान है, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर दंड लगाना, फिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सद तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुख है हर रंग चालिया, फिर गौर न होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुख है हर उपदेशिया, हर के त्याराओ निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आमन जाना अंग, हर प्रभ चित न आयो, मन दूजा पाओ सैलंग। हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलिस पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत्संगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुई महला चौथा, हर हर करे नित कपट कमावे, हृदय सिद्ध न हुई, अंगिन कर्म करे वो तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए सुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे व्याप्या सबद न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नगर करे सो गूंजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए समाए। सुही महला चौथा, कर दूजा इक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गुरमत नगरी खोज खोजाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुर मिले सब दुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीना मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रभु प्यारा तू चुड़ाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे।

नदर करे ता सतगुरु पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। तूही महला चौथा, जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सहज समाए। हर रस जन चाखो जे पाई, तौ कत अनत साद लोभाई। रहाओ गुरमत रस रासो उरधार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदासी सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकत कथा सुनो जन पाए, जित तैसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रघुदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमस इत गाए। पतित जात उत्तम भया।

तिनी अंतर हर आराध्या जिनको तुर लिखिया लिख लिला रहा तिनकी वकीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख हो वे तो उनकी रीस करे किस हल्त पलत मुहकारा से भगत से सेवका जिना हर नाम प्यारा तिनकी सेवा से हर पाई है सिर हिंदक कै पवे चारा जिस कार वृत्ति सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा चौपीढ़ी आग जुगाद बकीली किने न पायो हर सेवक पाए निस्तारा सुही महला चौथा जिते हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसे होरत विद लया ना जाई हर तन संचिय पाई जे हल्त पलत हर होए सखाई रहाओ सत्संगति संग हर तन खटिय होरथे होरत उपाय हर तन किते न पाई हर रत्ने का वापारिया हर रतन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वात हर तन लया न जाई हर तन रतन जरे हर मानक हर तने नाल अमृत वेले वत्ते हर पगती हर लिव लाई हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजिया पगत खाए खर्च रहे निकुटे नाही हल्त पलत हर तने की पगता को मिली वड्याई हर तन निरको सदा सदा अस्थिर है साचा ए हर तन अग्नि तत्तर पानी है जमदूत है किसे का गवाया न जाई हर तन को उचका नेड़ न आवई जम जा गाती दंड न लगाई साक्षी पाप करके बिख्या तन संचया तिना एक विख नाल न जाई हल्के विस्थाक दुहेले पै हथों छुड़ गया अग्गे पलत साकत हर दरगे टोई न पाई इस हर तन का साहो हर आप है संतो जिसनो देख तो हर तन लग चलाई इस हर तने का तोता कभी न आवई जन नानक को गुर सो जी पाई सुही महला चौथा जिसनो हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवे सो पगत तो परवान किसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय वसिया हर पुरुष भगवान गोविंद गुण गाये जियो।

मैं होर काओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख तुझ ही पासे। विचे धरती विचे पानी विच कास अगम करी जाए, बकरी सिंह इक पैसा राखे, मन हर जब परम को दूर की जाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने आमान दिवाए, जो धरती चरण तले के ऊपर आवे, क्यों नानक साथ जना जगत आन सब तैरी पाए। तू ही महला चौथा तू करता सब किस आपे जाने, क्या तुझ पे आग सुनाई है, बुरा पला तुझ सब किस सूझे, जिहा को करे तिहा को पाई है। मेरे साहेब तू अंतर की दिव जाने, बुरा पला तुझ सब किस सूझे, तुझ पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानस पगत कराए, इतना सतगुर मेल सुख देवे, एक मनमुख तंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुझ सबना सिर लिखिया लेख, जे ही तू नजर करे तेहा को होवे, बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने, सब तुझनो नित त्याए, जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले, जन नानक सो थाए पाए। कोई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुकत पे जिन हर नाम से आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग भय, गुरबचनी जिना जपया मेरा हर हर, तिनके हो मैं रोग गए रहाओ। ब्रह्मा विष्णु मां दियो त्रै गुण, रोगी विच हो मैं कार कमाई, जिन किए तिसे न चेतें बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई। हो मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला छूटे, तिस जन को हो बलिहारी। जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो, नानक आप

सकी है अपना कीता किछु ना होवे जो हर पावे त्यों रखी है मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किस कर हम साके ज्यो पावे तिवे बस रहाओ सब जियो पिंड दिया तुद आपे कार लाया जिहा तू हुक्म करे तेहे तो कर्म कमावे जिहा तू तुर लिख पाया पंच तत् कर तुद शिष्ट सब साजी कोई सेवा करो जे किसीता होवे इक ना सतगुर मेल तू बुझावे इक मनमुख करे सिरोवे हर की वड्याई हों आँख ना साका हों मूरख।

चल फल मैयल रे आपरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाइए, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुरु प्रसादी नाम से आए। दो कर जोर करो अरदास, खुद पावे ताने रास। कर कृपा अपनी पक्षि लाए, जन नानक प्रभ सदा से आए। सूही महला पंजवा। तन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुकम तजे अभिमाने। कैसो राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सकी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभ पावे, सा सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, सिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, बिनो करी जे जाना दूर। प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावे देख दूर। सुही महला पंजवा। गृहवास गुर की ना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी तिर को लोड़ी। कौन कहा गुण कंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंकरी।

होए कृपाल सब मिले सुभागे। पयो कृपाल सत्संग मिलाया, बूझी तब करें फिर पाया, सगल सिगार हूं मुझे सुहाया, कहो नानक गुरु परम चुकाया। जय देखा तह फिर है पाई, खोलो कपाट का मन ठहरा।

क्या सेव कमावो क्या कहरी जावो विद पित पावो दर सारे मित नहीं पाये अंत न लइए मन तरसे चरनारे पावो दान टीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक को।

कुचल कठोर कामी मुक्ति जय। दर्शन देख की वड्याई तुम सुखदासे पुरुषवाई। रहाओ दूजा तुही महला पंजवा। बुरे काम को ऊट खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बूझे ना आना, माया मोह रंग लपटाना। रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा, सात जना का दर्श ना जीता। कभू ना समझे अज्ञान गवारा, बहुर बहुर लपट्यो जंजारा। रहाओ बिके नाद करन सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखत अंधे, छोड़ जाए चूठे सब तंदे। रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय। कर कृपा मोहे साथ संग दी जय। तो किस पाये जो हो ये रे ना, जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुई महला पंजवा, कर में ठाकुर नदर ना आवे। गल में पान ले लटकावे, परमे पूला सात फिरता। नीर बिरोले खप खप मर।

ऐ खरीद हों दासरो तेरा तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा कोट दास जा कै दरबारे निमख निमख वसे तिस नाले हों किछ नाही सब किछ तेरा पोत पोत नानक संग बसेरा तू ही महला पंजवा सूक मैल जाके ऊंच द्वारे ता मैं वासे भगत प्यारे सहज कथा प्रभ की अतमी थी विरले काहू नेत्रों दी थी रहाओ चहे गीत नाद अखाड़े संगा उहा संत करे हर रंगा चहे मरण ना जीवन सोग ना हरखा साच नाम की अमृत वरखा दोहज कथा ए गुर ते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही मैला पंजवा जा कै दर्स पाप कोट उतारे पेट संग ए पवजल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हम को हर नाम चितारे रहाओ जा का सब सुनत सुख सारे जा की तैल जमदूत बिदारे जा की तीरथ इस मने सुधारे जा के सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ

कृपा निधान नानक सो करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात, तुही महला पंजवा। कट कट अंतर तुम्हें बसारे, सगल समगरी सूत तुम्हारे, तू प्रीतम तू प्राण आधारे, तुम ही पेक पेक मन विसारे, रहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे, ओट गही अब साथ संगारे, अगम अगोचर अलखा पारे, नानक सिमरे दिन रह नारे, सुही महला पंजवा। कवन काज माया वड्याई, जा को बिन सतबार न काई, ए सुखना सोत नहीं जाने, अचेत व्यवस्था में लपताने, रहाओ महा मोहे मोहो गावारा, तेखत तेखत ऊट सिदारा, ऊट ते ऊट ताका दरबारा, कई जंत बिना है उपारा, दूसर

जाके सिमरन कछ पौना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण हारी, रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इस

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभु अंतर जामी काची देह मानुख अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किच कारे जित छुटे प्राणी हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखें तो चार माटी का भांडा।

अत कुतीर मिले जम डांडा, काम क्रोध लोभ मोह बांदा, महागर्त में निगरत जाता। नानक की अरदास सुनी जय, डूबत पान प्रभ मेरे ली जय। सुही महला पंजवा, जीवत मरे बुझे।

क्या नहीं जाने, काट काट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवां। गुर परमेश्वर करण हार, सगल सिष्ट को दे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पव जल डूबत सतगुर काडे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवां। गुर अपने ऊपर बल जाइए, हाथ पैर हर हर जस जाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला, सुही महला पंजवां। दर्शन देख जीवा।

अपनी शरण वास प्रभु दाते, गुरु प्रसाद किने विरले जाते। सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता, चरण कमल वसे मेरे चीता, नानक एक।

जब तक देखो हर संग सहाई, जब मेरी पत मेरी तन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम, रहाओ पार ब्रह्म जब पहर सनाहा, कोट आवद किस बेदक नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी, सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनद दिनोद मंगल सुखताहा, चल सकिए प्रभ

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। सूही महला पंजवा। वैकुंठ नगर जहां संत वासा, तब चरण कमल रिद महे निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना।

कृपा प्रभ अपना करया, तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना, रहाओ पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला, सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी, दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए, सुई महला पंजवा दीर छाए, दुनी जो लाए, दोही सराई खुनामी कहाए, जो जिस पावे सो प्रवान, अपनी कुदरत आपे जान, रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन के तो से दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे, अगम अगोचर सच सा

प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित तोट ना आवे खाप खर्चत सुख आनंद बिहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नान।

ठाकुर कौन हमारा रहाओ साध संगत क्यों प्रीत बने आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर

साद गावे गुण सदार साला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिसनेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा दैती जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे हित पारक माजरे पज दिन नित रहने जन्म पदार्थ जीत हर सहने रहाओ सर्त विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं कारत परण पोखण संग औद बिहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी शरण समरथ अगोचर स्वामी उदर नानक प्रभ अंतर जामी सुही महला पंजवा साध संग तरे पैसागर हर हर नाम सिमर रतनागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुर पूरे मिल पाप सजायण रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ मन तन निर्मल साज सुहाओ आठ पैर पार ब्रह्म त्याय पूर्व लिप्त हुए ता पाई है शरण पे जप दीन दयाला नानक जाचे संत रवाला सुही महला पंजवा कर का काज ना जाने रूड़ा चूथे तंदे रचियो मूड़ा जित तू लावे तित तित लगना जा तू दे तेरा नाव जपना रहाओ हर के दास हर से तीरा ते राम रसायन अंदिन माते वहाँ पकड़ प्रभ आपे काटे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे नानक दास हर शरण द्वारे सुई महला पंजवा संत प्रसाद नहीं चल कर पाया सर्व सुख फिर नहीं डुलाया गुरु त्याए हर चरण मंची ने ताते करते अस्थिर कीने रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी ताते काटी जम की फांसी कर कृपा लीने लड़ लाए सदा आनंद नानक गुण गाए सुही महला पंजवा अमृत बचन साध की बाणी जो जो जपे तिस की गत होवे हर हर नाम नित रसन बखानी रहाओ कली काल के मिटे कलेसा एको नाम मन में परवेसा साधु तूर मुख मस्तक लाई नानक उदरे हर गुर शरणाई सुही महला पंजवा करती जा गोविंदा गुण गाओ दयाला दर्शन देहो पूरन कृपाला रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला जियो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चले जपनाला नानक जाते संत रवाला सुही महला पंजवा किस दिन दूजा और न कोई आपके थम्मे सच्चा सोई हर हर नाम मेरा आधार करण कारण समरथ अपार रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ नानक रखा आपे होआ तुही महला पंजवा दर्शन को लोचे सब कोई पूरे पाग पर

अपना तौल हरे जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज ना किते काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कह ओ शोभा पाए पाठ पटंबर दिस्या जे रच लो भाए सब किछ तुमरे हाथ प्रभु आप करे कराए साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए कुही मैला पंजवा हर का संत प्राण।

की न्याय पद अभिमान करनी परो हर गुण निध पाए अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार कितवो मन आशा करो जन का

जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विध प्रिया पर कोहिरिया दिखना क्रिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया सुही महला पंजवा रात मंडल की नो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा देखे खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हों कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

साई भगत जो तुद पावै तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावै सो परवान, मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निज, मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा, कोई अवर ना तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुख दाते। दिन रैन साथ साथ गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा, विसरे नाही जित तू कभू, सो थान तेरा केहा, आठ पैर जित तुद तिराई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हौं सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग, तिन शरणाई पाया। रहा वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे बिल लाते, ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता, तिन भी अंक न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन के

आहा निमुख सिमरत जित छूटे। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन कहा, सो गुर प्रकादी करिए। रहाओ कोट तीर्थ मजन स्नाना, इस कल में महल पर ही जय। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई।

जो कुछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई, भगता बने आई प्रभु अपने स्यों, जल फल में यल सोई रहाओ, कोट अपराधी संत संग उदरे, जम ताके नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर्ष्यों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आ

की महिमा के तक बरनो जो प्रभ अपने पाने कहो नानक जिन सतगुर पेटिया से सब ते पे निकाने। सुही महला पंजवा महा अगम ते तुद हाथ दे राखे पै तेरी शरणाई तेरा मान पान रिद अंतर होर दूजी आस चुकाई। मेरे राम राय तुद चित आया उबरे तेरी तेग परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे। रहाओ अंध फूक से काट लिए तुम आप पे कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नजर करे परमेश्वर बंधन काट छाए अपनी पगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम गया पै मोह विनाशे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा। तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब क्या।

आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतू काची देह आनी कृपा करो प्रभ करने हारे तेरी बस निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याये तेरी गत में तू है जाने कुदरत की न पाये निर्गुण मुग्ध अजान।

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से ए आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाए के साता कर चवर टुलावा चरण तूर मुख।

शाही सच्चे से पीराते सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन के पी

पंजवा तुझ चित आए महा आनंदा जिस विसरण सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुझ सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास करी।

दर्शन को बल जाई, अमृत बचन हृदय उधारी, तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पे सारी, तुझ जेवड अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ

प्यारी है, गुर प्रसाद पाओ करी है, आप त्याग होइए सब रेणा, जीव त्याग यो मरिए। सफल जन्म तिसका जग पीतर, साथ संग नाव जाते, सगल मनोर तिसके पूरन, जिस दया करें प्रभ आपे। दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक सादर वाला। राग सुही अस्पदियां, महला पहला कर तहला, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंक मिलावा होई। ना मैं रूप ना बंके नैना, ना फुल टंग ना मीठे बैना, रहाओ सह सिदार कामन कर आवे, पां सुहागन जा कंते भावे। ना तिस रूप ना रेख्या काई, अंत ना साहिब सिमरिया जाई। सुरत मत ना ही चतुराई, कर कृपा प्रभ लावो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया, चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सतगुरु।

लाल सावन मानिया गुरपूरा पाया। हौ जीवा गुणसार अंतर तू वसे, तू वसे मन माहे सहजे रस रसे। मूरख मन समझाए आखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल ना ही दुख संतापना। मनमुख परम पुलाना ना किस रंग है, मरसी हो विडाना मन तन पंग है। गुर की कार कमाए लावा तारे आने, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया।

ज्यों आरण लोहा पाए पन कड़ाई है, क्यों साकत जोनी पाए पवै पवाई है। दिन बूझे सब दुख दुख कमावना, होमे आवे जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरुमुख रखन हार, हर नाम ते आई है। मेले तुझे रजाए शब्द कमाई है। तू कर कर वेखे आप देह सो पाई है, तू देखे थाप उथाप दर भी ना आई है। देही होग खाक पवन उड़ाई है, इहो किथे कर औकात महल न पाई है। देहो दीवी अंध कोर कब मुहाई है, गर्भ मुसे कर चोर किस रू आई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है, शब्द निवारी आग जोत दीपाई है। लाल रतन हर नाम गुर सुरत बुझाई है, सदा रहे निकाम जे गुरमत पाई है। रात देह हर नाम मन वसाई है, नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है। सुही महला पहला मनो ना नाम विसार ऐ निस्त्याई है। जो राखे कृपा तार तिवे सुख पाई है। मैं अंदुले हर नाम लगती तोहनी, रहो साहिब की टेक नाम है मोहनी। रहाओ जह देखो तह नाल गुर दिखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावे तिवें रजाए परम पौ पंजना। जन्मत ही दुख लागे मरना आए कै, जन्म मरना

थाप शब्द निवाजिया देही पसम रुलाए न जाती कह गया आपे रह समाए सो विस्माद कया तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरुमुख वेख दूर।

बिन सदगुरु नाम ना जाते। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साव ना जाते। कौड़ी बदले जन्म गवाया, चीनस नाहीं आपे। गुरमुख हो वैता एको जाने, हों में दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटो, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया, सहजे रहा समाई। रहाओ गुरमुख गावे, गुरमुख बूझे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कार सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावे, दिखते संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है, साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखे, होमे विच्चों जाए। आपके दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता, गुर कै सह सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए। जम काल बादा कृष्णा दादा, बिन गुर कवन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत्सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। अक्सर तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह, पूरे गुर से पाए। तन मन सब किछ हर किस केरा, गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता सहजे माता, सहजे रहा समाए। हर का नाम सब कर जाने, गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरतै, गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरतै, गुरमुख आप पछाने नाम से आए तो सतगुरु पाए, जो इच्छा सो फल पाए, नानक तिस दा सब किछ होवे जे विचों आप गवाए। सोही महला तीजा, काया कामन अप सवालियो तिर वसै जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुर का सबद समाले, हर की भगत सदा।

काया अंदर संकिच वसे, खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला, काया कामन सदा सुहेली गुरुमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसे अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगद बूजे नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाई। काया अंदर रतन पदार्थ, पगत परे पंडारा,

इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा इस काया अंदर नाम नौ निध पाई गुर के शब्द विचारा काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलन हारा यह मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा मोल चित ही नाम पाई है मोल चित ही नाम पाई है नाही नाम पाई है गुर विचारा गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम भुलाई जिसनो दे सोई जन पावे और क्या को करे चतुराई काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब उपजित संसारा सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौन पसारा पूरे सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी बिन नामे दर टोई नाही का जम करे कुआरी नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी राग सूही महला तीजा कर दसवां इक ओंकार सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है जो मरवंजसी लोका ना साला है जो मर खाक थी वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाह रहाओ दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मरन जमपुर बद्दे मारिय वेला ना लहन गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन दुष्टा नाल दोस्ती नाल संतां वैर करन आप दुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोवन निंदा पली किसे की नाही मन मुख मुग्ध करन मुंह काले तिन निंदकां नरके कोर पवन ये मन जैसा सेवें तैसा होवें ते ही कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना कहना किछु न जाए महापुरखा का बोलना होवे किते परखाए कोई अमृत परे परपूर है ओना तिल ना कमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवट पागी जे ओना मिल रहे अंदिन नाम लेन।

तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल, आपे बख्शे मेले सो प्रभ सदा समाल। मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए, प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए। सो सो सच्चा विसरे त्रिग जीवन संसार, नदर करे ना विसरे गुरमति विचार। सतगुरु मेले ता मिल रहा साथ रखा उधार,

मनमुख मन न पिजई अपने ले चित कठोर सपे दूध पियाय अंदर हिसने कोर आप करे किस आखिय आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे पास हच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चेवन जारे उठे कूड़े ना टिकन ओ ना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर्ज मैं वारो वार पया किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

एक सूं लिव लाए हों मैं मेरा छड़ तू ता सच रहे समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकन पल रन गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन, सच वणन जय गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संची है, चले ना चल दिया नाल, विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल। मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो समाल, एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभे नाल। मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए, एह जगत मोहे दूजे व्याप्या गुरमती सत्याए। हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन न जाए, गुर के शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए। सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए, कामन रंग ता चढ़े जा फिर के अंक समाए। चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुरु सेवन, अंतर नव निर्नाम है खान खर्चन ना निकुटे। हर गुण सहज रवन ना ओए जन्मे ना मरे ना ओए दुख सहन, गुर राखे से उबरे हर स्यों केल किरन। सज्जन मिले ना विछड़े जे अमजन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन। सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है, कित विद मिलिया जाए गुर के शब्द क्रम कटी है अचिंत वसै मन आए। गुरमुख हर हर नाम जपन, हो तिनके बलिहारण है मन हर गुण सदा रवन रहाओ। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन, सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन, उर पूर्व होवे लिखिया गुर पाणा मन लेन। वडभागी कर खोजिया पाया नाम निधान, गुर पूरे वेखा लिया प्रभ आत्म राम पछान। सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय, गुर प्रसादी मन वसे तित तट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसे सब थाए, मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए। बुरा कला तिचर आपदा जिचर है दो माहे, गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए थाए, जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए। राग सूही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किस पे आप विचाई। दर्शन हर देखन कहताए, कृपा करें तो सतगुर मिले हर हर नाम से आई रहाओ। जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे से आई। जे भुख देहे ताई ही राजा, दुख भी सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी टोवा, जो देवे सो खाई। नानक गरीब कह पया द्वार है, हर मेल लहो वड्याई। अखी काड करी चरणा तल, सब करती फिर मत पाई। जे पास बहा लेता तुझे अराधी, जे मार कढ़े भी त्याई। जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ न जाई।
जे तुद वल रह ता कोई किहो आखो, तुद विसरे मर जाए। वार वार जाई गुरु ऊपर तै पैरी संत मनाई, नानक विचारा पया दीवाना हर तौ दर्शन कह ताई। चखर चांगी मीह वरसै पी गुर देखन जाई, समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यो धरती सोब करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिरसाई। सेवक का होई सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई।

आई। जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तू सेवक पैज रखाई। भंडार परे भगति हर तेरे, जिस पावे तिस दे वाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराई। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाए। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई। पाला कक्कर वर्फ वर्षे, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गुसाई। राग सोही महला चौथा, अष्टपदियां।

क्या कै संगा मने व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कत पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन मह रहा व्यापे अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे।

जान ना पाये प्रभ दरबारा, आसा अंदेसा बंद पराना, महल न पावे फिर बेगाना, सगल ब्याज के वस्त्र दीना, फिर प्यास जो जल बिन मीना, कछु सियानप उकत ना मोरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करो बेनती संतन पासे, मेल हो नानक अरदासे, पयो कृपाल सा।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रमन गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रब एक ते आए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनग्रह अपना प्रब कीना, केवल नाम भगत रस दीना। आद मद अंत प्रब सोई, नानक किस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदिया कारनावा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कभू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो, काची देहा विंसनी कूड कमावे तंग जियो। नाम से आवे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनो करता विसरे, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया, दरगह पैदा जाए जियो, ऐखे सुख मुख उजला, इको नाम से आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेविया सत पाए जियो। खान सनंतर रव रया, सर्व जिया प्रतपाल जियो, सच खजाना संचिया, एक नाम धन माल जियो। मन से कबो न विसरे, जा आपे होए दयाल जियो। आवन जाना रह गए, मन उठा निरंकार जियो, ताका अंत ना पाई है, ऊंचा अगम अपार जियो। जिस प्रभ अपना विसरे, सो मर जमे लखबार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा, जिन मन उठा आप जियो, गुण सांजी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रत्ते परमेश्वर है, बिन से सगल संताप जियो।

आओ जियो हाँ आपको बोल ना जानदा मैं कहया सब हुकम आओ जियो हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया पसाओ जियो मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी हाँ रजा तृप्त आघाए जियो जो गुरु दी सह सिखड़ा तिस निव निवला

गुण बाद गवाया, वर कर दर दर्शन नहीं जाता, फिर का सहज न पाया। सतगुरु पूछ ना मार्ग चाली, सूती रहन विहानी, नानक बालकन रणे का बिन फिर तन कुमलाणी।

जैसी आशा तैसी मनसा पूर पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड न मैले वेसे नानक मैं वरसाचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहोर बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो कृपया करते कर पाया नेत न सके कोई जान जी ना रहने केवल रव रहा त्यो लोई माया निराशी रोए विचुनी बाली बाले ते नानक सा सब सुख मैली गुर चरणी प्रभ चेते बाबुल दुपड़ी दूर ना आवे कर पई है बलराम जियो रहसी देख दूर फिर रावी

ज्ञाने सच संतोष सदा सच पल्ले सच बोले फिर पाए नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत समाए राग सुही महला पहला संत कर दूजा।

लाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया। साई वस्त्र प्राप्त होई जिससे ती मन लाया। अंजन मेल पया मन मानिया कर मंदर सोहाए। पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजने आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ताप तप पावो सोहिलड़ा जुग चारे। अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब सवारे। ज्ञान महारस ने त्रियंजन त्रिभुवन रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया। मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना। अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो। जंत ते तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो। तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण की ना। सुनो सकी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना। आपम राम संसारा साचा खेल तुम्हारा। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधक सियाने कहते तुझ बिन कौन कहाए। काल विकाल कहे देवाने मन राखिया गुरु ठाए। नानक अवगुण सब जलाए गुण संगम तब पाए। राग सूही महला पहला करती जा।

मेरा राम मंचाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख कहीं नहीं केवल जन्म मरण दुखनासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाए

पुरुष विदात है। तस्पर मार वसी पंचायण अदर करे विचारे, नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे। वर पायड़ा बालड़िए आशा मनसा पूरी राम, फिर रावेड़ी सगदरली रव रया नह दूरी राम। प्रभ दूर न होई कट कट सोई, किसकी नार सवाई, आपे रसिया आपे रावे जो किसकी वड्याई। अमर अडोल अमोल अतारा गुरपूरे सत्ताई है, नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है। फिर उचड़ी है मारड़ी है ते लोआ सिर ताजा राम, हों विषम कई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम। शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो। पत मत पूरी।

समाद राग सुई छंत महला पहला कर चौथा जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया वियाहो हुआ सोब सेती पंच शब्दी आया जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया हौ बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिन सो गा दिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सो से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होय रलिया जी सेती गह रहे सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हौ बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा को हो वै वासला कड वास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत पी जय गुणा कहो वे वासला कद वास लई जय आप करे किस आखी है होर करे न कोई आखणता को जाई है जे पूलड़ा होई जे होए पूला जाए कही है आप करता क्यों फुले सुने देखे बाद कहे है दान अन मंगिया दिवे दान दे दाता जग विधाता नाम

सोई गुर की पौड़ी सास की साचा सुख होई सुख सहज आवे सास पावे सास की मत क्यों टले इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले परपंच मोह विकार साके कूर कपट न दोई मेरा मन राचा गुण रवे मन पावे सोई।

गुर कह मोल कराया, आप नड़ा सब सहज पछाता, जामन सा फैलाया। तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा, क्यों मिले होए पराया, साहिब सो साल आई है जिन जग तो पाया। आए गया की ना आयो, क्यों आवे जाता, प्रीतम स्यो मन मानिया हर से तीराता। साहिब रंग राता सच की बाता, जिन बिंब का कोट को सारया, पंच को नायको आप सिरंदा, जिन सच का पिंड।

कौन अफेवे। तंस मंस पखंड ना जाना, राम हृदय मन मानिया। अंजन नाम तिसै ते सूजे, गुर शब्द सच जानिया। साजन होन आपने क्यों पार कर जाही, साजन राते सच के संगे मन माही। मन माहे साजन करे रलिया, करम करम सबाया। अठहठ तीरथ पुन पूजा, नाम साचा भाया। आप साजे थाप वेखे, तिसे पाना पाया। साजन राग रंगी लड़े, रंग लाल बनाया। अंधा आगू जेती है, क्यों पादर जाने। आप सहमत होछी है, क्यों राह पछाने। क्यों राह जावे, महल पावे। अंध की मत अंधली, विन नाम हर के कछ ना सूजे। अंध बूढ़ो तंदली, दिन रात चानन चाओ उपजे। शब्द गुर का मन वसे, कर जोड़ गुर पे कर बिनंती। राह पादर गुर दसे, मन परदेसी जेती है सब देश पर आया। किस पे खोलो गंठड़ी, दुखी पर आया।

मन परदेसी जेती है सब देश कराए। गुरमहली कर अपने सो पर कुरलीना, सेवक सेवा तो करे सब सबद पतीना। सब दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे,

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई। कीमत सो पावे आप जनावे, आप अपुल न पुले। जय जयकार करे तुझ पावे, गुर के शब्द अमूल्य। हीनो नीच करो बेनंती, साथ न छोड़ो पाई। नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद सुख सोहेला हर त्यावो, गुरमुख हर फल पावो। गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो, जन्म जन्म के दुख निवारे। बलिहारी गुर अपने बिटो, जिन कार्य सब सवारे। हर प्रभु कृपा करे हर जापो, सुख फल हर जन पावो। नानक कह सुन।

सच्चा सब सच्ची है शोभा साचे ही सुख होई। साच रते भगति करंगी दूजा रंग न कोई, नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा जुग चारे तांजे पवे

महाराज जी सतगुरु से एक समाए। बिन सतगुरु जग परम कुलाया, हर का महल न पाया राम। गुरुमुखे एक मेल मिलाया, तिनके दुख गवाया राम। तिनके दुख गवाया, जहाँ हर मन पाया। सदा गावे रंग राते, हर के पगत सदा जन निर्मल। जुग जुग सधी जाते, साची पगत करें दर जापे। कर दर सच्चा सोई, नाम सच्चा सोईला। सच्ची सच बाणी, सब दे ही सुख होई। सुही महला तीजा, जे लोड़े वर बालड़िए। ता गुरचरणी चित लाए राम। सदा होवे सुहागनी, हर जियो मरे ना जाए राम। हर जियो मरे ना जाए, गुर के सह सुभाए। सातन कंठ के आरी, सच संजम सदा है निर्मल। गुर के सब सिदारी, मेरा प्रभ साचा सद ही साचा। जिन आपे आप उपाया, नाम सदा तिर रावे अपना। जिन गुर चरणी चित लाया।

नाम के रंग रवे रंग राती जिन हर से की चितलाया कामन मन सोहिलना साजन मिले प्यारे राम गुरमति मन निर्मल हुआ।

और पाया कर्म विधाता। सतगुरु सेव सदा सुख पाया, हर वस्या मन मुरारे, नानक मेल ले गुर अपने, गुर कै सब सवारे, सूही महला तीजा, सोहिला हर राम नाम, गुर सब दी विचारे राम, हर मन तनो गुरु।

बहु कृपा तारी हर कै सब सुहाए राम मिल सब सुहाए आप गवाए रंग सो रलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड़ पागी जो चले सतगुरु भाए।

दूर वसे, इतना मन आधारो राम, इतना मन आधारो सिरजनहारो, वड पागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया। सहजे अंत हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो, काट कटे सबना विच एको, एको राम कतारो राम, गुर सेवन सब गुरदाता, हर हर नाम समाया राम, हर तूर देवो मैं पूरे गुर की, हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गवाए, निज कर पाया वासा।

बलराम जियो। अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूर कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभु दाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नानक सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कर आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विचर करे न जाए। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया।

अनहद शब्द बजाए। हर की ला मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल हर पाया वड पागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी, संत जना वड पागी पाया हर कथिये अकप कहानी, हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिये मस्तक पाग जियो, जन नाम कबोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो, हर चौथड़ी ला मन सहज पया हर पाया बलराम जियो, गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंगिन हर लिवलाई, मन सिंधिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी बधाई, हर प्रभ ठाकुर का

खास शब्द विलाई, अंजन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा, नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा, सब में रब रहा सो

न पाई राम, अंतरे हो मैं ममता काम क्रोध चतुराई राम, अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया, जम मग दुख पाई।

मन दैज से चल चल परमिया, मन मुख परम को लाया, नित आशा मन चितवे, मन कृष्णा भुख लगाया, अंता तन तर दबिया, फिर बिख पालन गया, जन नानक।

अड रहे नाम लो गोविंद नाम मजीठा, थी रहे लाला अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा, मिथ्या मोह मगन थी रहा झूठ संग लपटाना, नानक दीन शरण कृपा निद राख लाज भगवाना। सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा, सुन बावरे जो आया तिस जाना, निचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है हर पाई पागी, सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचे कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमानो, निचल हब जाना मिथ्या माना, संत प्रभु हुए दासा।

ते पाई साचे सृजनहारा जिससे खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया दिन रहन आस तुम्हारी सफल दस पेटिया।

तू वरदाना कर मेरा मत साई, कृपा की जैसा मत दीजै, हाथ पैर तू त्याई। गर्भ ना की जय रेण होवी जय, तांगत जी रे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही कणचेरी राम। तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम फिर हम बोरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो, इतनी लोहरिया राम। हो किछ नाही एको तू है, आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना, आपन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना है जाना राम। सोई जाने सोई पछाने, जाको नदर सिरंदे, मन

पाई सुत बंदक जी प्राण मन पवन आराम, जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा पर पूरे, अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा पर पूरे, ताकि शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ को बलिहारे नानक सर कुर्बाना, ऐसा गुरु वडकागी पाये जित मिले प्रभ जापे राम, जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूरी नित जापे राम, हर तूरी ना आई है प्रभु ते आई है बाहर जोन ना आई है, गुर चरणी लागे प्रम को पागे मन चिंदिया फल पाई है, हर गुण नित गाए नाम से आए फिर सोग नाही संतापे, नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर तापे, हर हरे हर गुण निदे हर संतन के वस आए राम, संत चरण गुरु सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम, परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा सारी, सकल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी, जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया है मिल सतगुर सुख पाया, गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम, अविनाशी पाया नाम से आया सगल मनोरथ पाए, सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए, पूर रहा कट कट अविनाशी थान थन कर साई, कहो नानक कार सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए, सोही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आरा दे मेरा राम, हर आरा दे जम पंख सा दे दूख ना व्यापे कोई, जल कल मैयल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई, परम मोह विकार नाथे प्रभ नेर हूते नेरा, नानक को प्रभ कृपा कीजे नेत्र देखे दर्श तेरा, कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम, सो सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम, कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो क्याना, हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहस्याना, कल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी, कहो नानक प्रभ कृपा कीजे हर गुण सुनिए अविनाशी, करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे चरण चले प्रभ मार्ग राम, पाव सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस पार्ग राम, पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे, महा विकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे, मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग, कहो नानक प्रभ कृपा कीजे मन सदा चले तेरे मार्ग, एहो वर एहा वड्याई एहो तन होए वडपागा राम, एहो रंग एहो रस होगा हर चरणी मन लागा राम, मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण पारंग गोपाला, सब किस तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला, मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा, कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा, सुही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप सजावे राम, हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम वाणी, सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी, पला संजोग मूरत पल साचा अब चल नींव रखाई, जन नानक प्रभु कहे दयाला सर्व कला गणियाई, आनंदा वजह नित वाजे कार ब्रह्म मन उठा राम, गुरुमुखे सच करनी सारी।

बोथड़ा हर चरण आराधे, मिल सतगुर पार लंगाए राम। गुर सबदी करिए बहु न मरिए, चूके आवन जाना, जो किछ करे सोई पर मानो, तामन सह समान। दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे, सुख सागर सरणी पाए, हर सिमर सिमर नानक रंग राता, मन की चिंत मिटाए। संत जना हर मंत्र दृढ़ाया, हर साजन वसगत कीने राम, आत्मड़ा मन आगे तरिया, सर्व सुखा कर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी, हर मंदिर थित पाई, अनग विनोद सिमरो प्रभ साचा, बिछड़ कभू न जाए। सावर कागण सदा सुहागण, राम नाम गुण चीने, कहो नानक रहे रंग राते, प्रेम महारस पीने। अनग विनोद कहे नित सखिए, मंगल सदा हमारे राम, आप न रह प्रभ आप सिगारी, सो बावंती नारे राम। सह सुहाए पै कृपाला, गुण अवगुण ना विचारिया, कंठ लगाए लिए जन अपने, राम नाम उधारिया। मान मोह मद सगल व्यापी, कर कृपा आप निवारे, कहो नानक पै सागर तरिया, पूरन काज हमारे। गुण गोपाल गावो नित सखियो, सगल मनोरथ पाए राम, सफल जन्म हुआ मिल साधु, एक अंकार प्याए राम। जब एक प्रभु अनेक रव्या, सर्व मंडल छाया, ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल फल मैयल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए, एक दर्शन नानक बिकसे, आप ले मिलाए। सुही महला पंजवा, अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जप सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप बसाया राम। करते आप बसाया सर्व सुख पाया, उत्पाई सिख बिगासे, गुण गावे पूरन परमेश्वर, कारज आया रासे। प्रभ आप स्वामी आपे रखा, आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन एव थान सुहाया। कर मंदर हट ना ले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम। संत भगत हर नाम आराधे, कटिए जम की फांसी राम। काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी, हर हर नाम ते आए, सगल सामग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सजन सुख माने रलिया, दुख दर्द क्रम नासी, सबत सवारे सदगुरु पूरे, नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम। पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा, सो प्रभ कया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए, प्रब आपे कर प्रतपाला। जय दिसपुर रहा जस स्वामी, कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान त्यान पूरन परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम। अनहद चोज पगद पर पंजन, अनहद बाजे तुनिए राम। अनहद चुनकारे तत विचारे, संत गोष्ठ नित होवे। हर नाम आराधे मैल सब काटे, किलविट सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना, बहु न पाई है जोनी है। नानक गुरु परमेश्वर पाया, जिस पर साध छुनी है। सुही महला पंजवा, संता के कारज आग खलोया, हर काम करावन आया राम। तरक सुहावी काल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार पया जग अंतर, लाथे सगर विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया। नव निद सिद्ध दीने, करते तोत ना आवे काई राम। खास खर्चक दिलचक सुख पाया, करते की दात सवाई राम। दात सवाई निकुट ना जाई, अंतर जामी पाया। कोट बिघन सगले उठना थे, दुख ना नेड़े आया। शांत सहज आनंद घनेरे, बिनसी पूछ सदाई।
नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम। जिसका कार इतन ही किया मानस क्या बेचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अमद उपजे साथ संगत संग बनी। जिन उद्दम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी। अखर तीरथ पुण्य क्रिया महा निर्मल चारा। पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा। गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम। संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम। नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो। गुण गोपाल उचर रसना सदा गाये अंदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पी जय। बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जी जय। राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हर संभल कत्ली जी ओ कदे ना बोले कौरा। कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान है अवगुण को ना चितारे। पति कौन हर बिर सदाए एक किल नहीं पन्ने काले। खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा। नानक दास वा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा। मेरा सुंदर स्वामी जी हों चरण कमल पग छारा। प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा इस जेवल अवर न कोई। आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई। चरण कमल जब सागर करया कब जल उतरे पारा। नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा। हर निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो। गुर सतगुर कहया जी साचा।

जाए परम अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नि स्वामी बड़ पागी हर हर गाया।

जा सू है वेश दुहागणी। पर फिर रावण जाए ते छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग। खुद पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार। सहज सच फिर राव्या हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आपने ली करतार। नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो संग सदा समाल। नानक जन्म सवार है अपना कुल भी छुट्टी नाल। पौड़ी आपे तख्त रचायुन आकाश पाताला। हुक्मे तरती साजियन सच्ची धर्मशाला। आप उपाय खपाएदा सच्चे दीन दयाला। सबना रिजक संभाएदा तेरा हुक्म निराला। आपे आप वर्तदा।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागण का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सौ न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सौ पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहुपित संसारा तेरा हुक्म ना जाती के तेरा सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले।

संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए जो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीद सचड़ाओ उल्टी सकत स्वै कर आए मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंड ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए सर्व सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जा पई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाएनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोथी है सब चले र जाए श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखनी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब हो गए लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे किमे सिगार पेय सहुरे बहु सौदा पाए तिस पूज करे सब सहसार ओहो रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सिर जनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार पौड़ी इह जग आप उपायन कर चोज विदान पंच पात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए को आये मन मुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना।

सुहा वेश छड़ तू तातिर लगी प्यार, सुहे वेश तिर किने न पायो मन मुख दज मोई गवार, सतगुरु मिले सुहा वेश दया हो मैं विचो मार, मन तन रथा लाल हुआ रसना रती गुणसार, सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिगार, नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार, महला तीजा मुंडे सुहा परहरो लाल करो सिगार, आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार, मुंद सुहा भी सोहनी जिस कर सहज पतार, नानक सातन रावी है रावे रावण हार, पौड़ी मोह कूट कुटंब है मन मुख मुग्ध रता, हो मैं मेरा कर्म वे किछ साथ न लिता, सिर ऊपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता, फिर वेला हस न आवई जम काल वश किता, जेहा तुर लिख पायो न से कर्म कमिता, श्लोक महला तीजा सतिया ए ना आखियन जो मड़िया लग जलन, नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन, महला तीजा पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन, सेवन साई अपना नित उठ संवालन, महला तीजा कंता नाल महेलिया सेती अग जलाए, जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए, नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए, पावे जीवो कै मरो दूरो ही पज जाए, पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करते लिखिया, नावे जेवड होर दात नाही किस रूप ना रिखिया, नाम अखुट निधान है गुरमुख मन वस्या, कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया, सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया, श्लोक महला दूजा जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विकार, चलन सार न जाननी काज सवारन हार, महला दूजा रात कारण तन संची है पलके चलन होए, नानक नाल न चली फिर पछतावा होए, महला दूजा बब्बा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है नानक कार सार, महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपई जे बहुता काले, तरफ जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे, पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई, आपे सिष्ट उपायन आपे फुनगोई, जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई, सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई, गुरमुख सदा सलाय करता करे सोई, श्लोक महला दूजा जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निबिव्या, नानक एहो पटंतरा तित दीदान गया, महला दूजा तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता,

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी। होमे मार मन निर्मला हर नाम उधारी। कोठे मंदक मारियां लग पे गवारी। जिनकी एतसे ना जाननी मन मत गुबारी। जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा। कामन को सिगार कर जा कहना कंत मिनाए। मत से जय कंत ना आवई एवं बिथा जाए। कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिगार। किया तो परवान है जा सो करे प्यार। कौ सिगार तबोल रस भोजन पाओ करे। तन मन सौंपे कंत को नानक तो करे। महला तीजा। काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार। सेजै तंत न आयो एवं पया विकार। महला तीजा। तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए। एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए। पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार। सतगुरु मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार। तन मन रत्ता रंग स्यों होमे तिसना मार। मन तन निर्मल अत सोहना तेतिया कृष्ण मुरार। पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार। श्लोक महला पहला। वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए। सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराह। आप खड़ो में आप कर आप पीने आता हो। गुरुमुख सेवा थाई पवे उन मन तत कमा हो। मस्कत लहो मजूरिया मंग मंग खसम दरा हो। नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह हो। महला पहला। उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न। तिन जर वैरी नानका जे गुब्बे थिए मरन। पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर। गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर। मन तन हृदय रव रया हर हीरा हीर। जन्म मरण का दुख गया फिर पवे न फिर। नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर। श्लोक महला पहला। नानक इह पन जाल जिन जले नाम विसारिया। पौंदी जाए पराल पिछे हक नाम बड़े। तित निबंधे ताल। महला पहला। नानक मन के कम फिटिया गणत न आवही। किती लहास हम जा बसे ता तका नहीं। पौड़ी सच्चा अमर चलायन कर सच कुरमान। सदा ने चल रव रया सो कृप सुजान। गुर प्रसादी सेवी है सच सबद निशान। पूरा खाट बनाया रंग गुरमत मान। अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान। श्लोक महला पहला। नानक बदरा मालका।

खान सिफती सार ना जाननी सदा बसे सैतान गधो चंदन खौलिए पी साहू स्यों पान नानक कूड़े कत्ते कूड़ा तनिए तान कूड़ा कच्चर कछिए पूरा पैनन मान महला पहला बांगा बुरगू सिंगिया नाले मिली कलान एक दाते एक मंगते नाम तेरा प्रवान नानक जिन्नी सुन के मन्या हों तिना विटों कुर्बान पौड़ी माया मोह सब कूड़ है कूड़ो हो गया हों मैं झगड़ा पायन झगड़े जग होया गुरमुख झगड़ चुकायन इको रग रहा सब आत्म राम पछाणिया पौदल तर गया जोत समाणी जोत विच हर नाम सुनया श्लोक महला पहला सतगुर पीछिया देह मैं तू समरथ दार सौ मैं गर्भ निवारी है काम क्रोध अहंकार लग लोग पर जाली है नाम मिले आधार एनस नव तन निर्मला मैला कबहू न होए नानक ए बिद छुटी है नदर तेरी सुखोए मैला पहला इको कंत सवाईया जिती दर खड़िया नानक कंते रतिया पुछे बातड़िया मैला पहला सबे कंते रतिया मैं दुहागन कित मैं तन अवगुण एतड़े खसम ना फेरे चित मैला पहला हों बलिहारी तिनको सिफत जिना देवात सब राती सोहागनी इक मैं दुहागन रात कौड़ी दर मंगत जाचे दान हर दीजे कृपा कर गुरमुख लेहो मिलाए जन पावे नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति जोत कर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग में वर्त आप हर से प्रीत कर।

हर हर नाम सलाइए सच पार कमावे दूजी कारे लगिया फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे गुर के सब सलाइए।

क्यों ना मरी जय रोए जा लग चितना आवई महला दूजा जा सुख पास रावे हो दुख भी संभालोए नानक कैसे आनी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई नानक दे प्रभाव है तिस तिल ना कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की कबीर के इको अंकार सतगुरु प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना राम को नाम न कभू लीना राम ना जपो कवन मत लागे मर जाए वे को क्या करो अभागे रहा दुख सुख करके कुटंब जीवाया मरती बार इकसर दुख पाया कंठ गहन तब करण पुकारा कह कबीर आगे ते ना समारा सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो रैन गई मत दिन भी जाए पर गए बग बैठे आए रहा काचे करवे रह न पानी हंस चलिया काया कुमलानी क्वार कन्या जैसे कर सिगारा क्यों रलिया माने बाज बदारा काग उड़ावत पूजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी सूही कबीर जियो अमल सिरानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तय खटिया कहां गवाया चलो सिताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फुरमान दरगे का आया रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी लेओ निबेर आज की राती किस भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराय गुजारो साध संग जा को हर रंग लागा तन तन सोजन पुरख सभागा ईत ऊत जन सदा सुहेले जन्म पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया तया कराया कहो कबीर तेरी नर फूले खसम विसार माटी संग रूले सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी एक ना खाक समाया।

जब लग कट में साता, जे कट जाए ता पाओ न जासी, हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चूके तिसे प्यासा, हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन ताले पासा। जो जन जान कजे अवगत को तिनका कछु ना नासा, कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा। सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा, पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया, तिन्हो लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नू सब कावे, रैयत बचन ना देही, डोरी पूरी मा पैना ही बोगस काला ले ही। बेहतर कर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का दफ्तर सो दिया, बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो, संत राम है एको, कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाओ विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। सह की सार सुहागन जाने, अज अभिमान सुख रलिया माने, तन मन दे ना अंतर राखे, अगरा देख ना सुने अपाखे, सो खत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दो पखीनी, जिन नहा निरंतर भगत ना कीनी, पुर सलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गमन अकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानू त्यों करगत मेरी। सोही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही, संग चलत है।

तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट की तरहार चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सवार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दहज संध्यारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फनखाने। सोही ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यो तन ऐसा जैसे काश की ताटी, जल गयो काश रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

तें साल की मैं सार न जानी, जो गुण खोए पाछे पछता नहीं रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिरे बिहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विदन कुही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभु साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बोतीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करन दुहेला। हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा। एक पापी ने पतली सह केरे बोला, दुद्दा थड़ी ना आवई फिर होए ना मेला। कै फरीद सहेलियो सहो अलायसी, हंस चलसी डुमना।

जो किछ होया सब किछ तुझते, तेरी सब सुनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चकराई। क्या हूँ कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई, जो तुझ पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई। केते कुकर हों बेगाना, औका स्तन पाई, भगत हीन ना।

एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जन्म नावा। मन बेदया दयाल से थी मेरी माई, कौन जाने पीर कराई हम नाही चिंत कराई रहाओ। अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल फल मैयल कर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी। सिख मत सब

तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे, जो तुझ पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला।

तू दाता नाम परवान, ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचिक तू अलग।

राज रूप चूठा दिन चार नाम मिले चांगन अंधियार चक छोड़ी सहसा नहीं कोई बाप दिसे वे जात न होए एक एक को ना ही तो कोए करता करे करावे सोए शब्द मोए मन मंगते माया थाक रहे मन खाते पारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुरु बचनी मन सहित्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख करम कुले गौराने हर दिन क्यों रही है गुरु शब्द पछाने बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर दिन जीवरा रह न सके खिन सतगुरु बूझ बुझाई रहाओ मेरा तब विसरे हो मरो दुखाली सास विरास जतो अपने हर पाली सब बैराजन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख हर नाली।

मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनु आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गाए आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। सौतिन बलिहार है जिन हर मन वसाए। हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए। हर जियो आग वसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए। गुरुमुख मेले मेल मिलाए गुरुमुख राते सबद रंग आए। निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस पाए। यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर सबद मिटिया ज्ञान अंधेरा सदगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सतरा ते तिन बहुत ना फेरा। नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा बिलावल मेला तीजा। पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई। हो मैं माया सब जलाई दर फाते गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवो मैं और न काजा। हम दिन अनुभ होवे मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते सबद गुजाई। जीवन मरण को संसार वेखे बहु न मरे न जम पेखे। कर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभिमान। सद ही लागा सहस्यान हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुर ते नाम से आई। जय देखा तैरिया समाये सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया। गुर का शब्द अति मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इक्को अंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रव अंतर जामे ज्यो प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती क्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया। हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रांत है प्राणी रख ले वो जन अपना। जो प्रहला धरना कुछ ग्रस्यो हर वाक्यो हर सरना। कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित कवना। ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे हर उद्रयो करे ओ सरना। प्रभ दीन दयाल पगत पग कारण हम पापी राख कपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल मेला चौथा। हम मूरख मुगध अज्ञान मति शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नाम है रामा। गुरमत हर रस पाये होर त्यागो ने फल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर पारे हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जतिये वड्डे करमा। नामहीन त्रिग जीव से तिन वड दुख सम्मा। कोई फिर जोन पवाइये मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड परमा। गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुगत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा। तुमरी सेवा कर न सकते हैं प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा। जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुरु पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मति जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे जो संग पासत लोह तरा। साकत नर होची मत मद्दन जिन हर हर सेव न करा। ते नर पाघीन दोचारी
कोई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोहे थे कल जुग खेवट गुर शब्द करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिप्त लिखे गुण गाए, मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाये उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिखरो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे हर मंत्र जपैनी, गुर सतगुर पार जम कर पूजो, नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनिक उपाव चितवी है बहुत तेरे, सा हो वै जे बात हो वै नी। अपना पला सब कोई बात है, सो करे जे मेरा चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। हम दिन हर हर नाम से आवो, गुर सतगुर की मत लेनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी, हम जंत तू पुरख जंत रहनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, ज्यो पावे तिवें बुलैनी। बिलावल महला चौथा। अनद मूल से आयो पुरखोत्तम, अन दिन अनद आनंदे। धर्म राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे,

हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसार हमारा, गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिरस बिनासा, विच आसा होए निराशी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक के सगलावनो। राग बिलावल महला पंजवा, चौक देख हर कहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। नदरी आवे किस्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे, कर कृपा मोह मार्ग पावो, साथ संगत के अंचल लावो, क्यों करिए दिखिया संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाओ परम चुलारे माया दे, हर के पगत सदा फिर से, हर शोक से रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा, पाया वेड माया सर्व पुयंगा, हम में पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिगार करे नहीं पावे, जहाँ होए कृपाल सं गुरु मिलावे, हम फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर किसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल, जिन चाखिया किस आया फाग, जो गूंगा मन में विस्माद, अनद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, विघ्न न लागे जब अल्प वेव, तरत पुनीत सही गुण गाए, दुर्त गया हर नाम ते आए। रहाओ सबनी थाने रवे आप, आज जुगा जाका वड प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाने मूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रभ पाले। बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोहे अनाथ तुरी शरण आई, कर कृपा हर चरण से आई, दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए। रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसे, प्रभ का नाम मन तन आधार, विसरत नाम हो संसार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, विसर गई सब दुर्मत रीत, मन सन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कह कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा या नड़िए कह कर गावना, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्यान का बिरसियां प्यारे, राखन को तुम एक। रहाओ सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला, सफल मूरत गुर देव स्वामी, सब कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम अरादे नाम वखाने, हर नाम ही मनवाता, सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा।

नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वडपागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिना वासो, अमृत नाम आराधिए निर्मल मने होए प्रगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की काने, तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उदरे सुनते उदरे बिन से पाप नेरे। पशु प्रेत मुग्ध को तारे पाहन पारु पारे, नानक बास तेरी शरण आई सदा सदा बलिहारे। बिलावल मैला पंजवा दिखे बन फीका त्याग री सकिए, नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुड गई सगली, सुखी ना होत जियो। मान महत ना सकती पाई सादा दासी थियो, नानक से दसोबा बनते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित क्रम सकिए मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संग ना चालती सकिए अंत तज जावत माया। रस पोगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया, तन तन हर साधन सकिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वड़ पागनी सकिए संता संग समाई है, कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाई है। कहे जन्म ना मरण ना आन जाना नेचल सरनी पाई है, प्रेम बिचो ना मोह व्यापे नानक हर एक से आई है। दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतड़े सह सुहाए, से सुहावी संग मिल प्रीतम अर्ग मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए, नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक रूप सगलो पासारा आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जब बच जाइए तब दिश पाए। रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभु सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा। आप उपावन आप सुधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना, आपन विपो आप ही जरना। रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना, आप ही अचल ना जाई चलना, आप ही दुख आप प्रगटना, आप ही कट कट आप लिखना, आपे अवगत आप संरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा। पूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड़पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे।

बंधन काट मुकुट गुरकीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्न सागर बूट संसारा, नानक बहा पकर सतगुरु निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पण सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन रहा, अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साथ संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नाम सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साथ संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मंत्र ताना हर गुण गाया, देहो पगत प्रबं कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बिलावल महला पंजवा, गुर पूरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना, रहाओ अवर करम सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिय, बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय महचीना, सगल मनोरथ पूरन आसीना, संत जना का मुख उजल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना, रहाओ अंध कूप से कर गह लीना, जय जयकार जगत प्रगटीना, नीचा से ऊंच ऊन पुरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ पय परसीना, बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीठा, चरण कमल सो लाई है चीता, हूँ बलिहारी जो प्रभु त्यावत, जल न बुझे हर हर गुण गावत, रहा सफल जन्म होवत वट पागी, साध संग्राम में लिव लागी, मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमख न विसरो परमानंदा, हर दर्शन की मन प्यास तनेरी, अमत नानक शरण प्रभ तेरी, बिलावल महला पंजवा, मोहि निर्गुण सब गुण बिहुना, दया तार अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ कर मैं आया, रहाओ भगत वचल पै का तुम्हारे, संसार सागर अब उतरे पारे, पतित पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया, साध संग प्रभ के नारायण, नानक दास सब दुख पलायन, बिलावल महला पंजवा, कौन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ जहर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरम पर ठाकुर मेरे, रहा एकक बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा, आपको कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवे सो नाम पाई, कहो नानक जो जन सब पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया, बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ में हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिखिया फल चाखिया, पज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए सिंगारे मूड़े, तब तन बिनस जाए बेहाल, रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया, करन हार एक निमक न जापिया,
महामोह अंधकूप परया पार ब्रह्म माया पटल विसरिया वड्डे पाग सब कीर्तन गाया संत संग नानक प्रभ पाया बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत बंदो पाई नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई सुख सहज आनंद कणे गुरपुरा पूरी जाकी बाणी अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ सगल संजाम करे प्रभ आपे ऐ मनोर सो प्रब जापे हर कर्म काम मोका दाता पूरी तई सिमर सिमर विदाता साथ संग नाम करंग मान्या कर आया पूरे गुरियाण्या बिलाव महला पंजवा सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे नर कुआर सातक नर थीवे राम नाम हुआ रखवारा शक मारो सातक बेचारा निंदा कर कर पचे कनेरे निर्पत फास गले सिर पैरे कहो नानक जपे जन नाम ताके निकट न आवे जाम राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा दो पदे

परम सोमत जित प्रीतम पावो रहाओ, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसरना काहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय ते आए, रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अटक कथा अमृत प्रभ बानी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांत पाई गुर सदगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। पाप पाप संताप बिनासे, हर सिमरत किल विक्षवनासे, अनंत करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत बिकराल, दिन दिन छिजत बिकार करत, औद फाही फाथा जम कह जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा बिकम सागर अत पारी, उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल, काम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिद समारया, सात जना होए कृपाला, दिक्षे सब परवारया, कारज सतगुर आप सवारया। बड़ी आरजा हर गोविंद की, सुख मंगल कल्याण विचारया रहा। वंत्रिण त्रिभान हरिया होए, सगले जी सधारया, मन इच्छे नानक फल पाए, पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का तैसो काल रहाओ। सात संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू कै जंजाल, आपे सतगुरु आपे प्रतपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गान, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आज पहर प्रभ जानो मेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल काग, हर चरणी सांता मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ। राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माह त्याई, नानक गुरु पूरे शरणाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ, जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई, जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सग ले गए, बिन से ते रोग पार, ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग, गुण गावो नित राम के ए अवसद जोग। आए बसो पर देश में ए तले संजोग, नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे, लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल, ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल रहाओ। अहं बुद्ध को बिन सना ए पुर की टाल, बहु जोनी जन्मे मरे बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे नित जपे गोपाल, सिमर सिमर नानक करे हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाज आनंद सुख पूरे गुरु दीन, सदा सहाय संग प्रभु अमृत गुण चीन रहाओ। जय जयकार जगत में लोचे सब जिया, सो प्रसन्न पे सतगुरु प्रभु कस बिघन न थिया। जांका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वडियाया नानक गुरु पास। राग बिलावल महला पंजवा। कर पंजवा चौक दे इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया, जो बालू कर बार,
बिनसत बार ना ला गई जो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए करबार। रहाओ जैसा सुखना रैन का तैसा संसार, दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल से सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख तैज मुरार। बिलावल महला पंजवा, लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल होए तो भक्ति लागो, लपट रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो। रहाओ करो बेनती अटकनी ए जियो हुम आगो, अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुर ते छुटे दोख कर वागो, हृदय प्रवास प्रगट तया निस्बासर जागो। शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग किसको लगा जिस केवट पागा, मैला कदे न हो वही नहला गै दागा। प्रभ पाया सुखदाया मिलिया सुख पाए, सह समाना पीतरे छोड़िया नह जाए। रहा जरा मरा नह व्यापई फिर दुख न पाया, पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार जम गुण नित्यरी बाणी, पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा, राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे। मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद गुण थे तुम बक्षण हारे। रहाओ हम अवगुण करें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त कनारे, लाग परे तेरे दान स्यों नै चित पसमारे। तुझते बाहर किछ नहीं पाव काटन हारे, कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बिलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याय, जित सेवे सुख होए कहा मन सोई गाये। कही है काय प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा। रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा, अवर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरिया सर तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे, हो कृपाल दयाल प्रभु नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा, निर्भ हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे, बाद साब अंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे, देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई, माटी से माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी, अंतकाल पर जाएंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। बिलावल महला।

have had on the path. Singh bilai ho gayo trin mer dikhita, sram karte dam aad ko te ganit neta. Kaman vadai keh sako beant gunita, kar kirpa moy naam deho nanak dar srita. Bilawal mahala panjwa. अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोग रसना साद लपट कपट गृह वेदिया मिथ्या विख्याद ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद राज मिलक तन जोगना ना मैं बिन बाद रहाओ रूप तूप सोगंधता का पर कोगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद फिर फिरत मानस पया खिन पंगन देहाद ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद बिलावल महला पंजवा चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत मार्ग पाए उद्यान में गुर दसे तेत हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठक बैठ सोवते हर हर हर चेत रहाओ पंच चोर आगे पगे जब साथ संगेत पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत नेचल आसन मिटी चिंत माही डोलेत परम पुलावा मिट गया प्रत्येक नेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत नानक पाया साथ संग हर हर अमृत बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब काम मिटे दत कई हमारी जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओ आ दिन बलिहारी तन मन अपनो जियरा फिर हो वारी रहाओ एक छदाई मोहे ते इतनी दृढ़ पारी सगल रेन ए मन पया बिनसी अपदारी निंद चिंद पर दूखना एखन में जारी दया मया अर निकट पेख ना ही दूरारी तन मन शीतल पे अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी बिलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल निस्बा सर मन अंध होत चितवत कृपाल रहाओ जगत उधारन साध प्रभ तिन लागो काल मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल उपत स्यान कछ नहीं नाही कछ काल तम पैरा को मोहते काटो जमजाल बिनो करो करना पते पिता पुत पाल।

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छड़ जाए। तुम्हारी कृपा से छूटी है विनसै अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिनपुर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जत तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना वड़।

राज मिलख सुखबारिया अग्नि में जाल संत जना का छोरा तिस चरणी लाग माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान गृह साकत छत्ती प्रकार के बिकु समान भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन ना होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरते पत खोई साकत स्यों मुख जोरे है अदवी चों टूटे है हर जन की सेवा जो करे इत उतन छूटे सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई दर्शन पेट साधका नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा श्रवनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश तर हर नाम से आवो कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो संत जना की रेणका ले माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो पाप मलोवा आप त्याग संत संग समावो सास सास न विसरे अनपते न तावो सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो सत संतोष दया कर्म शिगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो बिलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब ने प्रगताया जिस जन हुआ साध संग तिस पे हर गाया ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया अनक बाता सब का

मत फूलो मानस जन्माया परमाया नानक तुस पत राक्षी जो प्रभ पहराया बिलावल मेला पंजवा माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे क्यों बिसरे प्रभ मने ते।

मत जुलम करे है। छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो कज कूड़े ने है। जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी ए है। कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले है। ऊंचे ते ऊंचा वड़ा सब संग बरने है। दास दासन को दासरा नानक कर ले है। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनास सब ऊपर समरथ प्रभु पूरन गुण तास। जन का नाम आधार है प्रभु सरणी पाहे। परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है। दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है। करण हार जो कर रहा साई बड़े आई। गुरपुर उपदेशया सुख खसम रजाए। चिंत अंदेशा गलत ताज जन हुकम पछाता। न बिन सह में छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा। महा तपत ते कई शांत पर

देन जिन प्यो तत होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए बस संग हर साध कै पूरन आसा।

कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रतापे। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तोवो ए शीश कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श देख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध कै बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, ओआ रस में सांप तृप्त होए बिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तू सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीव दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर के काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ क्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हो आ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नगर निहाल। गुरु पूरे कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग न व्यापे, साध संग मन तन हिते फिर दुख न जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलिख उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकी दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

मन से कभो ना विसरे सो पुरख अपार। चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरुदेव, जाको कृपा करो प्रभ ताको लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरै प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा, सुत पाई आनंद भया।

रहाओ। सोवत हर जप जा गया तोथिया बसमाद की अमृत तृप्तास्या ताका अचर स्वाद। आप मुकत संगी करे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबार। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा भई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा। हर पगता का आसरा अन नाही ठाओ तान दीवान परवार तन प्रभ तेरा नाओ। कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए। रहाओ संता एक त्यावना दूसर को नाहे एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत वचन नानक कह प्रगत सब माहे प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाके कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर

समग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मैला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमरे नाही जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यो तेरा तेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब के मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ कोच। तमसो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत कना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़या कुन सुख में पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल हो पाया। जीव किया अथवा मोया।

की करता करे काम को काटे, कीरी के हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रविय हर निरत। हम से कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल में अला पंजवा, खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन के सुपना पला बसिया प्रभ संग रहाओ। बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश।

प्रभ की वडियाई, नानक अंत न पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा। सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज भय रास, करकार पुर करता वसै संतन के पास। रहाओ विघ्न ना को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। कोट ना आवे कदे मूल पूरन पंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। बस्त कमावत सब सुखी किछ ऊन न दिसे, संत प्रसाद के

सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा। हर हर हर आराध्य होइए आरोग, रामचंद्र की लक्ष्मी का जिन मारया।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हारे राख्या अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का दया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा। कर कर मस्तक थापया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याय किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाहिय कई दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधिय मिल साथ समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे, राम नाम जो जन जपे हम जिन सब जागे, पंथ मंत्र नह जोई तित चाप न लागे। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह दिन से अनरागे, आनंद मगन रस

शीतल भय राखे प्रभ आप, नान प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभ मिट गया रविया नित राम, साथ जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सुमरत हर नाम। रहाओ प्रगट भय संसार।

नानक जोर गोविंद का पूरन गुणपात। बिलावल महला पंजवा। मर मर जन्मे जिन बिसरिया जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया अंदन रंग राता।

सुख शांत सहज आनंद भय पूर्ण भय से रहा। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप। दोष हमारे बख्शियन अपनी कल तारी, मन बांच फल दित्यन नानक बलिहारी।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितार है, सुख दुख किस मन की दुर्था, तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई तल हमरे, तेरे नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग प्राण।

नानकी बेनंती प्रक है साथ संग रंग तार बिलावल महला पंजवा। संतन के सुनियत प्रक की बात कथा कीर्तन आनंद मंगल तुन पूर रही दिनस अर रात रहा कर कृपा अपने प्रभ की ने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध स्तंभ के जात त्रिपत अघाए तेज प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात बिलावल मेला पंजवा। राख लिए अपने जनाप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब शोक संताप रहाओ। गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हर जाप सागर तरे परम तै बिलसे पहु नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। पाप लाया गुर सृजनहार सदगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरबान गुरु नानक बोले दरगे परवान। राग बिलावल महला पंजवा चौक दे दुख दे कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु शब्द उजारो दीपा बिनसो अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ विस्मन विषम पे जो पेख्यो कह न जाए वड्याई मगन पे उहां संग माचे ओत पोत लपटाई आल जाल नहीं कछु जंजारा अहं बुद्ध नहीं पोरा ऊंचन ऊंचे बीच ना खींचा हों तेरा।

जिनको मंदिर साज सवारे हो, पावक तने जरावत है, ऐसे घर में ऐठा ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर छाड़े केस गहे से रावत है, दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी, सोए रहो मद मावत है। जाल पसार चोग विस्थारी, पंखी जो पहावत है, कहो नानक बंधन कातन कहो, मैं सतगुरु पुरख के आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान कंबोली। रहाओ सहज समायो, गुरे बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, त्रै मुख लागो जो वडकागो, सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा, पोत पोत अंग अंग संग

हे गोविंद मई, जब ते पेटे साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा। पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल सांत दयाल दई, काम क्रोध तृष्णा अंकारा, तंते होए सगल खई। सत संतोष दया करम सुख संतन ते ए मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा, क्या हम जी जंत बेचारे, वर्ण ना साते एक रुमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई। क्या कथी है किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई। रहाओ जह महाप्यान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तुहे सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक तो बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित्र एक निमख जताई है। अचरज सुनियो प्रापक केतले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, को किसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा, संत शरण संत टहल करी, तंद बंद हर सगल जंजारो, अवकाज ते छूट परी रहाओ। सुख सहज हर कनो आनंदा, गुर ते पायो नाम हरी। ऐसो हर रस बरन ना साकू, गुर पूरे मेरी उल्ट तरी। देखियो मोहन सब कै संगे, पूर न काहू सगल करी। पूरन पूर रहो कृपा निध, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हूँ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे, किस आगे क्या कहता।

ज्यों कालर पीत गिरी है रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है। आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितवत चितवित मरी है। निंदक प्रभु तुलाया, काल नेरे आया, हर जन स्यों बाद उठरी है। नानकारा था आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छादन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे।

होवन तोरा अनहोवन मीठा भिक्षा मैं लपटाए जरे अंधकूप मैं परयो प्राणी परम गुबार मोह बंद परे कहो नानक प्रभु हो दयारा गुर पेटे काडे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा मन तन रसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे सर्व सुख मोको गुरजी ना रहा त्यानप ते सब पै स्यानप प्रभ मेरा दाना बीना हाथ दे राखे अपने को काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के जे प्रसाद हर नाम लीना कहू नानक ठाकुर पारोसे कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा गुर पूरे मेरी राख ले अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहा निवरे दूत दुष्ट बैराई गुर पूरे का जपया जाप कहां करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख

महला पंजवा सदा सदा जति है प्रभ नाम जरा मरा कछ दुख ना व्यापे है आके दर्द है पूरन काम रहा आप त्याग परिय हित करनी गुरते पालिया हो निधान जन्म मरण की कटिया फांसी साथी दर्गे का निशान जो तुम करो

मन तन अंतर प्रभ आही। हर गुण गावत पर उपकार नित, किस रसना का मोड़ किस नाही रहाओ। कुल समूह उदरे छिन कीतर, जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद से की बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पराही। संत सेवक भगत हर काके, नानक मन लागे है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा। तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साज कै संगा रहाओ। छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीर्त ते कहे रजंगा। कभू न बिसरह हिये मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अवत रखो हर आदय। सर्व जिया का है प्रतपाल रहाओ। शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल। कंठ लाए राखे अपने को, किसनो लगे न ताची बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल। नानक जाचित दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिले रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भये। साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे रहाओ। जेते पुनः चरण से कीने, मन तन प्रभ के चरण गहे। आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपो होए पजो जगदीश, तुह पदार्थ बड़ पाग लहे। कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे। सुलही होए मुआ ना पास रहाओ। काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में होए गया है खाक। मंदा चितवत चित

आपके पाप वर्ते स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना खाद बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु

आप पाप से राखे आप शीतल पर गुर चरनी लागे राम नाम हृदय में जात रहो कर कृपा हस्त प्रभु जी ने जगत उधार नवखंड प्रताप दुख बिन से सुख।

पूरा पेट्यो बढ़ पागी अंतरजामी सुवर सुजान हाथ दे राखे कर अपने बर समरथ निमाणिया को मान। परम पै दिलस गए

दो में थाव रखे गुर सूरे, हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे, कारज हुए सगले पूरे रहाओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवन जान रहे थित पाए, जन्म मरण के मिटे बिसूरे, प्रम पै तरे छुटे पै जम के, कट कट एक रहा पर पूरे, नाम शरण परयो दुख पंजन, अंतर बाहर के खजूरे, बिलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कभो ना हो वो दृष्ट अगोचर, जीते संग बसे।

सतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जाते नानक प्रीत लाई प्रभाते। बिलावल महला पंजवा पन पन जोबन चलत गया राम नाम का पदन ना कीनो करत विकार निष्फोर पया रहाओ अनेक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया।

शांत सहज आनंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगुण प्रभ कछ ना विचार्यो, कर कृपा अपना कर लिया। अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी, नानक उचरे हर की।

नहीं आवत फिरत मद मावत बिखियाराता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श।

अमुक भगत अनक जन तारे सुमरह अनक मुनि अंगले टिक निरतन तन पायो प्रभु नानक अनक।

आहे मन अवर न पावे चरनावे चरनावे उलझियो अल मकरंद कमल ज्यो अन रस नहीं चाहे ये कह हर लाहे अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस टूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण है राग बिलावल मैला नावा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजामल जनता जिन सिमरत मुक्त पै जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी छिन्हू में जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत त्रू बारिक पदन माए लपतानो अचल अमर निरपय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रक्षक हर।

को नाहीं। तुम नर जन्म अकार खोया, यह राखो मन माही राव। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, ने मनुआ बस जा को। नेफल कर्म काहे तुम मानो, साच कहत मैं जाको।

सब कोई कत कत बाढ़ करे दुख होई कत सहने ते रहे न कोई दिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई मन मुख कथनी है पर रहत न होई नामो पूले थाओ न कोई मन माया बंदे हो सरजाल कट कट ब्या

ने नाट साला नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुखतिया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच नीच चंगाला, गुर के मुंह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधिया।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तैनामी।

गुर के शब्द पकड़ बंद पहिया, हर हर नाम पोत बहका खेवत शब्द गुर पार लगैया, जम जागा की नेड़ ना।

गुरुमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्त, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख आपके अलग।

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहके तृप्त न

अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुरखैया। राम नाम मेरे प्राण वसाए सतगुर परस हर नाम समैया।

जो जल तरंग जल जल है समावे, नानक आपे आप रमैया। बिलावल मेला चौथा। सतगुर परचय मन मुंद्रा पाई, गुर का शब्द तन पसम दृढ़या। अमर पिंड पहल साधु संग, जन्म मरण दो मिट गईया। मेरे मन साध संगत मिल रहिया, कृपा करो।

मन मांगे रिद सिद चेतक चेत कहिया त्रिपत संतोष मन शांत न आवे मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद कहिया अंडज जेरज सेतज उत्पुज

रात रविदास में आर्च मैया जो जो मिले साधु जन संगत तन तन्ना जट सैन मिलिया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई भगत वचन अंगीकार करैया नानक शरण परे।

बहुत मन चाहिया मन तन काट दियो गुर आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछै पैया। सीमा सिदार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट।

नैया सतगुरु दया करे प्रभु मिले, मैं तुस आ गए सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद न कहिया। वैदक नाटक देख पुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया। हों खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम, जो बिन अमले अमली मर गैया। जिनको प्यास हुए प्रभ केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दोइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हों किस वितों

सब ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत शरण जे आवे प्रभ आए मिले खिनटील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ कह कर बेटा जन्मया पिता ताए क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया तब आन आन मेहंदी पिसाई आपे कोल को।

चोटा खाए, बिन गुर शब्द न छूटस कोए, पखंड कीने मुक्त न होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़,

पंचपूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला इक परम पूखे मोह प्यासे इक रस चाखे सब तृप्ता से इक रंग राते इक मरतूर इक दर कर साथ।

तिस में मनुआ रहा लिव लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नाव नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबलवंडा।

है, डागर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौथे थावे ले पावे, राज तामस सत्काल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए।

आप गवाये। नानक नाम रखो उर्धार, देवन हारे को जयकार। वीरवार वीर परम पुलाए, प्रेत भूत सब दूजे लाए। आप

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सत गुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी। तेरे रंग राते सह सुबाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेखे।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिय मोहे मते दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया बिन वंस नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया पया समारा।

वो जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी, मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाग दिखावे, ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे, गृह बने तीर बर्त पूजा बात काटे जो

सगल जा को करना पत दक्षिण लखो नानक पयम पै सेव सेवक जो जानो क्यों मोए रखो। मुल मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों सरे मोए तात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख परे मुख परे हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी हुए गते कीत चित वो मित अंगारे जो आस चकवी दिन चरे नानक पयम तय प्रय संग मेली मछली नीर न विसरे। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना नवल नव तन नाव बाला कवन रसना गुण।

लोक सुंदर छाप दयाल प्रभु सर्व सुखानिद पियो सुख सागर प्रभु चेते है नानक सुखी होते हो जियो संत सुख सागर प्रभु पाये जब हो वे पागो राम मानन मान बंजाई है हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी गुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम सो प्रभु तज तत लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभु त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरे बल गये दुल चारण रसना राम प्रभु भगत वचल ने सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टाक्रम पसमा राम लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत मैं डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

राम नानक प्रभु शरणागति जप अनंत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किस दीना राम। वड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछीना राम। बहा पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम। क्या गुण तेरे कह सको प्रभु अंतर जामी राम। सुमर सिमर नारायण पय पारज रामी राम। गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम। नानक उदरे

राग नाद सब सोने जान लागे सहस्यान राग नाद छोड़ हर सेवी है ता दरगे पाई है मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारी है चूपे मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभु आप अगम है सब तुझ उपाया तू आपे आप वर्तला सब जगत सवाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतों दिन रात अंत लय छाया जिन से रिया तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बिलावल ना हो वही मन मुख खाए ना पाए पखंड पगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावने खाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप विचारी है विच्चों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक सो लिलाए जन्म मरण दुख कटी है सच्चे रहे समाए सदा बिलावल आनंद है जे चलने सतगुरु पाए सत संगति वह पाओ कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विचार आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वक्त भगता कै आनंद कर हर भगता का मेली सर्वत सौ निशुल जन टंग तर हर सबना का है खसम सो भगत जन सिख कर तुद अपर कोई न सके

गवाए, गुण रवे गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में बिरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिलाए। मैला तीजा, सतगुरु की सेव ना कीतिया सबल ना लगो पाओ, होमे रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपसे ले।

जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चितलाई है गोहज गल सब गुरु पास ता सर्व सुख पाई है गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाइए जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए श्लोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सफल है जिहा कोई खेते हा फल पाए गुर का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए हर रस की संतोष हो सत रसिया मन आए सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दै जिस पथरिया गुर कै कै सुवाए नानक जिन अंदर सच है से जन छपे ना किसे दो छपाए महला तीजा गुर सेवा ते हर पाए जा को नदर करे मानस ते देव ते पे सच्ची पदक जिस दे हमे मार मिलायन गुर कै सबद सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करते आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हृदय पाई निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यो बने आई ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई सब चक चक मरे लुकाई श्लोक महला तीजा रुद ए आशा दूजे पाव की जो मोह माया चित लाए हर सुख पल्लव से आ गया नाम विसार दुख पाए मन मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए कार्य सिद्ध ना होनी अंत गया पछताए जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम से आए नाम रते जन सदा सुख पाए न जन नानक तिन मल

जिस बख्शै करतार नानक गुर प्रसादी यो मन तां तरे जा छोड़े अहंकार सासा मनसा मारे निराश होए गुर सबदी विचार पौड़ी जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई अगे सब आपे वर्तदा हर सच्चा न्यायी कूड़ियारा के मोख टिकिए सच भगत वध्याई सच साहिब सचा न्याओ है सिर निंदक साई जन नानक सच आराध्या गुरमुख सुख पाई श्लोक महला तीजा पूरे पाग सत गुर पाइये जे हर प्रभ बख्श करे तो पावा सिर उपाओ है नाव प्राप्त होए अंदर शीतल सांत है हृदय सदा सुख होए अमृत खाना पहनना नानक नाए वडियाई होए मैला तीजा ते मन गुर की सिख सुन पाए गुणी निधान सुखदाता तेरे मन वसै हो मैं जाए अभिमान

जो कुछ हर करावे सो ओय करे सब हर के अर्थिये। सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुरु के वल है। तुम सब वर्ण चारे खानी सब सृष्टि को लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो, जिन विचों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कर दिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। शोक महला तीजा अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान न लागे। दुख विस्कार कमावनी दुख वर्ते दुख आ गए। कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम लिव लागे। नानक से जे सुख हुए अंदरों परम पौ पा गए। महला तीजा गुरुमुख सदा हर रंग है, हर का नाम मन पाया। गुरुमुख देखन बोलना नाम जपत सुख पाया। नानक गुरुमुख ज्ञान पर गास्या सिमर अज्ञान अंधेर छुपाया। महला तीजा मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार। पनत नानक सो जन पाई सतगुरु से वो हो मैं मल जाई। अंदर संसार दुख व्यापे सिर तंदा नित मार। दूजे पाए सूते कबू न जागे माया मोह प्यार। नाम न चेते शब्द न विचारे तो मन मुख का विचार। हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव। किसकी मोहताजी लोक कटदा होर को हट ना वत ना वेसाओ। भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास ले वे मुख पट पाओ। हर के नाम के व्यापारी हर भगत है जम जागाती किना नेड़ न जाओ। जन नानक हर नाम तन लग्या सदा वे प्रवाओ। श्लोक महला तीजा इस युग में पगती हर तन खटिया और सब जगत परम पुलाया। गुरु प्रसादी नाम मन वसिया अंतिन नाम के आया। दिख्या माए उदास है हो मैं शब्द जलाया। आप तरिया कुल उदरे तन जनेंदी माया। सदा सहज सुख मन वसिया सत्य सो लिव लाया। ब्रह्मा विष्णु मां देव त्रै गुण पुल्ले हो मैं मोह वधाया। पंडित पर मोहनी पुल्ले दूजे पाए चुकलाया।

पर न कोई गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना खट्यो से देवालिये जुग माहे कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करें अपनी प्रतीत फोन सगवा भी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करें सो तन चुगली हथ ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुथो कर्महीन ले न सके। होर थे देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला चीजा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विचों जाए। जो किस हुए सो सहजे हुए कहना किसु ना जाए। नानक तिनका आख्या

मीठा बोले अमृत बाणी, अंदिन हर गुण गाओ, निज कर वासा सदा सोंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवे हरी, सो गुर हर तन हर पासो देवाया, जो कुसै क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले, अक्के कोई क्यों देवाए इहो हर तन, जोर की तै किसे नाल ना जाए वंडाया, जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए, तिस हर तन की वंड हत आवे, जिसनो करते तुर लिख पाया, इस हर तन का कोई शरीक नाही, किसे का खत नाही, किसे कैसीव बन्ने रोल नाही, जे को हर तन की वकीली करे, किसका मोह हर चौ कुंडा विच काला कराया, हर के दित्ते नाल किसे जोर वकीली ना।

नानक जो पावे सो होए पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरे मेहरवान परम पौ मारिया, काम क्रोध विकराल दूत संभारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया, नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया।

पंच चोर तिना कर मोहन हो मैं अंदर सन साकत मुठे दुर्मती हर रस ना जानन जिन्नी अमृत परम लुटाया विक्षो रचे रचन दुष्टा सेती तिरहड़ी जंक्षो वाद करन नानक साकत नरक में जम बजे।

तिस साफ गिरास सदा मन वसै, जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस, कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस। नानक मन तन जिस प्रभु वसै, हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया, रस संत जना से।

राम गोविंद अंजन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड पागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुर न मंतन पंग। पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुने सतगुरु बख्श ले सत संगत नाल रलावे जो मीह उठे गलियां नालियां टोबिया का जल जाए पवे विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होई।

तनवंता अरनिल तन मनही पापी कछुना कानी रे राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न कब

बिलावल। विद्या ना परो बाद नहीं जानो, हर गुण का फते सुनत बौरानो। मेरे बाबा मैं बौरा, सब खलक स्यानी मैं बौरा। मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहाओ, आप न बौरा राम कियो बौरा। सतगुरु जार गयो परम मोरा, मैं बिगड़े अपनी मत कोई। मेरे परम पूलो मत कोई, सो बौरा जो आप ना पछाने। आप पछाने ताए कह जाने, अब है न माता सो कभू न माता। कबीर।

भगत की एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद दारिद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी, अस्त दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी।

बिलावल जे कुल साध बैसनो होए बरन अबरन रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाओ। ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के।

लगे आन रस होए रस मगन डारे दिखोए। पंडित सूर छत्रपत राजा पगत बराबर और न कोए। जैसे पुरैन पात रहे जल समी

लोक दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जिए वरते प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए। हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाये। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहे की जय साले फल आस सब बिरथी जाय रहा। जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत किसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किस हाथ नहीं कहा करे ये बपुड़े इनका वाहया कछ ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब चढ़ाई। जो कुछ आस

मैं झूठ दिल सब जाए, मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई, कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई, गोंड महला चौथा ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो खुन में किलिक सब करे बिनासा, ये हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब दुख लहासा, मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नार

बहुत कदाचार अपनी दिशा कहूँ हर अपने स्वामी पे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभु छोड़ अपनी

मिला सा। जित दिन उनका स्वाव हुए ना आवे, तित दिन नेड़े को ना चुका सा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुझ उपकरे दुख सुखासा। किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मन के गुर उपदेश ले जाको, तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो, इहो छूटन का साचा परवासा। गौंड महला चौथा। हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर, सांत शीतल मन अपना। जैसे सतत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहाँ कहाँ तुझ राखे सब थाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया, मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछान राम रस पावो, ओ उत्तम संत पयो बद बदना। इस जन की वडियाई हर आप वधाई, ओ कटे ना किसे की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस पे सुख पावे मन।

अरे अविनाशी सदा फिर नहीं चलत मेरे मन पद परवान, मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान, जो हर महल पावे गुर बचनी किस जेवड अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए जो रंग कुसुम्ब कचान, हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान, जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, जो सत संगत मिल पतित परवान।

सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ई है, हर दिन को मार जीवाल न साके है। ता मेरे मन कायत करई है रहाओ, हर परपंच किया सब करते है, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपूर है हर एक दिखई है। हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो किस पासों मन क्या चोरई है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवस सब कुछ सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा तेई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा ते आए तू तुद लय छड़ई है। गौन महला चौथा, हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते, ज्यो त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर कीर, समरी बेदन हर तब जाने।

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुण की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन सांस।

तू लाग पड़े कुटुम्बाए ने जो पंखी कत्र हुए फिर बिछरे फिर संगत हर हर चाय ले जैसे मीन रसन साध दिन से।

बर्तन को सब कुछ भोजन पोगाए, सो प्रभ तज मूड़े कट जाए। पार ब्रह्म की लागो सेव, गुरते सुजय निरंजन देव। रहाओ जिनकी ये रंग अनेक प्रकार, ओ तट पर लो निमक मझार। जाकी गत नित कहीं ना जाए, सो प्रभ मन मेरे सदा के आए। आए न जावे नेचर तने, बेअंत गुना ताके ते तक गने।

मिटय कोट अगमनख जस गाओ, बाल सखाई भगतन को मीत। प्राण आधार नानक हित चीत, कौन महला पंजवा। नाम संग सीनु व्यवहार, नामो ही इस मन का आधार। नामो ही कित

सगल पूछे को करता दान, गर्भ कोर में राखन हार, इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए, कट अवकट जत कट है सहाय, रहाओ रंक राओ जाके एक समान, ईट हस्त सगल पुराण, बियो पूछ ना मसलत करे, जो किस करे सो आपे करे, जा का अंत ना जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप अकार आप निरंकार, कट कट कट सब कट आधार, नाम रंग पगप पहे लाल, जस करते संत सदा निहाल, नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए, गौंड महला पंजवा, जाके संग इहो मन निर्मल, जाके संग हर हर सिमरन, जाके संग किल बिख हो है नास, जाके संग हृदय प्रदास, से संतन हर के मेरे नीत, केवल नाम गाये जाके नीत, रहाओ जाके मंत्र हर हर मन वसे, जाके उपदेश परम पौनस है, जाके कीरत निर्मल सार, जाकी रेन बांछे संसार, कोट पतित जाके संग उदार, एक निरंकार जाके नाम आधार।

आनंद हरनाय गौण महला पंजवा। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय ले तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत तो परम पुले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार रहाओ। फूले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई। गुर प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास। जिनकी आसो गुर के जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग। कहो नानक प्रभ है जनाई, जिन गुरु मुक्त ना पाये पाई। गौण महला पंजवा। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहूं दिन रात, जा की कोई न मेटे दात। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ। गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे। गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल। गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे। गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए। कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग। गौण महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। गुर मेरा देव अलख अभियो, सर्व पूज चरण गुर सेओ। गुर